0: रखो तुम और सुलगे हम, ये चाहत की है जादूगरी। ओह
1: उफ कितनी ठंडी है।

0: मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: करदर्शन।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकते।

0: या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है, ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योति छत्तीसगढ़ को स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है चिंता। चिंता यानी कि क्या है? चिंता और जो है एक तनाव और रोगों की जड़ है। चिंता हमारे जीवन में एक तनाव लेकर भी आता है और इससे बहुत तरह की जो होते हैं रोग भी होते हैं। तो रोग और तनाव की जड़ जो है वो चिंता है। कहावत है कि चिंता उतनी करो जो काम हो जाए, न कि इतनी जो जीवन तमाम हो जाए। वर्तमान समय मनुष्य हद से ज्यादा चिंता करता है। जब कोई हर पल चिंता करता है तब उसकी सोचने की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है। यदि व्यक्ति उन समस्याओं की चिंता करता है जो अभी तक है ही नहीं, तो व्यर्थ सोचने से ऐसी समस्याएं सचमुच आने

होती है। दुख, परेशानी, कठिनाइयां सबके जीवन में आती है, परंतु हम जो चाहे बस, हाँ हम जो चाहते हैं बस उन्हीं कार्यों के बारे में सोचे तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। एक है कि थोड़ा इंतजार करें, हाँ थोड़ा सा इंतजार भी करना आना चाहिए। जीवन की हर मुश्किल जो है वो ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह है, थोड़ा इंतजार कर ले तो फिर से हरी हो जाती है। अर्थात जीवन जो है ये क्या है, अगर आप जीवन में चिंता छोड़ धैर्य रखें, थोड़ा इंतजार करें, आने वाला कल निश्चित ही अच्छा होगा। हम कितनी भी चिंता करें, चिंता समस्या का समाधान कर सकती है क्या? नहीं ना। चिंता एक काली दीवार की तरह मनुष्य को चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें से निकलने के लिए कोई गली नहीं सूझती। हाँ, चिंताग्रस्त व्यक्ति जो होता है मृत्यु से पहले कई बार मरता है। एक यहाँ हम देखते हैं कि तनाव और रोगों की जड़ है चिंता। जिंदगी में जितना भी आप चिंता का आना स्वाभाविक है, जितनी भी चिंता आ जाए इसका आना स्वाभाविक है, लेकिन ये लंबे समय तक टिक जाए तो अनेक बीमारियां शुरू हो जाती है। चिंता और तनाव जो होता है वो सभी रोगों की जड़ है। ये सारे रोग मन में पैदा होते हैं। किसी भी तरह की चिंता मनुष्य के शरीर की जो होती है प्रतिरोधक क्षमता कम कर देती है, और जो होता है चिंता से होने वाली बीमारियां है जैसे हृदय रोग, गठिया, अल्सर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, दांतों का सड़ना, लकवा, किडनी की समस्याएं, आंखों की रोशनी में कमी, हार्मोन विकार, ये सब चिंता से होता है। सौंदर्य जो होता है वो खत्म हो जाता है, जल्दी बुढ़ापा आ जाती है। तो इससे हमें क्या करना है, बचना है। इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं, अगर हम चिंता से दूर रहना सीख ले तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिल रही हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है चिंता और जो है तनाव और रोगों की जड़ है। मन का इलाज किए बगैर सिर्फ शरीर का इलाज करना क्या होता है? जो हम खाते पीते हैं उससे असर नहीं होता, असर उस चीज से होता है जो हमको खाई जा रही है, अर्थात चिंता से। अमेरिका के प्रसिद्ध चिकित्सक मेयो ब्रदर्स ने कहा था कि हमारी हॉस्पिटल के आधे से ज्यादा भीड़ मानसिक व भावनात्मक बीमारियों के शिकार लोगों से भरे हैं। उसकी जो होती है वो बताते हैं कि उसकी ये बीमारियां तंत्रिकाओं या नर्वस के क्षय के कारण उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि चिंता, कुंठा, व्यग्रता, डर, हताशा से हुई है, भावनाओं द्वारा उत्पन्न हुई है। चिंता के बारे में केटो ने कहा था कि डॉक्टर सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह मन का इलाज किए बगैर सिर्फ शरीर का इलाज करने की कोशिश करता है। चिंताओं से लड़ने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि व्यक्ति निष्पक्ष और निरपेक्ष तरीके से जीवन जिए। इस ज्ञान के प्रकाश में चिंताएं भाप की तरह उड़ जाएंगी। दूसरा, मन में जब भी कोई नकारात्मक भाव आए तो फौरन दर्शक बन जाओ। ऐसा करने से भाव जो है वो बादल की तरह आएगा और चला जाएगा। चिंताओं से लड़ने आनी चाहिए लोगों को, जैसे चिंताओं से हमें लड़ना सीखना है, चिंताओं से लड़ना सीखे। कैसे? डॉक्टर एलेक्सिस कैरेल का कहना है कि जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वह जवानी में मर जाते हैं। चिंता उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो चिंता से लड़ना जानता है। चिंताओं से लड़ने के लिए सबसे पहले चिंता का असली कारण ढूंढा जाए। ज्यादातर चिंताएं सांसारिक होती है, रचनात्मकता से ऐसी चिंताओं से मुक्ति पानी है। दूसरा, अध्यात्म।

ये तरीका अपनाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा सदा मेरा साथी है। चिंता नहीं, चिंतन करें तो समाधान हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं ज्योतिषा फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है चिंता, तनाव और रोगों की जड़। याद रखिए, जो हुआ सो हुआ और जो हुआ अच्छा हुआ। अगर हम इस चीज को समझ लें, जब कोई व्यक्ति चिंतित होता है तो कुछ भी कर नहीं पाता, जबकि चिंता से निकलने का एकमात्र तरीका है कुछ करना। व्यक्ति जितने समय तक चिंता में रहता है, अपने जीवन को बेहतर करने का उतना समय गवा देता है। चिंता का बड़ा कारण है भ्रम। भ्रम को हटाने के लिए समस्या को लिखिए। लिखने से चिंता का जो है मानसिक चक्र टूट जाता है। याद रखिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे से अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह तो बहुत ही अच्छा होगा, फिर चिंता किस बात की करें। एक हम देखते हैं, आप एक चिंता पूरी क्षमता से काम नहीं करने देती। दिखा गया है कि व्यक्ति अपनी सफलताओं के लिए खुद की परेशानियों को दोष देते रहते हैं और बीते कल की कमी कमजोरियों में उलझे रहते हैं। दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी उन्हें बड़े फैसले लेने और आगे बढ़ने से रोकती है। परंतु जो समय बीत चुका है, हम कितने भी दुखी हों उसे बदल नहीं सकते, और भविष्य की कितनी भी चिंता करें उससे कभी उससे कुछ भी प्राप्ति हो नहीं सकती। भविष्य की चिंता करना उस उधार को चुकाने के समान है जो हमने कभी लिया ही नहीं है। केवल वर्तमान ही है जिसे जिया जा सकता है। बीते हुए कर्म से सिर्फ सीखा जा सकता है और आने वाले कल की केवल तैयारी की जा सकती है। हमें देखते हैं इधर की समस्या को शुरुआत में खत्म करें। अगर कुछ समस्या आती है तो उससे हमें क्या करना, शुरुआत में ही खत्म कर देनी चाहिए। नापसंद कार्य को तुरंत कर ले, चिंता अपने आप ही कम हो जाएगी। काम को जितने लंबे समय तक आप टालेंगे, दुख ज्यादा होता चला जाएगा। देर करने से डर बढ़ जाता है, कर्म करने से डर या चिंता खत्म हो जाती है। जिस काम की चिंता है उसे आज और अभी कर दे। किसी भी समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर दे। टालने से हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। हाँ, तो आपने देखा कि कैसे चिंता से हमें दूर होना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हाँ, समस्याओं को क्या करना है, शुरुआत में ही खत्म कर देना है। हाँ, और हमें ये भी सोचना है कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ हम अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए हंसती रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मन का भोजन है हमारे संकल्प, और हमारे संकल्पों को जो पावर देता है वो है ज्ञान। परंतु ये अटेंशन रखना अत्यंत आवश्यक है कि जो ज्ञान रूपी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं तो उससे मेरा स्वमान बढ़ रहा है या अभिमान, अर्थात ज्ञान से हमारे भीतर राम के संस्कार बढ़ रहे हैं या रावण के संस्कार।

खुशियों की गुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। हाँ।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका स्वागत। अभी तक हम स्पिरिचुअलिटी के जब एस्पेक्ट्स को देखते थे जिंदगी की बहुत सी बातों को ले रहे थे, लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं क्योंकि

0: से जुड़ी हुई है, यानी कि हमारी जिंदगी में हम कितने रोल्स प्ले करते हैं। और वो जब एक्ट अभी तक हम कर रहे थे तो ये लगता था कि दूसरे हमारे स्क्रिप्ट लिखते हैं या मुझे ऐसे ही रोल को प्ले करना चाहिए क्योंकि कोई और डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन जब मैं ही खुद डायरेक्टर बनी, मैं ही खुद एक्टर हूं और मैं ही स्क्रिप्ट राइटर भी हूं, तो अब मुझे स्किल्स चाहिए थी कि मैं कौन कौन सी ऐसी चीजें मेरे पास होनी चाहिए कि मेरी जो स्क्रिप्ट होगी वो सही होगी और जैसा मैं चाहती हूं वही मैं मैसेज कन्वे कर पा रही हूंगी अपनी एक्टिंग के माध्यम से। एक बात जो हमने समझी थी वो था पर्सपेक्टिव, मेरा लाइफ के प्रति दृष्टिकोण क्या है, परिपेक्ष क्या है। अगर मैं उसमें प्यार और क्रिएटिविटी शामिल करके लाइफ को देखती हूं, मेरे हर रोल में वो फ्लो हो रहा होगा। आगे और बहुत सी स्किल्स कौन सी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने रोल्स पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है और जिंदगी में जिस खुशी को, जिस मजे को, जिस फन को हम तलाश रहे थे वो अब हमारे सामने है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सुश्री शिवानी, जिस तरह से अब स्क्रिप्ट हम खुद लिखने लगे, एक बात तो सामने आई कि लाइफ के प्रति मेरा नजरिया क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी मैं अपने किसी भी रोल में चलती हूं। एंड इनफैक्ट उसमें क्या हुआ है कि जब मैंने रोल प्ले करने शुरू किए मुझे दिखने लग गया कि मेरा नजरिया था क्या और यहां मैं गलत हो रही थी।
1: अवेयरनेस, दिस इज अवेयरनेस। कई बार क्वेश्चन उठता कि बार बार आप कह रहे हैं अवेयरनेस, क्या अवेयरनेस, कैसे करनी है वो अवेयरनेस,
0: किस लिए करनी है?
1: तो अवेयरनेस ये है कि अपने ही परसेप्शंस, अपने ही वे ऑफ थिंकिंग अब दिखाई देने लगे क्योंकि उस पर काम करना शुरू किया तो दिखने लगा, ओ अच्छा, आई वॉज लुकिंग एट इट लाइक दिस, नाउ प्रोबेबली आई कैन लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। दैट्स क्रिएटिविटी, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, दिस इज क्रिएटिविटी।
0: एंड उसमें अब गिल्ट नहीं है। पहले क्या होता था कि हमसे कुछ भी हो जाता था और वो हमें लगता था गलत हो गया, यू नो अपरेंटली हमें पता होता गलत हो गया एंड वी यूज टू गो इनटू गिल्ट, कि फिर हम उसके सोल्यूशन वो ढूंढने लगते थे, कारण कि हमने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे किया था। अब क्या हुआ, जब दिख रही है चीजें हमें गिल्ट नहीं हो रहा,
1: गिल्ट की बजाय रियलाइजेशन। ये डिफरेंस है, गिल्ट नेगेटिव एनर्जी, रियलाइजेशन पॉजिटिव एनर्जी। गिल्ट हमें डिमोटिवेट कर देता है और हम और ही दर्द में चले जाते हैं, रियलाइजेशन हमें मोटिवेट करता है। एंड हो सकता है ये सीन में मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, बट रियलाइजेशन मींस नेक्स्ट सीन के लिए आई एम गोइंग टू बी रेडी। यू नो रियलाइजेशन, एक्चुअली इट इज रियलाइज मीनिंग रियल आईज। द रियल आईज मींस द रियल पर्सपेक्टिव, राइट दृष्टिकोण, सत्य दृष्टिकोण क्या है मेरा, दोज आर द रियल आईज। वो ये जो बुद्धि से जो हमारा दृष्टिकोण है वो हमें रियलाइज होता कि ये नहीं ये। सो एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। हम सोचते थे गिल्ट में गए तो उससे परिवर्तन आ जाएगा, एनर्जी वॉज नेगेटिव, रिजल्ट कैन नॉट बी पॉजिटिव। सो वंस वी रियलाइज आई एम द क्रिएटर ऑफ द एनर्जी, आई एम अवेयर वट एनर्जी टू क्रिएट। कभी भी जैसे ही फीलिंग आए तो तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये फीलिंग मुझे लो की तरफ लेके जा रही है, उदासी की तरफ लेके जा रही है। क्विकली चेंज इट, डोंट लेट दैट स्पाइरल गो डाउनवर्ड्स, आई हैव टू टेक इट अपवर्ड्स। तो वो अवेयरनेस कि कहीं, जो हमने एक बार पहले भी कहा कि यहां एक छोटा सा बच्चा है, उसका हमें ध्यान रखना है, सब कुछ बाहर करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये बच्चा ठीक है। थोड़ा सा भी रोने लगे, थोड़ा सा भी दर्द हो किसी भी बात से, तुरंत आकर
0: रोक लो,
1: स्टॉप, चेक किस बात का दर्द है, फिर उस बच्चे को समझाकर उसके दृष्टिकोण को ठीक कर नाउ कम बैक इनटू द क्रिएटिव प्रोसेस। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो यहाँ नहीं है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, दैट प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। और उसका रिजल्ट, जहां अंदर क्रिएटिविटी होगी तो उसका रिजल्ट बाहर ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी होगी। तो एक है परसेप्शन, दृष्टिकोण, एंड दूसरा हमने देखा कि जहां क्रिएटिविटी होगी वहां प्यार की, स्नेह की एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लो होगी। इसके लिए, क्रिएटिविटी के लिए जो हमें एक और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज एक्सेप्टेंस। एक है लोगों के प्रति जजमेंटल, क्रिटिकल, और एक है लोगों के प्रति एक्सेप्टेंस, कि वो जो है जैसे हैं वैसे स्वीकार करना। हर सीन में व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग विद पीपल, एनर्जी तो वही है, उस एनर्जी को अगर मैंने दूसरों को जज करने में यूज कर दिया, आई कैन नॉट बी क्रिएटिव एट दैट टाइम, क्योंकि वो एनर्जी आपको जज करने में निकल गई,
0: वो पूरा टाइम दूसरों पे लग गया ना। नाउ एक्चुअली आई हैव मोर टाइम फॉर माई सेल्फ।
1: एब्सोल्युटली नो, एंड नॉट ओनली दैट, इट्स नॉट सिर्फ दूसरों के लिए, लेकिन दूसरों के लिए भी

0: now. Yes, kyunki hamara bahut purana sanskar hai. Being judgmental is one of our very, very hardcore sanskars. Yes. Very. Matlab, agar hum isko upar upar se bhi khatam kare na, it is so subtle. Aap sara din dekhenge hum har step pe. Andar. Ab hum shayad o stage se cross kar jate hain ki hum nahi bolte jaldi jaldi. Lekin andar, we are so judgmental about everybody. Hum har ek ke har ek action, har ek word ko judge kar rahe hain sara din.
1: Aur label ki jo baat
0: hai, label karte jaate hain. और इसीलिए क्रिएटिव नहीं है क्योंकि वो एनर्जी फ्लो हो गई डिस्ट्रक्टिव वे में. तो मुझे अगर अपने पर ध्यान देना है तो मुझे वो नेगेटिव क्रिटिकल होने की जो आदत है उसको थोड़ा हल्का करना होगा.
1: आई थिंक वो कम्प्लीटली ब्लॉक करना होगा,
0: फिनिश ही करना है एक्चुअली.
1: यू नो वी रियली नीड टू. इनफैक्ट हमारे पास एक मेल आई थी, उसको हम शेयर करते हैं कि वो कह रही है कि मैं जब घर पे होती हूँ और मुझे लगता है कि मैं जब रोल्स प्ले कर रही हूँ तो मैं उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर रही हूँ ताकि वो हर्ट ना हो. भाई मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो सच्चाई है, जो मेरे अकॉर्डिंग सच्चाई है, लेकिन उनको वो बुरा लगेगा तो इसीलिए मैं वो कहती हूँ जो वो चाहते हैं. तो क्या मैं ये सही कर रही हूँ और मैं फिर उसको मैं कैसे अपने रोल को कैसे जस्टिफाई करूँ.
0: One thing we have to remember, very important role भी जो हम play कर रहे हैं इसमें बहुत matter करता है intention. हमारी intention क्या है उस संकल्प और उस कर्म के पीछे. कहीं intention प्यार की होती, कहीं intention डर की होती है. प्यार और डर ये दो opposite intentions हैं. अगर मेरा आपके प्रति intention प्यार का है, मैं आपको कुछ भी कह सकती हूँ और आपको बुरा नहीं लगेगा. इट विल जस्ट नॉट हैपन. इट्स जस्ट दैट इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग टू एक्चुअली चेक आवर ओन इंटेंशंस कि वो एक्चुअली इंटेंशन क्या है. क्योंकि हम बहुत ऊपर ऊपर से देखते हैं अपने आप को तो हमें लगता है प्यार ही तो है और कुछ थोड़ी है. नहीं, देयर आर सो मेनी. द इंटेंशन इज देयर. इवन ये सोचना कि मैं जो कहूंगी वो आपको हर्ट करेगा, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द इंटेंशन ऑफ हर्ट. अगर मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मैं किस भाव से आपको ये कह रही हूँ, जो एनर्जी पहले पहुंचती है वो है ये वाली एनर्जी. वर्ड एनर्जी तो बाद में पहुंचती है. वर्ड्स कभी हर्ट नहीं करते किसी के, इट इज द एनर्जी. तो अगर हमने वही एनर्जी भेजी होगी तभी आपको हर्ट करेगी. सो प्लेइंग योर रोल इज मोर अबाउट the quality of your thoughts and feelings. Wo ekdam clear honi chahiye, clean honi chahiye. Give across your message. There is no way it can hurt. And phir bhi agar suppose somewhere koi hurt ho raha hai, we've understood, then that is their journey. That's their journey. Agar meri lekin apni intention ki bahut checking chahiye, huh? Sometimes we can be very downright rude and say ki nahi main to bilkul theek thi. We have to be very careful with that. Lekin agar I'm 100% clean ki maine kis tarah se socha hai aapke prati aur kis tarah se bola hai, फिर भी अगर आप हर्ट हो गए तो कहीं ना कहीं वो फिर आपकी जर्नी
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. और यहाँ लेकिन कई बार क्या कहते हैं हम कि डिटैच होकर मैंने उसे बात की. तो अगेन डिटैचमेंट में मैं उसके प्रति सेंसिटिव नहीं हो पाती. यू नो लाइक उसके प्रति केयर तो नहीं जा रही है.
0: क्रिएटिविटी अपने रोल में लाने के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी जो एक चाहिए वो है सेंसिटिविटी. आज स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर में वी विल फाइंड कि हम सेंसिटिव नहीं हैं बहुत ज्यादा लोगों के प्रति, क्योंकि हम ज्यादा काम के बारे में सोचते हैं. वी वेरी वर्क कॉन्शियस, वर्क ओरिएंटेड. तो लोगों के प्रति जो एक सेंसिटिविटी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी अप्लाई करने के बाद भी हम थोड़ा सा कई बार डिटैच होने के प्रोसेस में इनसेंसिटिव हो जाते हैं. वो एक थिन क्या है बॉर्डर लाइन है विच वी हैव टू सी हाउ टू मेंटेन द बैलेंस. इन रिलेशनशिप्स में अटैचमेंट अब नहीं चाहिए, समझ में आ गया. रिलेशनशिप्स में जो पहले नीडीनेस थी कि मुझे जरूरत थी वो रिश्ते की, वो भी अब खत्म हो गया है. लेकिन रिश्ते जरूर चाहिए. रिश्तों पर डिपेंडेंसी नहीं है लेकिन रिश्तों से कटना नहीं है. रिश्ते जरूर चाहिए क्योंकि रिश्तों में ही I express and I experience. लेकिन अब क्या है कि unless I can be sensitive to your needs, to your presence, to your role, I will not be able to play my role properly with you. Again, I will be fixed with my way of identity. तो आपके प्रति sensitive होने के लिए कहीं ना कहीं I need to be detached from the role, from the scene and from the actor. हम ये तीन चीजों में attached हो जाते हैं. उस एक्टर की सफरिंग, आपकी सफरिंग से

0: अटैच हो गई तो फिर मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, उस टाइम मैं अटैच्ड हूँ. सो समवेयर वी ऑल नीड टू एक्सप्लोर विद आवर सेल्फ कि एम आई बीइंग एबल टू मेंटेन वो बैलेंस सेंसिटिविटी
1: and
0: detachment.
1: You know, somewhere, because the moment we are detached, we become so cold.
0: Yeah.
1: और वी apparently ऐसा नजर आता है कि हम cold हो गए या हम हो भी जाते हैं, हमें पता ही नहीं,
0: हमें पता नहीं,
1: क्योंकि हम detachment में हमने अपना तो रखा कि मुझे detach होना है उससे, मुझे pain नहीं लेना है. You know, somewhere मुझे उसकी pain से affected नहीं होना है, लेकिन मैं फिर उसकी pain के साथ ही empathize नहीं करती.
0: Absolutely. अगर मैं उनके साथ ही नहीं empathize करूँ तो फिर मेरा relationship वो नहीं रहेगा. एज अ रोल ऑफ अ पेरेंट, एक पेरेंट का रोल, एक लीडर का रोल एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने बच्चों के साथ, हमें अपनी टीम मेंबर्स के साथ एम्पथाइज करना है कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो किस परिवर्तन से गुजर रहे हैं, या उनको उनकी क्या जरूरतें हैं, उनका क्या दर्द है. लेकिन अगर हम कहें this is not my role, I don't need to know anything about you, then I'm not sensitive towards you. Agar aap mere team ka hissa hain aur aap dard mein hain, then somewhere is that not my responsibility as a leader to understand ki aap kis cheez se guzar rahe hain? Kyunki jab tak main ye nahi samajh paungi ki aap kis cheez se guzar rahe hain, main aapki right potential, aapki puri strengths ko us karya ke liye bhi नहीं यूज कर सकते. सपोज आप दर्द में हैं, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, आप काम करो. तो इज दैट रियली बीइंग फेयर टू इवन द वर्क? क्योंकि दर्द में रहकर अगर कोई काम करने वाला है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्यों नहीं हम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं? लेकिन उसके लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? वो बॉस से हटकर मुझे एक फ्रेंड, मुझे एक काउंसलर, एक मोटिवेटर, वो रोल अपनाना पड़ेगा. बट दैट विल ओनली हैपन इफ आई एम सेंसिटिव कि आप किन चीजों से गुजर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको यू नो तकलीफ देती हैं. बीइंग वेरी सेंसिटिविटी कुड ऑल्सो बी लाइक कंसर्न, बीइंग कंसर्न्ड अबाउट पीपल, बट सेइंग नहीं, मुझे हमें तो काम से मतलब है, काम हो जाना चाहिए, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, दैट्स नथिंग टू डू विद मी, देन दैट समवेयर हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत रूखापन आ जाएगा एंड फिर हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. तो इसको हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अटैचमेंट ना हो जाए. अटैचमेंट ओनली मीन्स कि आप दर्द में हैं
1: तो
0: मैं दर्द में हूं, एंड सेंसिटिविटी वुड मीन आप दर्द में हैं, मैं आपके साथ हूं, आपसे बात भी कर रही हूं, शायद आपके साथ आपको वो प्रोसेस पे हेल्प भी कर रही हूं, लेकिन दर्द नहीं एक्सपीरियंस कर रही. एंड जैसे ही मैं दर्द नहीं एक्सपीरियंस करती, आई विल बिकम इंस्ट्रूमेंट टू एम्पावर यू. स्पेशली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में दिस इज फंडामेंटल.
1: लेकिन एक और बात जो देखी जाती है जनरली, एक कहीं गाने में भी आता है कि हर कोई अपने दर्द के कारण रोता है. जब भी कोई कहीं हम किसी को दर्द देखते हैं, उसी से हम कहीं खुद को रिलेट कर लेते हैं और तब हम दर्द में आ जाते हैं. तो क्योंकि अपना ही कोई जख्म जो है,
0: क्योंकि कहीं ना कहीं खुद की स्थिति भी उन चीजों से गुजर रही है, तो वो एक आपकी परिस्थिति मेरे लिए ट्रिगर बन जाती है, मेरे लिए ट्रिगर बन जाती है, और मेरा जो अक्यूमुलेट किया हुआ है वो इमोशन ट्रिगर हो जाता है, और आपका दर्द हम कहेंगे आप दर्द में हैं तो मैं भी दर्द में हूं. बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट. सी इन अ पेरेंट चाइल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूडे, क्योंकि बच्चे अपने दौर से गुजर रहे हैं, अपनी जर्नी पर हैं. स्पेशली जब आप एक बच्चे से एक टीनेज के यू नो एडोलेसेंट पीरियड से गुजरते हैं, वो बहुत एक टर्मोइल, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, वो उनकी यात्रा का एक हिस्सा है. अगर मैं एक काउंसलर, एक मीडिएटर बनकर उनको मदद करना चाहती हूँ कि वो उस पीरियड को दर्द के बिना क्रॉस करें, तो पहले तो
1: खुद को दर्द से बाहर निकालना होगा.
0: लेकिन उनसे ज्यादा दर्द में तो हम गए होते हैं. उनके अंदर वो परिवर्तन देखकर, यू नो, दर्द कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स. दर्द इज नॉट क्राइंग,
1: दर्द कैन बी एंगर, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट.
0: मेनी टाइम्स बच्चा अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, उसको खुद वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है. उसके स्कूल में उसके एज ग्रुप उस तरह के होने के कारण वो कई बातों से गुजर रहा है. कहीं ना कहीं वो उसके पर्सनालिटी में अग्रेशन के रूप दो फॉर्म्स में आता है. किसी के अंदर वो एकदम चुप हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और कुछ लोग बहुत लाउड हो जाते हैं जो वो पहले नहीं थे. एज अ पेरेंट आई हैव टू बी सेंसिटिव कि मेरा बच्चा क्यों इस तरह से परिवर्तन हो रहा है, एंड दैट विल नॉट हैपन बाय शाउटिंग एट हिम.

0: कि तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो,
1: बाय गोइंग इन टू शॉक, यू नो यूजली वी गो इन टू शॉक कि ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर, और हमारे फिर सोचने समझने की शक्ति
0: खत्म हो जाती है। तो फिर मैं उसको नहीं समझ पाती कि वो इस दर्द से क्यों गुजर रहा है, मैं इस बात से हर्ट हूँ कि वो मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है। नाउ द मिनट मैं दर्द में चली गई कि वो मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है, विल आई बी एबल टू एम्पथाइज विद द चाइल्ड?
1: ओह नो, नॉट एट ऑल, इट्स माय प्रॉब्लम, माय पेन।
0: तो फिर क्या हुआ, माय रोल एज अ पेरेंट इज नॉट बीइंग प्लेड प्रॉपरली, बिकॉज फंडामेंटल माय रोल है आज कि मेरा बच्चा अगर दर्द में है, मुझे उस बच्चे को हेल्प करना है दर्द से निकलने के लिए, लेकिन मैं खुद ही दर्द में चली गई। यू नो व्हेन अ चाइल्ड, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो हर रोज हर घर में होता होगा, एंड आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कई बार बहुत रूडली या एंग्रीली बात करते हैं, तो ईदर द पेरेंट शाउट्स बैक, अगर एक बच्चे ने रूडली बात की, या तो वो पेरेंट शाउट बैक करेगा, ये कोई बात करने का तरीका है आजकल के बच्चे देखो, एंड देन इट बिकम्स अ जनरलाइज स्टेटमेंट, या द पेरेंट विल गेट वेरी हर्ट, मेरे बच्चे मेरे साथ इस तरह बात करते हैं। समवेयर द पेरेंट स्टार्ट्स टेकिंग इट एज अ पर्सनल फेलियर कि आई हैव नॉट बीन अ गुड पेरेंट,
1: मैं उनको राइट वैल्यूज नहीं दे पाया, मैंने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए।
0: अब ये सब जब क्रिएटिव प्रोसेस अंदर चल पड़ा इस तरह से थिंकिंग का, बच्चे के बारे में सोचना कि वो क्यों दर्द में है, वो क्यों इतने गुस्से में है, वो क्यों, मैं क्या उसके लिए कर सकता हूँ, उधर तक तो सोच जाए मेरी, आई ओनली लुक एट द चाइल्ड शाउटिंग एट मी एंड नाउ स्टार्ट विद माय प्रोसेस। तो फिर एम्पथी, क्या उसकी मदद करना, उसको एम्पावर करना, इज नॉट
1: वेरी ट्रू। यू नो सिमिलरली जब अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा, स्कूल से शिकायत आ रही है, हम ज्यादातर ये करने लगते हैं कि उसके ऊपर ऊपर से काम कैसे किया जाए,
0: अब
1: हम डिसिप्लिन में कैसे लाए।
0: अब ये जो आप कह रहे हैं ना, ऊपर से काम कैसे, वी डोंट रियलाइज कि अगर आज सडनली मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या बच्चे का बिहेवियर स्कूल में चेंज हो गया, टीचर कंप्लेंट करती है, पेरेंट्स को बुलाया, कंप्लेंट किया, पहली बात टीचर ने बुलाया और कंप्लेंट किया, आई गेट हर्ट, कि क्यों कंप्लेंट, इंसल्ट, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कहा, अब मैं सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड हो जाती हूँ कि इसके मार्क्स को कैसे ठीक करना, इसके बिहेवियर को कैसे ठीक करना, उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग्स क्या हो रहा है उस बच्चे के अंदर जिस कारण से उसके मार्क्स या उसके बिहेवियर, वी आर नॉट लुकिंग दैट साइड। फिर क्या होगा, उसकी जो अंदर की चोट है वो तो है ही, अंदर लगी हुई है, हमने उसके ऊपर
1: चोट देते जाते हैं।
0: हाउ डैमेजिंग कैन दिस बी?
1: और हम एक रोल प्ले कर रहे हैं पेरेंट का, माई गॉड, वी कैन एक्चुअली चेंज इट।
0: यस, नाउ वी नीड टू चेंज दैट, लेकिन वो तभी होगा जब हम अपनी हर्ट, अपनी इंसल्ट, अपने एंगर को साइड पे रख हम स्टेबल रह पाएंगे कि इट्स एक आत्मा है जो एक दर्द से गुजर रही है, और मेरा रोल क्या है एज अ पेरेंट, पेरेंट मतलब मेरा रोल है उस आत्मा को उस जर्नी पर मदद करना, इंस्टेड ऑफ मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने मुझसे ऐसे कैसे बात की, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। लेकिन जब आई एम सो अटैच टू द आइडेंटिटी कि मैं एक पेरेंट हूँ, ये मेरा बच्चा है, माय प्रॉपर्टी, तो मेरे बच्चे को मेरे से कैसे बात करनी चाहिए,
1: और मेरा रोल भी डिफाइंड है, सदियों से माँ बाप ऐसे करते आ रहे, मेरे फादर ऐसे बिहेव करते थे, तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, दिस इज द राइट वे।
0: परसो वी वर डूइंग अ प्रोग्राम एंड वी कॉल्ड अबाउट 4 children ऑन द स्टेज, एंड 1000 या 1500 की सभा में 4 बच्चों को ऊपर बुलाया और उनसे पूछा, सबके सामने स्पीक ऑन द माइक, कि आपके पेरेंट्स जब आपको इस तरह, एंड दे वर लिटिल लिटिल वंस, कि डांटते हैं या करते हैं तो आपको कैसा लगता है, यू शुड हैव सीन द वाइब्रेशन इन द रूम, दोज लिटिल चिल्ड्रन, बिकॉज मे बी द पेरेंट्स वर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दोज लिटिल चिल्ड्रन सेड, हमें इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है, एंड पेरेंट्स तो ऐसे सुन रहे थे जैसे उनको ये नहीं पता था कि किसी को डांट पड़ने के बाद उसको दर्द होता होगा अंदर, फॉर देम इट सीम्ड टू बी अ रियलाइजेशन। हमने क्या सोचा कि हम किसी को डांटते जाएंगे एंड द पर्सन सपोज टू फील गुड,
1: अब हम बच्चों को कितने,
0: एंड यू नो सम ऑफ द चिल्ड्रन सेड कि वो तो हमें ऐसे ऐसे करके
1: मारते
0: जाते हैं। वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक व्हाट आर वी डूइंग, मतलब आज मेरा एक ग्लास भी ऐसे गिर के टूट जाए तो मुझे इतना बुरा लगता है, मेरी प्रॉपर्टी है टूट गई, और वो बच्चे को हम ऐसे ऐसे ऐसे करके जब मारते हैं, हम क्या समझ रहे हैं, वो कौन है, वो हमें लगता है ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और हम अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन,
1: और कहाँ कहाँ का बच्चे का ही गुस्सा नहीं होता,
0: वो बच्चे का गुस्सा होता ही नहीं है, बिकॉज अगर आप अपने सेंसेस में हैं तो आप अपने बच्चे को इस तरह कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। कोई और आपके बच्चे को छू भी दे तो आप उसका क्या हाल करेंगे,

8736550999744555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अब इतनी ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। सेल्फ मैनेजमेंट की श्रृंखला में बहुत सी नई बातें सामने आ रही हैं, कुछ और बातें लेकर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ओम शांति।

बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: इतिहास से, भूगोल से,
1: समाज से, संस्कार से,
0: आधुनिकता से और विचार से,
1: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
0: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
2: अतुल्य भारत।
1: चलिए आपको बताते हैं
0: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
1: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
0: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
3: क्या आपको पता है कि महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है? महाभारत में 74,000 छंद हैं और कुल 10 लाख शब्दों में इसे लिखा गया है। इस महाकाव्य को मूल रूप से वेद व्यास जी ने वैदिक काल में संस्कृत भाषा में लिखा था।
0: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
1: पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। जय हिंद,
0: जय भारत।
4: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्ण, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं। जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
5: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
4: मनात पीठ वाजल्या की शरीर अपोआप फिरकतं। त्याचसोबत
6: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
4: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
7: पहला नशा, पहला खुमार।
4: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इस श्रृंखला में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत, नमस्कार। जागरूकता किसके प्रति होनी है? जागरूक हमें अपने प्रति होना है कि हु एम आई द सोल, आई द बॉडी, आई द माइंड। इसके बारे में हम कई बातें कर चुके हैं और ये बात हमारे सामने आती है कि आई द सोल इज सुप्रीम। और उसके बाद जागरूकता अपने पूरे सफर में खुद को पहचानने की और किस तरह से जिंदगी जीते हुए एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। याद होगा कि पिछली कड़ी में हमने बात की थी डिप्रेशन की। क्यों है इतना प्रेवलेंट आज डिप्रेशन? क्यों आज हर आम आदमी डिप्रेस्ड फील करता है? किसी न किसी मोड़ पर जरूर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं या हम डिप्रेस्ड हैं। हमने ये जाना था कि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे हमें दो चार होना पड़ सकता है, एक ऐसी सच्चाई है, लेकिन उससे हम अपनी माइंड पावर से यानी कि अपने विचारों से भी बदल सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से प्रोफेशनल्स की मदद की कब जरूरत पड़ सकती है और किस तरह मदद ली जा सकती है। पर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, जो कि खास मुंबई से आए हैं। और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में ये भी बता दें कि 7 किताबें लिख चुके हैं कि किस तरह से जिंदगी को पॉजिटिव किया जा सकता है। आपका हार्दिक स्वागत। और हमारे साथ हर बार की तरह है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, अ वेरी वार्म वेलकम।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति। डॉक्टर गिरीश, हमने जहां छोड़ा था वहां एक बार फिर लौटते हैं और डिप्रेशन की हमने बात की थी कि इतना प्रेविलेंट है, इतने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। एक बार फिर उस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ये जानने को थोड़ा और डिटेल में कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन है क्या,
4: यह शब्द में ही वह क्या है समय डिप्रेस्ड, किसी को दबाना, नीचा करना, तो वैसे ही जब व्यक्ति अपने आप को नीचा समझता है, जीवन में इंटरेस्ट खो बैठता है, इस प्रकार की जो स्टेज होती है तब उसको कहेंगे डिप्रेशन। बल्कि कई सिम्टम्स भी है। आज अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी ने हर बीमारी के वास्तव में लिस्ट ऑफ सिम्टम्स उन्होंने तैयार किए हैं और उसमें से कुछ 60-70% अगर सिम्टम्स फिट होते हैं तब उस व्यक्ति को कहेंगे कि सचमुच डिप्रेस्ड है।
2: जी बिल्कुल। और शिवानी, अगर हम बात याद करें तो सेल्फ एस्टीम की बात की थी, आज अभी डॉक्टर पटेल ही कह रहे हैं कि खुद को ही सप्रेस करने लग जाए, खुद को ही कहे कि मुझ में तो कुछ रह ही नहीं गया, मैं तो कर ही नहीं सकता, या पूरा ये डिप्रेशन का एस्पेक्ट आ जाता है। सेल्फ एस्टीम ऐसे में कितनी हेल्प करती है और कहां हम अपनी सेल्फ एस्टीम खो बैठते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं?
3: क्योंकि अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं समझा, अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना, अपनी विशेषताओं को नहीं जाना, तो एक खालीपन है कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता या मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कोई ना कोई ऐसी थॉट इसको ट्रिगर कर देती है, या मैं कितना भी ट्राई करूं मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मेरे से कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता, या जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, यू नो कंपैरिजन, सो ऑल दैट पब्लिक ओपिनियन, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, दिस कैन लीड टू सप्रेसिंग माय एक्चुअल क्वालिटीज एंड इन इट इंटरनल यू नो द ब्यूटी दैट इज देयर, आई स्टार्ट सप्रेसिंग इट।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक पूरी तरह से हमें नजर आता है कि डिप्रेशन क्या है बेसिकली, खुद को सप्रेस करने का एक एस्पेक्ट। अगर हम देखें तो आपने बात की थी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ की, वो लाइफ स्टेज की जो बात की जाती है कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ से चढ़ते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं या वहाँ से नीचे कहाँ तक आते हैं, एक बार फिर से उनसे दोबारा दो चार हो लेते हैं कि कौन सी है वो स्टेजेस।
4: सबसे पहले तो जो हाईएस्ट स्टेज है वह है कि हमें जीवन में पूरी लाइवलीनेस है, हर क्षण का आप पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। वो भले कह सकते हैं कि भी करोड़ों में एक व्यक्ति को ही आएगी, परंतु वो एक आइडियल लक्ष्य हो। सेकंड जो स्टेज है कि सचमुच जीवन में हैप्पीनेस है, हाँ, और वो सदा के लिए, वो हैप्पीनेस कम ज्यादा नहीं हो रही है। कभी थर्ड स्टेज है कि भी कभी खुशी कभी गम वाली स्टेज है, कि भी थोड़ा समय एक दो घंटा अच्छा लगता है, फिर से दो घंटा में निराश हो रहा हूं या तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बाद की स्टेज है कि वो जो अच्छा नहीं लगना या दुख का अनुभव करना, कुछ मुझे जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, इसी स्टेज वो लंबी चलती है कि दिन में देखो 8 घंटा भी इसी स्टेज चली, 3-4 घंटे आपको अच्छा लगा, और फिर है कि सचमुच व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है सदा के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो जहां पर हम कहेंगे क्लिनिकली आइडेंटिफाइबल यहां होता है साइकेट्रिस्ट के पास भी आप तब ही जाते हो ना, तो जो आगे के स्टेजेस है उसके तो आज हमने जीवन का एक समझ लिया है कि हमारे जीवन का हिस्सा है।
3: लेकिन जो मेरे को लगता है जो केमिकल इम्बैलेंस की उस दिन बात हुई ठीक है, तो वो इसमें से कौन सी स्टेज पर हो रहा होगा या शुरू से है?
4: नहीं शुरू से नहीं, थर्ड स्टेज कहेंगे कि थर्ड स्टेज
5: या कभी खुशी कभी गम
4: वाली स्टेज तब शुरुआत हो गई आपके केमिकल इम्बैलेंस।
3: तो मेजोरिटी इसका मतलब देन
5: दिस इज अगेन मिथ ना, जो हम रॉन्ग बिलीफ पर जीते आ रहे हैं कि हम उस स्टेज पर तो पहुंच ही नहीं सकते कि हर क्षण हमें खुशी मिलेगी, हर क्षण हम सुखी हैं, ये स्टेज तो हमारे कभी हो ही नहीं सकती, ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं देखते आ रहे हैं।
4: सब कुछ हो सकती है, आज राजयोग भी यही सिखा रहा है।
5: बिल्कुल ये एक इतनी बड़ी गलत फहमी है जिससे हम आज बाहर निकल सकते हैं कि हर क्षण हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या ये स्थित प्रज्ञ की जो बात की जाती है टोटली अनअफेक्टेड है हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये है वो स्टेज या फिर ये कोई और स्टेज?
4: वो ही स्टेज नहीं, बोले स्थित प्रज्ञ होना अच्छा है कि उससे वह स्टेज बन सकती है, परंतु यह स्टेज एक नेचुरली भी आएगी अगर हम एसेंस समझ ले कि मेरे में एक दिव्य चेतना है और उसका नेचर ही है सुख, मैं जो आत्मा हूँ वह आत्मा ही सुख स्वरूप है, मैं आत्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, नहीं वो एक मेरी पर्सनालिटी है, नहीं मेरा एक स्वभाव है
3: इनहेरेंट, कुछ चीज है जो इनहेरेंट है। अब सपोज डॉक्टर साहब एक डॉक्टर है, अब आप कहें बाहर चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेंगे।
4: हाँ जी,
3: अगर सारी दुनिया भी कहे कि नहीं ये डॉक्टर नहीं है, इवन देन ही विल नॉट से कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बिकॉज अंदर ये पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, सो इट इज इनहेरेंट, वो है ऑलरेडी। अब ये एक एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन है जो धारण की और इसलिए याद रहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनहेरेंट है, वो तो और भी अच्छी याद रहनी चाहिए लेकिन वो भूल गई है। जैसे ही वो वापस जागृत होगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मैं हूँ ही सुख स्वरूप, तो अब बाहर कुछ भी हो जाए माई नेचुरल नेचर कैन नॉट गेट अफेक्टेड। इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो आई एम इम्यून या आई डोंट कंसर्न फॉर पीपल, लेकिन वो उस स्टेज को डिस्टर्ब करे बिना भी हम लोगों को हेल्प कर सकते।

0: मदद कर सकते हैं और पूरा उन चीजों को अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। हमने उससे एंजॉयमेंट और सुख की बात की, एक्साइटमेंट की बात की थी, और कहीं ना कहीं इधर यू नो इनर्ट जो है,
1: और हर्ट और कंपैशन,
0: या
1: दोनों एक है, हम दूसरे के दुख में हम भी दुखी हो जाते हैं, और एक है हम अपनी सुख की स्टेज को अगर मेंटेन करें तो देन हम दूसरे को सहयोग दे सकते हैं,
0: उसके ज्यादा बेहतर, ज्यादा लॉजिकल
1: और ज्यादा अच्छी तरह से।
2: एक बात बहुत अच्छी हाल है, जब कई महिलाएं मेरे पास आती है, जैसे हम देखते हैं सास और बहू का प्रॉब्लम है, तो नहीं कंप्लेन, मेरी सास ऐसी ये है ये कर रही है, तो मैं उनको सब हमेशा ये कहता हूँ, दो काम करो, देखो एक तो आप अपने नजरिए को बदलो, एटीट्यूड को बदलो, एंड सेकंड इज एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय अदर थिंग, स्टार्ट एंजॉयिंग ऑल्सो व्हाट शी इज डूइंग,
0: एंजॉय द म्यूजिक ऑफ व्हाट शी इज डूइंग,
2: व्हाट टिक टिक करती है ना, कहते हैं आके सारा सारा दिन टिक टिक करती रहती है।
1: बट वन थॉट विच आई हैड, जो कहा कि केमिकल इम्बैलेंस, तो इसका मतलब हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं तब वो केमिकल इम्बैलेंस होता है, या केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है इसलिए हम रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं?
2: दोनों सही है।
0: ओके,
2: अधिकतर तो ये कहेंगे कि रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं इसलिए केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है। अभी दूसरा ये भी है कि जहाँ पर जीन्स प्रीडोमिनेंट है, तो भी परिस्थिति भी ऐसी नहीं, व्यक्ति भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है, फिर भी अचानक डाउन फील करता है, अचानक डिप्रेस्ड हो जाता है, तो वहाँ कहेंगे कि प्रीडोमिनेंट केमिकल इम्बेलेंस का रोल है।
0: ओके,
1: और फिर क्या उससे नेचुरली नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे?
2: या तो उसके लिए मुश्किल होगा उस स्टेज में पॉजिटिव सोचने लगे, ज्यादा मेहनत करें। जैसे भी प्लेन पर चलना इजी है, पहाड़ी पर ऊपर चलने के लिए आपको फोर्स लगाना।
0: तो अब हम उन्हीं सिम्टम्स पर आते हैं, यू नो द नेक्स्ट स्टेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने लाइफ स्टेज पे तो देख लिया वो, जब कभी खुशी कभी गम है, कभी कभी खुश हो जाता हूँ, कभी कभी दुखी हो जाता हूँ, कुछ कुछ घंटे के गैप के बाद। उसके बाद सिम्टम्स क्या नजर आए कि हमें सोचना चाहिए कि डिप्रेशन सीप इन कर गया?
2: हाँ जी, नहीं, बहुत सारे डिप्रेशन है, काफी जितना संभव होगा आपको मैं बताता हूँ कि एक तो बात यह है कि भी व्यक्ति को ये होगा कि चलो जो ऑफिस नहीं जाना है, घर में ही पड़ा रहूं, कोई बीमारी नहीं है, और एक जो बात देखी गई है कि भी अच्छे से स्नान करने की दिल नहीं होगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, है कैसे भी कपड़े पहन लेगा, शेविंग करने का अच्छा नहीं लगेगा, नेल्स कट नहीं करेगा, ऐसी जो सिंपल चीजें हम आमतौर पर करते हैं, भले जीवन में समस्याएं हैं फिर भी एक सामान्य व्यक्ति करता है,
0: लेकिन एक दिन करे तो चलेगा ना? अगर ज्यादा दिन चेक करेंगे तब, एक दिन तो मैंने कई लोगों को देखा ये करते हुए कि एक दिन वो कहते हैं कि संडे को हर चीज की छुट्टी,
2: एक दिन ठीक है वो तो भी, इसलिए ये नहीं कि आपको इच्छा नहीं है, परंतु संडे के दिन आप फ्रीडम लेना चाहते हैं कि भी आराम से बोले सारे,
1: लेकिन कितने रूटीन से ब्रेक करने,
0: कितने दिन तक अगर वो करते रहे तो डिप्रेशन का शिकार,
2: वो तो 5-6 दिन भी कहेंगे, एक दिन जो संडे को आप कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप रिलैक्स होना चाहते हैं, नो यू वॉन्ट टू जस्ट लेट गो थिंग्स, परंतु ऐसा अगर 2-3 भी रहे और आपको दिल नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि भी वो डिप्रेशन की सचमुच शुरुआत है, हो गई है। और कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कि भी खाने का दिल नहीं होता, भी अच्छी अच्छी चीजें घर में बनाई है फिर भी आपको लगता है कि भी नहीं खाऊं तो अच्छा, आज भूख ही नहीं है, तो वह भी एक डिप्रेशन की निशानी हो सकती है।
0: और सोना भी जुड़ा हुआ होता है, नींद,
2: नींद ना पिक्यूलियर है डिप्रेशन में, जो नींद की पिक्यूलियरिटी है कि एक तो सारी रात भी नींद नहीं आएगी, वो भी पॉसिबल है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है सारी रात व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको एक बार नींद आ जाएगी, 4 घंटे 5 घंटे नींद आ गई, लेकिन फिर सवेरे 3-4 साढ़े 4 बजे नींद उड़ गई, फिर लाख कोशिश करने से भी नींद आ नहीं रही है, तो वह एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का। और एक सिम्टम है लॉस ऑफ वेट, कि उसका वजन है वह देखो हर मास कम होता जा रहा है, और साथ में और भी सिम्टम्स है, कुछ फिजिकल डिजीज में भी लॉस ऑफ वेट हो, जैसे डायबिटीज वाले भी वेट को लूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट, और सिम्टम्स के साथ उसको जोड़ना होगा तो सचमुच पता चलेगा। और एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है कि जो कई बार फैमिली फिजिशियन भी मिस कर जाते हैं, वह एक्सेसिव स्लीप,
0: अच्छा ज्यादा सोना
2: भी कहते भी बच्चा सोता ही जा रहा है, 11 बजे उठता है सवेरे, बड़े भी है उनको लगता है सवेरे 9 बजे अभी भी थकावट है, अभी भी सो जाऊं, दैट एक्सेस ऑफ स्लीप ऑल्सो कैन बी अ सिम्टम ऑफ। और एक पावरफुल जो सिम्टम है वह है कि जीवन जीने की इच्छा खो देना, कभी एक शुरुआत में होता है कि मर जाऊं तो अच्छा है, कल खुद बोलेगा नहीं परंतु कोई पूछेगा तो कहेंगे हाँ जीवन अच्छा नहीं है। दूसरा एक है व्यक्ति खुद बोलेगा कि

0: भगवान ले ले तो अच्छी बात है। उसके आगे की स्टेज है कि व्यक्ति प्लान करने लगता है कि कैसे मरूं, ट्रेन के नीचे गिर के मरूं, जहर पी के मरूं, क्या करूं तो मैं मर जाऊं। अगर प्लानिंग की शुरुआत हुई तो देन स्टिल यू आर इन अ डीपर डिप्रेशन एंड दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड दे आर रियली एक्यूटली डिप्रेस्ड।
1: यहाँ ये एक बहुत क्लियर बात हमें ये सामने नजर आ रही है कि जो सिम्टम्स हैं इन्हें पकड़ लेना चाहिए हमें खुद भी, और अगर हम खुद नहीं पकड़ पा रहे तो हमारे अपने क्या समझ सकते हैं इस बात।
0: बिल्कुल है ना, वो अपनों फैमिली मेंबर्स को ही देखना चाहिए। कई बार फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं उसको ब्लेम करते हैं।
1: एक ईमेल भी हमारे पास आया है सुधा शिवानी डॉक्टर साहब की, ये अर्चना जी ने अपनी बेटी के लिए भेजा है कि ये 16 इयर्स की इनकी बेटी है, 12th में पढ़ रही है और 10th में भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे, 10th में टॉपर थी, लेकिन 11th में आते आते सडनली शी सेज की शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर स्टडीज, और अब वो टोटली रिबेल भी हो गई है, लेकिन म्यूजिक में चली जाती है, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है, और इतना हम प्रेशर नहीं भी डाल रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ने में इंटरेस्ट खोती जा रही है। और कई बार ये कह रही है कि मैंने उसे देखा है कि वो, मैंने बात करने की कोशिश भी की है कि किसी से प्यार तो नहीं हो गया या कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, तो कहीं मेरी बेटी डिप्रेशन में तो नहीं चली गई है, तो क्या ये कोई ऐसी बात पता चलती है?
0: काफी है वो इसी प्रकार के, और भी थोड़ा अच्छे से उसको केस को स्टडी करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे सिम्टम्स है यहाँ।
1: एक सडनली जो है पढ़ाई से इंटरेस्ट हो जाना,
0: अगर ये सडन हुआ और अगर यही बात एग्जाम के दौरान हुई है, समझो एग्जाम के 15 दिन एक मास पहले, तो फिर एग्जामिनेशन फोबिया भी कॉज
1: नहीं, शी सेज की 10th में शी हैज अ टॉपर बट 11th तक आते हैं शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट।
0: एंड इफ इट हैज हैपेंड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, कि जब भी कोई एग्जामिनेशन फोबिया का सवाल ही नहीं है, तो फिर वो डिप्रेशन की संभावना है,
1: तो ऐसे में
0: स्टडी करना चाहिए।
1: कैसे कैसे वो हेल्प कर सकती हैं अपने बेटे की?
0: तो ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, कई माता पिता इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करते, उल्टा ब्लेम करते कहीं बार कि भी बच्चा आलसी हो गया है, उसने जिसे और कहीं उसका मूड लग गया है, कई बार तो भी सोच ड्रग्स लेने लगे, सचमुच वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं, तो जो आइडेंटिफाई किया वो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर आवश्यकता है कि भी प्रोफेशनल को भी कंसल्ट करे एक बार, तब है ना एग्जैक्ट वो बात को समझ में आएगी, और एक्सपर्ट सचमुच बता सकते हैं, कई टेस्ट भी आती है इसकी।
1: स्कूल काउंसलर जैसे में कितना हेल्प कर सकते हैं? स्कूल काउंसलर से बातचीत अगर की जाए, बच्चा अगर बातचीत करने की हिम्मत रख पाए, तो कितना कहाँ तक उनकी मदद हो सकती है?
2: आई थिंक काउंसलर बहुत अच्छी मदद कर सकेंगे, लेकिन उससे अच्छा भी अगर ये मदर,
1: इफ शी कैन टॉक,
2: मदर अगर बात करती है, एंड इसीलिए वो एक रिलेशनशिप पहले से कैसे बना हुआ था, अगर वो डॉटर उतनी कंफर्टेबल है कि वो जिस दौर से गुजर रही है अगर वो शेयर कर पाए, देन द मदर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट
1: रोल। एक्चुअली पर की ये बात करें उसमें रिबेल भी हो चुका होता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं मदर और डॉटर के बीच में भी कई बार वो कोल्डनेस आ चुकी होती है।
2: ट्रू,
1: मतलब देखा ये गया बिकॉज शी इज अ रिबेल, द वे शी इज कमिंग आउट ऑल्सो, कि वो इग्नोर करती है चीजों को, तो मदर भी अप्रोच नहीं कर पा रही, तो वो
0: प्रोफेशनल काउंसिलर कैन
1: डेफिनेटली
0: प्रोफेशनल इनफैक्ट ना, एज एन अ काउंसिलर एनीबडी कैन बी अ काउंसिलर।
1: अंडरलाइंड हमने बात की थी, आपने एक बार कहा था कि अंडरलाइंड कुछ वो बातें होती हैं, तो अंडरलाइंड वजहें क्या हो सकती हैं
0: इस प्रकार के स्टेज की? हाँ हाँ, अभी ये जो यूथ में अगर हम इस बात को स्टडी करते हैं, तो यूथ में तो एक लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम कैन बी अ कॉज, क्योंकि ये एक स्टेज है कि जिसमें बॉडी ग्रो हो रही है, वो बच्चे भी नहीं है शायद एडल्ट भी नहीं है, तो जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गन्स आर ऑल्सो गेटिंग ट्रांसफॉर्म, तो तब कई यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कंफ्यूजन में उनको सही आंसर नहीं मिले तो भी डिप्रेशन होने की बहुत बड़ी संभावना।
1: और आज के वक्त में जबकि इतनी अवेयरनेस है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है,
2: एंड आई थिंक यही वो फेज है जहां हम वो आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरते हैं। यूथ ये वाले एडोलेसेंट पीरियड में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन वो इंटरनल जो चेंजेस हैं, फिर से कॉलेज स्कूल लाइफ तक फिर भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, दूसरों की तरह बनने की कोशिश, किसी फिल्म स्टार की तरह और फिजिकल ब्यूटी पर बहुत ज्यादा अटेंशन।
1: तो ये भी रॉन्ग मिथ हो सकती है क्या कि एडोलेसेंस में ऐसा होता ही है कि बच्चे रिबेल होते ही है या आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही है? क्या ये भी एक रॉन्ग मिथ है या
2: होता ही है? नहीं है, बट उनके लिए सिचुएशंस वैसी बनती जा रही हैं। एक तो वो पेरेंट्स से थोड़ा सा विड्रॉ कर जाते हैं क्योंकि लगता है ये वो

0: डिप्रेशन। कई बार ऐसा भी हुआ कि भी माँ ने बच्चों को मार दिया, वो डिप्रेशन की स्टेज थी एक्चुअली।
1: अगेन होपलेसनेस भी था ना, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा था, रोशनी नहीं नजर आ रही थी। तो वो रोशनी जो है वो हमें कहाँ से मिल सकती है, ये हम आपसे जानते हैं इस वक्त।
2: उसी में अगर हम पहले से ही, ये तो एक बहुत सिवियर स्टेज पर पहुंच गए, तो आई थिंक इस समय तो मेडिकल हेल्प की जरूरत है, वो ट्रीटमेंट और मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि उसके बिना, क्योंकि शायद इस टाइम सेल्फ काउंसलिंग पॉसिबल भी नहीं है, हमें शायद अवेयरनेस भी नहीं है कि हम उस दौर से गुजर रहे। लेकिन उससे पहले जैसे समय की बात की, थोड़ा समय अगर हम अपने लिए निकालना शुरू करें, थोड़ा अपने प्रायोरिटीज को देखना शुरू करें। अब ये डॉक्टर साहब ने कहा कि भले छोटा फ्लैट हो, बट हाउ मेनी पीपल विल अग्री कि भले छोटा फ्लैट हो लेकिन अपने लिए समय निकाले। एवरीबडी वॉन्ट्स द बिगेस्ट, बिगेस्ट घर, बिगेस्ट गाड़ी, बिगेस्ट एवरीथिंग, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी,
1: और ये भी कि दूसरों का भी हमें ले लें।
2: हाँ, तो वो कंपैरिजन, कंपटीशन, तो वो अगर जीवन की यात्रा के दौरान हम इतना जोर से भाग रहे हैं इस यात्रा में कि हमें रुक कर चेक करने के लिए भी टाइम नहीं है कि हम सही दिशा पर हैं कि नहीं, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू रन। आई थिंक स्टॉप एंड पॉज, आई एम आई, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, क्या मेरे जीवन का सिर्फ यही उद्देश्य रह गया है कि मुझे पैसे से खरीदी जाने वाली हर चीज चाहिए, तो वो हो जाएगा, लेकिन वो सब चीज भी खुशी के लिए चाहिए थी, तो क्या वो खुशी भी उतनी ही मात्रा में आ रही है। आई थिंक बीच में अगर एक बार भी रुक कर ये चेक किया जाए, और अगर हम पाते हैं कि नहीं ये थोड़ा कम हो रहा है, वील बी एबल टू चेंज इट, वील डेफिनेटली।
1: यू सेड स्टॉप एंड पॉज, लेकिन वो स्टॉप एंड पॉज भी हम तभी करेंगे जब अंदर से कहीं उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे हम। एक्चुअली हम अभी तक तो अपने तरीके ढूंढ लेते हैं, हम में से हर कोई, जैसे आपने भी लाइफ की कई स्टेजेस बताई, उसमें हम अभी तक अपनी उस खुशी को, कि चार घंटे अगर मैं खुश हूं तो चार घंटे दुखी हो भी जाता हूं, तो मैं कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ लेता हूं, तरीका ढूंढ लेता हूं,
2: क्योंकि तब हमने बहाना बाहर को दिया हुआ है ना, तो हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपने दुख को। लेकिन जहां वो बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया कि बाहर मेरा दुख का कारण नहीं है, मेरे अपने अंदर है, तो अगर वो चार घंटे नहीं, चार मिनट के लिए भी आता है, आई विल हैव टू स्टॉप एंड चेंज। अगर वो बाहर तक था तो वो चार घंटे आ जाएगा, कल आठ घंटे आएगा, व्हेन इट्स इनसाइड देन आई कैन चेंज फास्टर।
1: बिल्कुल। और अब डॉक्टर साहब ये बात करते हैं कि ये तो पूरे एस्पेक्ट हुए कि हमें किस तरह से अपने मेंटली अपने आप को अगर हम समझ लें, इस बात तक आ जाएं कि दुख भी आ रहा है, वो चार घंटे जो दुख आ रहा है वो बाहर से अगर आ रहा है, तो हमें इंटरनली अपने आप को रियलाइज करवाना है कि व्हाट आई वांट, यू नो, एंड विल आई गिव द राइट टू समबडी एल्स टू ब्रिंग अनहैप्पीनेस टू मी। एक वो स्टेज जब डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, जब कोई सेल्फ काउंसलिंग, वो एक किसी की बात आवाज ही नहीं पहुंच रही, क्या करना पड़ता
0: है? तो दो चीजें, जो शिवानी बेन ने दवाइयों की बात की, उतना ही इक्वली इफेक्टिव है साइकोथेरेपी, पर भारत में शायद इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास धर्म की आदि बातें थी, लेकिन विदेशों में सचमुच रिसर्च स्टडीज भी हुई। ये कई बार साइकेट्रिस्ट भी यही कहते हैं कि भाई दवाइयां ही लो बस, पर दवाइयों से डेफिनेटली फायदा होता है, लेनी भी चाहिए, परंतु अब स्टडीज में उतनी ही इफेक्टिव है साइकोथेरेपी। इसको कहा गया है बिहेवियर कॉग्नेटिव थेरेपी।
1: साइकोथेरेपी में बेसिकली क्या किया जाता है?
0: ऐसे बहुत प्रकार की साइकोथेरेपी है, जैसे फ्रॉइड से इसकी शुरुआत हुई वास्तव में, सेगमेंट फ्रॉइड ने सारी सिस्टम डेवलप की साइको एनालिसिस की, उसके बाद उनके ही शिष्य कहेंगे यंग थे कि जिन्होंने एनालिटिक साइकोलॉजी बनाई, ऐसे ही दूसरी एक है बिहेवियर थेरेपी। परंतु वर्तमान समय में कि जो बहुत प्रैक्टिकल भी है, व्यक्ति अपने आप भी बहुत कुछ कर सकता है, वह है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशन मतलब कि जो आप फील करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसके द्वारा अपनी बिहेवियर में परिवर्तन लाओ, और इस पर अमरीका में तो लाखों डॉलर खर्चे किए गए ये देखने के लिए कि वो कितनी इफेक्टिव है। और ये देखा गया कि एमिप्रामाइन नाम की एक मेडिसिन है, कि जो बेसिक मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए, एमिप्रामाइन जितना मदद करती है उतना ही ये बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी हेल्प करती है।
1: ओके,
0: दैट्स एन पावरफुल रिसर्च।
1: तो बिल्कुल, अब ये जो पूरी थेरेपीज हैं जो कि काउंसलिंग का भी एक हिस्सा हो सकती है और पूरे रिसर्च पे बेस्ड है, इसके ऊपर बातचीत हम डिटेल में अगली कड़ी में जरूर करेंगे कि डिप्रेशन को कौन कौन से सीवियर डिप्रेशंस में ये मदद कर सकती है, और किस तरह से बिना दवाई के भी हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ड्रगलेस थेरेपीज के बारे में बात करें, तो इन थेरेपीज को अपना के हम जो सीवियर डिप्रेशन के केसेस हैं उनको भी लाभ दिलवा सकते हैं, और उसके अलावा जो आम जिंदगी में जो है किस तरह से इस तरह का जो पूरा दिनचर्या

0: जिसका हम अपना एक एस्पेक्ट ले रहे हैं, उससे हम डिप्रेशन से ही दूर रह सकते हैं। तो फिलहाल आज आपके साथ बातचीत रही डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपको भी बता दें कि आज हमने जिन छोटे छोटे मुद्दों पर बातचीत की है वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनको एक बार फिर नक्शल में ले लेते हैं कि कई स्टेजेस में हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब ये लगने लगे कि कभी खुशी है कभी गम है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हमारे आसपास आ चुका है, सीप इन कर रहा है। और जब उस स्टेज पर पहुंच जाए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम वो तरीके तलाशने लगते हैं कि किस तरह से हम सुसाइड करें या किस तरह से जीवन को खत्म कर सकते हैं, ये वो स्टेज है जहां हमें अब कोई भी इंतजार नहीं करना है, प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो डिप्रेशन से जुड़ी हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। कई ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, अगली कड़ी में हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माय वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणे की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: जीवन में सुख पाने के बहुत तरीके होते हैं, उनमें से सबसे अनूठा, सहज और प्रेरणादायी तरीका है सेवा। सेवा न केवल करने वाले व्यक्ति के अंदर ज्योति जगाता है, लेकिन उन लोगों के तमाम लोगों के जीवन में भी अंधेरा मिटाता है जिनके प्रति वो सेवा की गई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही विशेष सेवाधारी के साथ। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आप सभी श्रोता साथियों का मैं आज शांतनु स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो मधुबन। जब बात सेवा की गई है दोस्तों, तो आपको समझ ही गया होगा कि आज हमारे साथ जो हमारे विशेष मेहमान हाजिर हैं स्टूडियो में, उनका सेवा से कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर है। मैं कहूंगा कुछ न कुछ ताल्लुक क्या, उनका जीवन ही सेवा है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जितेंद्र सिंह शंटी जी, एक ऐसा नाम है जिसने कोरोना काल में कईयों के जीवन में अंधियारा जो छाया हुआ था उसको मिटाया है। हजारों लाशों को दाह संस्कार कराना, उनके अंतिम संस्कार की विधि अपने सर पे लेकर के करना, ऐसा काम जितेंद्र सिंह शंटी जी ने अपने दल, अपने एनजीओ के साथ मिलकर के किया। शहीद भगत सिंह दल जिसके ये फाउंडर रह चुके हैं, आप सब ने मिलकर के देश के कितने ही ऐसे परिवार वालों को सुख पहुंचाया है जो खुद अपने हाथों से अपने प्रियजनों का, परिवार वालों का दाह संस्कार नहीं कर पा रहे थे। अपने इन्हीं अनूठे सेवा के प्रयासों के लिए जितेंद्र सिंह शंटी जी को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। और आज हमारा ये सौभाग्य है दोस्तों कि हमारे स्टूडियो में शंटी जी मौजूद हैं। शंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि शहीद भगत सिंह दल की आपने शुरुआत की, क्या प्रेरणा रही थी, किस चीज की वजह से आपने इस दल की शुरुआत की, और एक अलग ही प्रकार का ये एनजीओ है?
3: देखिए, कई बार छोटा सा एक हादसा इंसान के जीवन को बदल देता है।
2: जी बिल्कुल।
3: और मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जो सेवा के लिए बनी है।
2: बिल्कुल,
3: सिख कम्युनिटी।
2: हाँ जी,
3: मुझे प्राउड है इस बात। और 1995 में एक शमशान घाट पे जब मैं क्रिमेशन में गया और मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठा रहा है, तो मैंने सोचा मेरे दोस्तों ने शायद चोरी कर रहा है। हम लोग उससे पूछा, तो ये आप लकड़ी क्यों उठा रहे हो? तो जो बात उसने बताई वो सुन के

0: मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और सन रह गया हम सुनकर, और शर्म भी आई अपने ऊपर कि हम राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे हैं जहां पे ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि वो बाहर गांव से आए हैं बच्चे का इलाज कराने और बच्चे की मृत्यु हो गई है
1: जी,
0: और सुबह से बैठे हैं शमशान घाट पे, पैसे नहीं है लकड़ी के सामग्री के पंडित जी के, कुछ चारा ना देख, सर्दियां थी रात होने वाली थी, तो किसी ने सलाह दी कि जो दाह संस्कार होता है उसके आसपास कुछ लकड़ियों के पीसेज बच जाते हैं। उठा के बेचारा संस्कार कर रहा था, बहुत शर्म आई हमें कि हम किस राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हैं जहां पर लोग 1 करोड़ की कार में घूमते हैं, करोड़ रुपए फ्लैट में रहते हैं, शादी में मैरिज एनिवर्सरी में बच्चे के जन्मदिन में करोड़ों रुपए लगाते हैं लोग। उस दिल्ली के अंदर यार एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है और दाह संस्कार के पैसे नहीं है। हमने उसका दाह संस्कार कराया, अगले दिन हम बैठे सारे दोस्त, इसके ऊपर हमने चिंतन किया। कई दोस्तों ने कहा यार ये तो प्रशासन को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, तो हमने ये बात कही कि देखिए सब कुछ प्रशासन और सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा, हमको भी आगे आना चाहिए उसके। जब बिजली चली जाती है प्रशासन तो बिजली देता है लेकिन टेम्परेरी तो हम ही हल करते हैं ना,
1: घर में लाइट गई तो क्या करेंगे,
0: पानी गंदा आता है तो क्या करते हैं, आग लगाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम सरकार पर डिपेंड नहीं करते प्रशासन पे, तो क्यों ना हम शुरुआत करें। एक शमशान घाट पहले हमने अडॉप्ट किया, बोर्ड लगा दिया वहां पे कि कोई भी लावारिस डेड बॉडी होगी या गरीब परिवार से असहाय परिवार होगा उसको हम दाह संस्कार करेंगे। एक एक करके 17 शमशान घाट अडॉप्ट किए, पहले महीने में 2 बॉडी आती थी, 10 आने लगी, चर्चा का विषय बन गया वो। उसमें 2 बातें आई कि जहां हमें कई लोगों ने सराहा वहीं बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया।
1: इसमें किस प्रकार का क्रिटिसिज्म आया?
0: बस वो अपने कुछ हमारे रिश्तेदार भी, यहां तक कि मेरा भाई भी कहने लगा कि ये तो यार लाशों का धंधा करते हैं, कफन बेचते हैं, इस टाइप का बातें सुनने को मिली
1: जी।
0: लेकिन मेरे को एक बहुत सयाने व्यक्ति ने कहा था कि जब आप सेवा में उतरे हैं तो आप आंखें खुली रखिएगा, कान बंद रखिएगा और सेवा करते जाइएगा, और यही करते करते करते करते बढ़ता चला गया काम। फिर हमें एक चीज और दिखी कि यार जब डेथ किसी की हॉस्पिटल में हो जाती है, बॉडी को घर लाना है, तो कितना भी अमीर आदमी होगा अपनी कार पे तो नहीं लाएगा ना। लोग फिर कोई टेम्पू कर रहे हैं, कोई रेडी पे लेके आ रहा है। तो हमने एक 1996 में एक डेड बॉडी ले जाने के लिए शव वाहन बनाया, उसका इनोग्रेशन मैंने कपिल देव से कराया। फिर एक एम्बुलेंस बनाई, उसका इनोग्रेशन मैंने माननीय मुख्यमंत्री सैर सिंह वर्मा जी से कराया दिल्ली में। तो लोगों में जागृति आई, यार ये क्या कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं गाड़ियां। पहले तो 1-2 बातें थी, आज हमारे पास 15 से 20 डेड बॉडी पर डे की एवरेज है अभी भी। बस यही सब करते करते भाई साहब हमें ईश्वर ने देश के लिए,
1: आप चाहती तो आपको राह मिल ही गई, और मैं समझता हूँ चाहने वालों को ही राह दिखता भी है और मिलता भी है और उनको सफलता भी मिलती है। लेकिन शंटी जी यहाँ पर मैं ना एक और बहुत अनोखी बात जो हमारे श्रोता साथियों को शायद पता नहीं होगा कहना चाहूंगा कि शंटी जी को, हमारे प्यारे भ्राता शंटी जी को बहुत लोकप्रियता के साथ डोनर सिंह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप वो सिख हैं जिन्होंने 100 बार से भी ज्यादा ब्लड डोनेट किया हुआ है, इसलिए आपका नाम डोनर सिंह है। जहां बात आती है ब्लड डोनेशन की, कई लोग करते हैं कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक और ऐसा विषय है जिसपे मैं आपका भी और श्रोता साथियों का ध्यान खींचना चाहूंगा, वो है ऑर्गन डोनेशन का, जहां पर कई मरीज ऐसे हैं जिनका लंग्स या हार्ट या किडनी लीवर आदि आदि ये ट्रांसप्लांट करने के लिए लंबी कतार है वेटिंग लिस्ट की, लेकिन आज हमारे पास इतने डोनर्स नहीं हैं। ऑर्गन डोनेशन के विषय में, अंग दान के विषय में या रक्तदान के विषय में आपका क्या कहना है, आप क्या इस बारे में हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे?
0: देखिए जो आया गुजरात में भूचाल, तो मैं बचपन से ब्लड डोनेट करता था मैं, और पहली बार कैसे किया था ये बड़ा अजीब हादसा है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे मम्मी के पास एक आंटी जी आते हैं और कहते हैं कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है कल, खून नहीं मिल रहा। तो मैंने कभी तब तक ब्लड डोनेट किया नहीं था, मैं 18-19 साल का था। तो मेरी माता जी कहती है मेरे बेटे को ले जाओ,
1: बहुत सहज भाव से,
0: और कुदरत का करिश्मा देखिए कि जो उनका ब्लड ग्रुप था एबी पॉजिटिव, मेरा भी वही, और उनका ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गए, और वो जहां भी कहीं भी खड़े होते थे कॉलोनी में आज भी हैं वो, ही इज अ लाइफ। मैं आपको बात जो सुना रहा हूँ 30 साल पुराने, वो एक ही

0: बोलते थे कि मैं तो शंटी के खून से जिंदा हूँ। उस चीज ने हमें बहुत बढ़ावा दिया। मैं रेगुलर करने लगा, साल में 4 बार 5 बार जहां भी मौका लगता था। मुझे तो पता भी नहीं लगा 2019 में मुझे नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल से फोन आया और दिल्ली स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल से कि आपकी सेंचुरी हो गई है और आपको हम डोनर सिंह का अवार्ड दे रहे हैं। वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले आ गए मेरे पास, उन्होंने मेरा नाम छापा उसमें। तो वो एक परमात्मा ने एक सिला बना दिया कि हमने एक शुरुआत की थी। और दूसरी बात आपने की बॉडी डोनेशन की। देखिए मैं अक्सर एक बात कहता आया हूँ कि पशु पंछी वो भी अपने लिए नहीं जीते,
1: बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं काम आते हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में तो लिखा है कि पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कछु काम ना होए। इंसान मरेगा जला देंगे दफना देंगे, और पशु मरेगा पंछी मरेगा किसी के पंख काम आ रहे हैं, किसी के बाल काम आ रहे हैं, किसी की हड्डियां काम आ रही हैं, किसी की आंखें काम आ रही हैं, किसी के नाखून काम आ रहे हैं। एक हम ही ऐसे हैं जो कहीं काम नहीं आ रहे, सारी जिंदगी एक वृक्ष नहीं लगाते हम, और जाते जाते 4 क्विंटल लकड़ी और ले जाते हैं, पर्यावरण का और हम सत्यानाश करते जाते। तो कुछ लोगों ने प्रयास किया इसके लिए। दिल्ली में माननीय आलोक जी, आलोक कुमार जी, उन्होंने एक दधीची के नाम से संस्था बनाई। मेरे को याद है 25 साल हो चुके हैं इस बात, और उन्होंने बॉडी डोनेशन के लिए काफी प्रयास भी किया। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों की उन्होंने बॉडी डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट की और हुई भी। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी माता जी का हुआ था। ऐसे हम भी फॉर्म भरवाते हैं उसके, लेकिन प्रशासनिक अवेयरनेस नहीं है इसमें। ये बात बोलूं मैं आपको, और जैसे ब्लड डोनेशन की बात में आ जाए, इसके लिए भी अवेयरनेस नहीं है। इसमें सरकारों को और प्रशासन को प्रचार करना चाहिए, सेलिब्रिटीज से प्रचार कराना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल, बहुत पोलियो था हमारे देश में, लेकिन लोग दवाई लेने नहीं जाते थे, बच्चों को वो 2 बूंद पिलाना नहीं था।
1: 2 बूंद
0: बिल्कुल,
1: हाँ जी
0: 2 बूंद ऐसे बोला, बस सब चल दिए लेके बच्चे को। तो अगर ऐसी कोई सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो 18 से 60-62 साल के बीच में है और 50 किलो से ज्यादा वजन है और हीमोग्लोबिन उसका 13 से ऊपर है, साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, तो लोग ब्लड देने भी आ जाएंगे। और मैंने ये बात दूसरे तरीके से भी उठाई, क्योंकि मैं दिल्ली स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ 12-13 साल। हर मीटिंग में मैंने बात उठाई कि जो इंसान रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा है उसको प्रशासन भी तो कुछ सेवा दे।
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी ने 25 बार दिया है उसे आप सिल्वर मेडल दीजिए और उसको बोलिए जी आप।
2: जी हाँ, जिसको रिकॉग्निशन मिलता है उसको ये प्रेरणा भी मिलती है कि मैं थोड़ा और कुछ करूँ, है ना, मतलब प्रोत्साहन से प्रेरणा भी मिलती है। जी
0: बिल्कुल, उसको बस की टिकट फ्री कर दीजिए ना
2: जी।
0: 50 बार दे उसको, बोलो तेरी ट्रेन की टिकट फ्री है, कितनी बार चला जाएगा साल में, 1 बार चला जाएगा 2 बार। और जो सेंचुरी करे उसको आप प्लेन की दे दीजिए, मत जाए भले, वो एक ऑनर देने वाली बात है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो उसमें प्रशासनिक अवेयरनेस नहीं है हमारे देश में। देश में बोलूं तो कई जगह है, केरल में है, आसाम में है, तमिलनाडु में है, इन स्टेट्स बता रहा हूँ जहाँ पे 100% डोनेट।
2: भाई साहब, जैसे आपने जिन स्टेट्स के नाम लिए, जिन राज्यों के नाम लिए, वो उन राज्यों में अगर देखा जाए तो शिक्षा का दर बहुत ज्यादा है, एजुकेशन इज क्वाइट हाई देयर। तो कहीं ना कहीं क्या ये एजुकेशन में नहीं आ जाता कि अगर मान लीजिए बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा दी जाए कि रक्तदान करना या अंग दान करना ये कोई स्टिग्मा नहीं है, इसमें तो बहुत गर्व महसूस करना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, इसमें कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये शिक्षा में ही आ जाए तो हो सकता है यही बच्चे आगे चल करके एक बहुत बड़ा फोर्स बन सकते हैं इस मुहिम के लिए। आपका क्या कहना है?
0: बात नहीं आ रही शिक्षा को, शिक्षा में कौन डालेगा?
2: अगेन प्रशासन, वेरी गुड,
0: बात नहीं आ रही
2: जी।
0: इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ देश की हर सरकार को, हर स्टेट को, कि मैं बता रहा हूँ कि केरल में और आसाम में 100% डोनेशन है। 100% इन द सेंस, अगर वहाँ पे 10,000 पेशेंट को ब्लड चाहिए तो 10,000 लोग देने वाले हैं।
2: जी,
0: दिल्ली के अंदर मात्र 44% डोनेशन है, 44% राजधानी है, वो ब्लड नहीं डोनेट कर रहे लोग। तो ये अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी, ये गैप खत्म करना पड़ेगा, ये सोच के चले। तो मैं अक्सर हर जगह हर भाषा में बोलता हूँ, बच्चों को बहुत अवेयर करता हूँ ब्लड डोनेशन के लिए। कोई मुल्क ऐसा नहीं है, जापान जैसा भी, जिसने प्रोडक्शन ऑफ ब्लड किया हो। ब्लड 2 जगह से मिलता है, या इंसान देता है या ईश्वर देता है, बीच में कोई माध्यम नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई जंतु नहीं है, कोई ऐसी चीज है। अगर पशुओं का और पंछियों का ब्लड चढ़ जाए तो बात क्या है, फिर तो कमी ना पड़े। वो तो सड़कों पे और गलियों में बहा रहे हैं, नालियों में बहा रहे हैं। और इसके लिए मैंने एक स्लोगन तैयार किया था कई साल पहले, रक्त दाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता।
2: वाह जी, कितना सुंदर कहा आपने, रक्त दाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। वही नहीं,
0: आप खून दे सकते हैं या ईश्वर, बीच में

0: कोई माध्यम नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। मैं डोनेशन के लिए, ब्लड के लिए, बॉडी डोनेशन के लिए सबको अवेयर करता हूं। और एक शुरुआत जो आलोक जी ने किसी दधीची नाम की संस्था से, ऐसे सबको आगे आना चाहिए, देश के कोने कोने में प्रचार करना चाहिए।
1: भाई साहब, जब आप ये बता रहे हैं तो मुझे ये ख्याल आया बार बार कि आप जो सेवा कर रहे हैं, और वर्तमान समय एक बहुत बड़ा एग्जाम आया पूरे कंट्री के सामने, पूरे देश के सामने, लेकिन उस एग्जाम का सबसे टफ सवाल मैं समझता हूँ शायद आपने हल किया, क्योंकि डॉक्टर एक हद तक मदद कर रहे थे, बट उसके बाद उन लोगों का क्या जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनके शरीर का दाह संस्कार करना, जहां पर लोग इन्फेक्शन के डर से एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे थे, आइसोलेशन था, मतलब मैं समझता हूँ एक्चुअल डर ने सबसे ज्यादा तहलका मचाया था, कोविड से भी ज्यादा। तो ऐसे समय में जब आप और आपकी टीम वहां फील्ड पे खड़े होकर के लावारिस लाशों का या कोविड इन्फेक्टेड लाशों का जब दाह संस्कार करते थे, तो क्या आपके टीम में या आपको डर नहीं लगता था?
0: देखिए, पहली बात तो जो डर बना, लोग खाली डर से नहीं मरे, लोग प्रशासनिक नाकामी से मरे। कई स्टेट्स में वहां की गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं थी। अब जैसे पहला आया 23 मार्च 2020 में, उसके बाद आया अप्रैल 2021 में।
1: जी,
0: पहले वाले में कोरोना ज्यादा हुआ, डेथ रेट कम था, ठीक। उसके बाद गैप मिल गया 10 महीने का, क्यों नहीं आपने इंतजाम किया? मैं आपके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में जा रहता हूँ, हॉस्पिटलों ने बैनर लगा दिए वहां पे, प्राइवेट हॉस्पिटल ने सबने की नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। तो अब लोग घबराएंगे नहीं क्या?
1: बिल्कुल,
0: ऑक्सीजन लेवल लोगों का जा रहा नीचे, 70, 60। अब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो जो सिलेंडर 500 का था वो 10,000 का मिल रहा है, 20,000 का मिल रहा है, मुंह मांगे पैसे ले रहे हैं। कि मैं आपको राष्ट्रीय राजधानी की बात बता रहा हूँ, इसमें प्रशासनिक फेलियर हुआ है बिल्कुल। जो सेंटर ने मदद भी करी तो इन्होंने उस मदद को पहुंचाया नहीं जनता तक। सच बात है, पॉलिटिकल मैटर, दिस इज ए सोशल मैटर, दिस इज जिम्मेदारी बनती थी। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप एम्बुलेंसेस नहीं मिली, डेड बॉडी उठाने वाली शव वाहन नहीं मिले, 10,000 बस दिल्ली में खड़ी थी, सब कर्फ्यू लगे हुए थे, उसमें से 200-400 बसों की सीटें निकाल के उसको एम्बुलेंस बना देते, उसमें लाशें उठा लेते, ये 4-4 दिन लोगों की लाशें घर पे पड़ी रही है। जी, कुछ नहीं किया इन्होंने। वो डर जनता के बीच में बैठा, वो डर सेवा करने वालों के बीच में बैठा। क्यों? हॉस्पिटल में डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्सेस ये भगवान के रूप में थे। उनके पास ग्लव्स नहीं थे, उनके पास सैनिटाइजर नहीं था, उनके पास पीपी किट नहीं थी। तो घबराहट तो अपने आप हो रही, उन्होंने सेवा करी। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हॉस्पिटल्स थे और लैब वाले, इन्होंने जो कहर बचाया, जो गंदगी करी और देशद्रोही करी, द्रोहिता करी इन्होंने, कि जो पीपी किट 300-400 रुपए की होनी चाहिए, इन हॉस्पिटल वालों ने 7-7, 8-8 हजार रुपए की बिल में लगाई लोगों को। और एक हॉस्पिटल अगर 500 बेड का है, 700 बेड का है, और वहां 25-30 पेशेंट अगर आईसीयू में है, एक डॉक्टर चेक करने आता था, 25-30 लोग लेते, सबके बिल में लगा देते थे 8,000 की। डॉक्टर साहब आए थे आपको देखने। कहर में सच्चा बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि हमने लाशें उठाई हैं वहां से। उसके बाद पहली बात तो जिस बीमारी का इलाज नहीं है, इन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने पैकेज लेना शुरू कर दिया कि आप तो इसको कोविड है जी, ये पैकेट 10 लाख का पैकेट और ये 12 दिन का होगा। जो कमरा 4,000 रुपये कोई नहीं लेता था, 3,000 में उसके उन्होंने 15,000 रुपये लगाए। कहर बचा दिया जी। यहां भी सरकार फेल रही, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने घोषणा करी कि हर हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर बैठाएंगे। बैठ गए नोडल ऑफिसर, कुछ नहीं किया उसने, एक हॉस्पिटल के ऊपर FIR नहीं हुई। यार, जिस देश के अंदर एक मिठाई के साथ कोई डब्बा तोल दे तो उसको कैद है, पटाखे नहीं बेचने तो कैद है, बेचेगा कोई तो। इतना बड़ा देश के ऊपर विपत्ता आई है, गरीब से गरीब आदमी पड़ोसी की मदद कर रहा था, ये हॉस्पिटल वाले पैसे काट रहे थे, ये लैब वाले 400 रुपए वाला टेस्ट 10,000 रुपए में कर रहे थे।
2: मतलब आपसे मुझे ये चीज की प्रेरणा मिल रही है कि हर चीज हमको प्रशासन के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि आपने अपने हाथों में कुछ चीजें उठाई, हर चीज के लिए हमको प्रशासन कर राह नहीं देखना चाहिए, कहीं कहीं पर हमें खुद भी आगे बढ़कर के कदम उठाना चाहिए।
0: बाद में अपनाया
1: जी,
0: आप कहाँ से अपना लेते? जो चीजें दिल्ली सरकार अवेलेबल नहीं कर सकती, मैं कहाँ से ले आता हूँ? वो सोची बात को, मैं जो ला सकता था लकड़ी मिली थी शमशान में, हमने लोगों से अपील की फेसबुक पे, हमने पैदा कर ली लकड़ी, 500 टन लकड़ी आ गई। अच्छा। बैनर लगा दिया, फ्री लकड़ी का लंगर लगा दिया, लेकिन जो
1: लकड़ी का लंगर, ये बहुत अच्छा है,
0: लंगर लगाया
1: बहुत बड़े,
0: मतलब लिटरली वह बात ढेर लग गई कि लोग हैरान हो गए तो लकड़ी कहाँ से आ गई
1: जी।
0: क्योंकि मेरी सोच कहती थी कि जो हमारे शमशान तक आ रहा है, पहले वो हॉस्पिटल में लुट गया, खूब लुटा हॉस्पिटल
1: जी,
0: फिर वो मोर्चरी में गया, वहां से मोर्चरी से शमशान लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती थी 50,000 रुपए में, 1000 वहां भी लुट गया। अब मुझे लगता है कि जो शमशान में आया ऐसी जेब में पैसे नहीं होंगे कि लकड़ी खरीद ले,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना हम उनको सेवा प्रोवाइड करें। हमने उनको वहां लंच ब्रेकफास्ट सब इंतजाम कर दिया, शमशान घाट को एक धार्मिक स्थान का रूप दिया गया और लोग बड़े खुश हुए जी। किसी से कोई एक रुपया फालतू नहीं लूटा किसी ने, काम हुआ बड़ा, 4,200 डेड बॉडी एक महीने में, मजाक नहीं है। लेकिन प्रशासनिक फेलियर के कारण मौतें हुई नागरिकों की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, यहां तक मेरे भी दो ड्राइवर चले गए, हम भी मरते मरते बचे, लेकिन हमने तो कसम खाई थी। लोग मुझे डराते थे कि शंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं, मैं एक ही जवाब देता था कि देखिए हम एक मिलिट्री की तरह काम कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। 27 साल में शहीद भगत सिंह सेवा दल ने ना दिल्ली सरकार से ना भारत सरकार से ग्रांट नहीं लिया,
1: क्या बात है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा,
0: एक रुपया भी ग्रांट नहीं लिया। और इसीलिए मैं ठोक के बोलता था, जब हॉस्पिटल वाले बेईमानी करते थे तो मैं उनकी लाश नहीं लाता था, लाशें रोक ली इन्होंने। 2017 में एक चार्टर आया था सुप्रीम कोर्ट में कि आप किसी की डेड बॉडी को रोक नहीं सकते हॉस्पिटल वाले, लेकिन उन्होंने रोकी, हमने लड़ भिड़ के दिलवाई वो लाशें। और अब मैंने माननीय अपील भी करी हुई है गृहमंत्री जी से, इन सभी हॉस्पिटल वालों की जांच कराई जाए, इनके ऑडिट कराए जाए कि पिछले 30 साल में इनकी सालाना इनकम कितनी थी और पिछले 3 साल में कितनी हुई है, और अगर वो पैसा सारा नाजायज है उस पैसे को प्रधानमंत्री राहत कोष में डाला जाए। क्योंकि ये आज अगर हमारा देश खड़ा है ना और लोग बच रहे हैं चौथी लहर में तीसरी लहर में, तो वैक्सीनेशन की वजह से, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन लेके आए और 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा दिया है
1: जी,
0: सबके सामने है। तो मैं एक ही बात कहूंगा इसमें, कहीं भी जो मौतें हुई हैं कोविड के अंदर वो लापरवाही की वजह से हुई है। समाज ने बहुत साथ दिया लेकिन प्रशासनिक लापरवाही कई कई स्टेट्स में रही, यही एक कारण।
2: वैक्सीनेशन से तो कईयों के अंदर बल आया, मनोबल भी आया कि भाई हम जा सकते हैं, कुछ काम और भी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। एक होता शारीरिक वैक्सीनेशन जिससे शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लेकिन एक है मानसिक इम्यूनिटी भी, मतलब मन को। ऐसा कौन सा वैक्सीन आपने लगाया था अपने मन को कि आप रोज उठ करके जाते थे, रोज सेवा करते थे, तो कौन सा मन का वैक्सीन आपने लगाया था?
0: हमारी जो कम्युनिटी है ना,
1: हाँ जी,
0: हम वंश हैं गुरु गोविंद सिंह जी
1: जी,
0: जिन्होंने अपने पिता को कहा था कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी आप जान भी दे दीजिए, और उन्होंने शहादत दी चांदनी चौक में। और गुरु गोविंद सिंह जी की जो कुर्बानी, पूरा परिवार उन्होंने वंश देश के लिए वारा
1: जी,
0: बच्चे चारों साहेबजादे
1: जी, जी,
0: बात नहीं जी, अपने आप को माता पिता सब चले गए, हम उसी वंश से और देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई। अगर हम सो जाते घर में तो ना हमें देश माफ करता, ना हमें वंश माफ करता, ना हमें परिवार, और ना हम अपने आप को माफ कर सकते थे। इसलिए मैंने सबको एक ही बात कही कि देखिए मौत तो निश्चित है, घर में भी आ रही है लोगों को, लेकिन हमारी कर्म भूमि क्या है? एक मिलिट्री वाला लड़ाई लड़ गया दो देशों की, घर में सोके मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा,
1: बिल्कुल,
0: उसको तो सीमा पे लड़ना पड़ेगा। तो हम अगर मौत आनी है ना तो शमशान में आ जाए, लड़ेंगे हम पूरे डट के लड़ेंगे, लड़े डट के। दो बार जाते जाते बच भी गए, मेरे बेटे जोजीत सिंह छोटे वाले हैं जो लंदन से मास्टर करके आए हैं, उनको भी बहुत सीरियस हो गए आईसीयू में, बड़े बेटे को भी हो गया, मनीष को, मिसिस को भी हो गया, ड्राइवर भी मर गए, लेकिन शक्ति दी ऊपर वाले ने। जब मैं ठीक होकर निकल के आया तो बहुत एम्बुलेंसेज और प्रशासनिक और पुलिस ने हमारा स्वागत किया, बहुत काम हमारा रेगुलर चल रहा था
1: जी।
0: तो मीडिया ने मेरे से क्वेश्चन किया कि शंती जी अब आपका जज्बा बढ़ गया या कम हुआ है, अब तो कोरोना भी हो गया, अब डेथ बेड से आए हो। तो मुझे, मैंने उनको कहा कि मुझे एक बात याद आ रही है कि जब करगिल की लड़ाई हुई तो एक जवान की आंख में गोली लगी थी, तो मीडिया वाले ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आंख चली गई आप, अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है? उसके जवाब ने जो ना मुझे खुश कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं दुश्मन को एक आंख बंद करके गोली मारता था, अब तो परमानेंट बंद होगी, अब टिका टिका कर।
1: ये बहुत अच्छा था।
0: तो हमारे साथ भी वही हुआ
1: जी,
0: कि हमारा हौसला और बुलंद हो गया कि मर के बच के आ गए।
2: साथियों, अगर एक व्यक्ति का एक वाक्य किसी और व्यक्ति में इतना बल भर देता है कि वो अपने जीवन को कई लाखों लोगों तक सेवा पहुंचाने का माध्यम बना देता है। तो आज के हमारे एपिसोड में शंटी जी ने तो मुझ में और आप में

बल और प्रेरणा भरा है, सोचने की बात है। इसलिए मैं आपको एक और मौका देना चाहूंगा शांति जी के साथ मिलने के लिए अगले एपिसोड में हमारे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। यशस्वी भारत कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। मैं आरजे शांतनु आपका इंतजार करूंगा हमारे अगले एपिसोड में। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: हर रोज एक नया अवसर है।

0: हर रोज हर दिन एक नया मौका है हमारे पास कुछ कर गुजरने का, कुछ ऐसा जो न केवल खुद को चैन और सुकून का नींद दे लेकिन आसपास के लोगों के अंदर भी प्रेरणा से उनका जीवन भी बदल दे। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के एपिसोड में मैं आज शांतनु आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि आज भी हमारे साथ हमारे प्रिय साथी जितेंद्र सिंह शंटी जी हैं, जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, शहीद भगत सिंह दल के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, और जिन्होंने कोरोना काल में लाखों लाखों परिवारों को एक अनूठे सेवा से सुख पहुंचाया है। लाशों का अंतिम संस्कार करना, ये बहुत बड़ी सेवा शहीद भगत सिंह दल और शंटी जी ने मिलकर के किया है। तो आइए हम जारी रखते हैं हमारे बातचीत को। हम सुन रहे थे शंटी जी से कि कारगिल के उस जवान ने क्या कहा।
1: कि जब कारगिल की लड़ाई हुई तो एक जवान की आंख में गोली लगी थी, तो मीडिया वालों ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप चली गई, आप अब आपने जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है। उसके जवाब ने जो ना मुझे खुश कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं दुश्मन को एक आंख बंद करके गोली मारता था, अब तो परमानेंट बंद होगी, अब टिका टिका कर।
0: ये बहुत अच्छा था।
1: तो हमारे साथ भी वही हुआ
0: जी,
1: कि हमारा हौसला और बुलंद हो गया कि मर के बच के आ गए। सच बोलू मैं आपको, जिस प्रकार 1947 का कत्लेआम लोग नहीं भूलते हैं, पार्टीशन हुआ विभाजन
0: जी,
1: जिस प्रकार 1984 के कत्लेआम को लोग नहीं भूलते, भोपाल गैस कांड को नहीं भूलते
0: जी,
1: कोविड को लोग 200 साल तो नहीं भूलेंगे, 200 ईयर्स, क्योंकि वो जो चीजें थी, जैसे विभाजन की बात करें तो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच के बॉर्डर्स थे, ज्यादा हरियाणा राजस्थान पंजाब यहां ज्यादा इफेक्टेड था, आगे नहीं था, आसाम में नहीं था, वाला
0: नहीं, सारे लोग इकट्ठे इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे, यहाँ तो पूरे देश पे आया हुआ था,
1: सारे इफेक्टेड
0: जी बिल्कुल। क्या छोटा क्या बड़ा,
1: कोई बच्चा हो या तो उसका परिवार से या उसके रिश्तेदारी से या दोस्ती में से या बिजनेस सर्कल में से या मोहल्ले में से, कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ है। और मैं एक बात बताऊं आपको, लोगों ने तो टीवी पे देखा है, फेसबुक पे देखा है, हमने लाइव देखा है। मैं वो 22 दिन घर नहीं गया, इस वजह से नहीं गया कि कहीं किसी की लाश झल्ले से न रह जाए यार। लिटरली मैंने मतलब बचपन में जैसे देखते थे, राशन की लाइनें लगी हुई है, दूध की बोतलों की लाइनें लगी हुई है, यहाँ शमशान के बाद 50-50, 60-60 लोग लाइन लगा के लाश लेके खड़े हैं ट्रॉली पे, नंबर नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो हमने हालात देखे, किस प्रकार छोटा सा बच्चा एक 11-12 साल का अपने पिताजी की डेड बॉडी लेके आता है, एक दो पड़ोसी साथ आए थे हमारी एम्बुलेंस में, वो भाग गए और बच्चा अकेला रह जाता है। अब उस बच्चे को क्या पता लाश क्या होता है, संस्कार क्या होता है। उसका मैंने दाह संस्कार साथ खड़े होकर करवाया, वो बच्चा मेरे से चिपट के रो रहा है, मेरे पिताजी चले गए। अब उससे भी बुरा समय कब आया, जब 7 दिन के बाद वही बच्चा अपनी माँ की लाश लेके आया और वो लाश के साथ गाड़ी के अंदर लेटा हुआ माँ के साथ चिपक जाता है। और उसको माँ से अलग करने में हमें बहुत समय लगता है, और वो माँ चलाता है। और वो एक ही बात बोलता है कि मेरे पापा भी मर गए, मम्मी भी मर गई, मैं भी मर जाऊंगा। मतलब तो वो जो शॉर्ट्स थे ना, मैं सॉरी मैं भूलता नहीं हूँ, बहुत खतरनाक शॉर्ट्स थे। मैंने अपने जीवन में वो जो कत्लेआम देखा है ना, दैट वॉज रियली कत्लेआम था। वो प्रशासनिक लापरवाही से मरे छोटी छोटी बच्चियां पिता की लाश लेके आई अपने काम के अंदर, बड़े से बड़े लोग वहां रो रहे थे कि हमारा संस्कार करा दीजिए। लेकिन मैं देश की जनता को यही बोलूंगा कि आप खुद तैयार रहिए, आप किसी को भरोसा मत। बहुत कुछ देखा हमने, बहुत पास से देखा।
0: तो शंटी जी, जहां तक स्पिरिट को तैयार करने की बात है, कौन सी 3 बातों ने आपके स्पिरिट को तैयार किया है? व्हाट डू यू थिंक, कौन सी वो 3 बातें?
1: एक तो हालात से लड़ना सीखी है। ऐसा नहीं कि भूखे तो भूखी सो जाइए
0: जी,
1: अब कोशिश कीजिए आसमान से भी लोग तोड़ के ले आते हैं। पहली बात हालात से लड़ना सीखिए, पहली बात। दूसरी बात, हिम्मत नहीं छोड़नी है। मैं जब डेथ बेड पे था, मेरा बीपी 35 था, 35, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया नहीं आएंगे। फिर किसी ने कहा कि ये बोला ना इंजेक्शन मंगा लीजिए, हम आके ये लगाएंगे, से बीपी बढ़ेगा आपका। मैंने अपने दोस्त थे, हमारे मेंबर थे, राजिंदर सिंह जी, बुलाया रात 3:30 बजे, वो ढूंढने जा रहे हैं, दुकानें सब बंद हैं, सुबह 5 बजे ढूंढ के लाए। फिर किसी डॉक्टर साहब को घर बुलाया, पकड़ के लाए जाके प्यार से, डॉक्टर रश्मि थी, लेडीज बहुत अच्छे थे, उन्होंने आके इंजेक्शन लगाया। मैं 12-14 घंटे बाद, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। मेरा बीपी 35 है, और मैं फोन पर बात करके ड्राइवर को कह रहा हूँ एम्बुलेंस ले जाओ, वहां ले जाओ, उसने बचाया मुझे।

0: ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, किसी को भी ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत समर्थ हूँ, आप अपने अहंकार में ना रहे। वो ये पहले सोचे कि मैंने पड़ोसी को पहले बचा रहा है। और ये सिखाया कोरोना में लोगों को, देश ने, प्रवासी जा रहे थे, कोई चप्पलें बांट रहा था, कोई रोटी दे रहा था, कोई पानी पिला रहा था, बुरा समय था ये देश के लिए, बहुत बुरा, विभाजन से ही बुरा था, सच्ची बोलूंगा आपको। इसलिए लेकिन मैं इसके लिए तो सैल्यूट करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे हैंडल किया है इसको, बहुत बुरा समय था। और मैं तो सच बोलूं, मैंने मेंबर अपने खोए, दोस्त खोए, मोहल्ले के लोग खोए, लेकिन इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया।
1: शंटी जी, आप हिम्मत की बात कर रहे हैं, और मैंने एक कहावत सुनी है, आपने भी सुनी होगी, कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो हिम्मत करता है उसको ही खुदा मदद भी पहुंचाता है। तो आपने तो हिम्मत की, और आपने बहुत हिम्मत वाला काम करके भी दिखाया, आपने भी खुदा का मदद कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा। कोई ऐसा खास किस्सा, कोई ऐसी घटना इस दौरान जब आप कोविड के टाइम पे मदद कर रहे थे, जो खुदा की मदद कहेंगे, जिसे आप, जिसको आप याद करते थे, आपको लगता है कि ये तो ना कोई इंसान कर सकता था, ना किसी के बस में थी, दिस इज ऑल बाय गॉड हिमसेल्फ। सो ऐसा कोई एक कहानी है किस्सा आप हमें सुनाइए।
0: जब शमशान घाट में लकड़ी खत्म हुई, 40 डेड बॉडी बाहर थी
2: जी,
0: उसकी फिर परीक्षा थी, मैंने किसी को भेजा गाजियाबाद से लाओ यूपी से जाके, मैं टेम्पू में वो ज्यादा नहीं 10-12 टन लकड़ी मिल गई कहीं से, अब लेके आ रहे थे तो टोल टैक्स वाले लोग, मैंने उनको, उन्होंने मुझे फोन पे कहा टोल टैक्स वाले गाड़ी नहीं आने दे रहे, मैंने कहा मेरी बात कराई उनसे। तो मैंने उनको कहा दो बात, मैंने कहा देखिए आपके परिवार में से भी कोई जा सकता है, यहाँ बहुत भयंकर समय है, भीड़ लगी है, कुरला रहे हैं लोग, लाशों में से बदबू आ रही है, छोड़ दीजिए इसको। उनको पता नहीं लालच आ गया या पता नहीं, आई डोंट नो क्या प्रेशर था, उन्होंने गाड़ी नहीं छोड़ी। मैं खुद गया और मुझे लिटरली उनके साथ झगड़ा करके वो लकड़ी लेके आया, लेकिन मुझे सब्र नहीं आया। मैंने कहा ये तो यार 25-30 बॉडी इससे हो जाएंगी, कल क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था, एकदम दिमाग में आया सोशल मीडिया, मैंने लाइव किया है और लोगों को बोला है। मैं आज आपसे पहली बार अपील कर रहा हूं, मुझे पता है और कहीं से अपील के मदद नहीं मिलने वाली है, लेकिन मैं जनता से अपील करता हूं कि हमारे यहां लकड़ी शमशान घाट पे बिल्कुल नहीं है, ऐसा ना हो कि कल लाशें यहां पड़ी रह जाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। सुबह 4 बजे भाई साहब, कोई टेम्पू पे, कोई इनोवा गाड़ी में, कोई रिक्शे में, बहनें, भाई, ईमानदार लोग अपने घर में जो चारपाई की टूटे हुए गोभी लकड़ी थी वो भी ले आए,
2: ब्यूटीफुल,
0: सैकड़ों टन लकड़ी इकट्ठी हो गई वहां। वहां मैं, अगर मैं उस दिन ये सोचता है लकड़ी कहां से आएगी, मैं नहीं करा सकता, मैं हिम्मत छोड़ दूं, ना वो हिम्मत बड़ी काम आई, वो हिम्मत नहीं 4200 संस्कार करा दिए हमारे। और मैं 2 दिन नहीं भूलता हूं कि 21 अप्रैल को हमारे सूर्य नगर राम प्रस्था में ब्रह्म कुमारी आश्रम से बहन सुनीता जी थे, उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बहुत काम किया था, टीचर थे वो, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी उनको लाने के लिए। तो मुझे एक बिट्टू भाई हैं हमारे क्षेत्र में, वो भी बीके से जुड़े हुए हैं, उनका फोन आया कि शंटी वीर जी ऐसे ऐसे बात हो गई है। फिर अजय भाई जी ने बात करी, फिर हमने अपनी एम्बुलेंस भेजी, डेड बॉडी मैंने अपने हाथों से उनका दाह संस्कार कराया। वो बड़ा खतरनाक समय था, वो भूल नहीं सकते हैं कि जो हालात बने, और ऐसे ऐसे हालात बने कि परिवार वाले लोग, एक मेरे दोस्त थे सुनील जी, उनका फोन आया कि माता जी का स्वर्गवास हो गया और हम भी कोविड में। मैं खुद गया, डेड बॉडी को सैनिटाइज किया, लेके आए, संस्कार किया, 2 दिन के बाद उनके पापा की भी डेथ हो गई, 1 हफ्ते के बाद उनके भाई की भी डेथ हो गई,
2: एक परिवार से
0: 3 लाशें मैं उठा के लेके आया। हम एक दिन में 40-50 लाशें घरों से उठाते थे, जिनके घर में या तो कुछ था नहीं, था तो अकेले अकेले लोग, हम ऐसे अपनी गाड़ी लेके जाते थे, लाश उठाते थे, गाड़ी में रखते थे, और आगे जाते थे, रखते थे, फिर और आगे जाते थे, कोरियर कंपनी जाती, फिर लाके सबका दाह संस्कार कराना, शाम पड़ जाती थी। यहाँ तक कि मुझे एक फोन आया मीडिया से कि द्वारका में 5वीं मंजिल पे एक लाश पड़ी है, और बहू ससुर के पास लाश के पास बैठी हुई है, उसका पति कैनेडा में, शंटी जी कुछ करिए। मैं वहां गया, लाश को ऊपर से नीचे उतारा, सैनिटाइज किया, पैक करा, तो वो जो बहन जी थे वो थोड़ा सा रोने लगे, तो एक माता जी ने कहा कि बेटा अब क्यों रो रही है, अब तो ये खुद आ गए हैं लेने के लिए। तो वो बहन जी ने जो बात कही ना, उसने मुझे झकझोर दिया, कहने लगी आंटी जी आंसू तो मेरे सूख चुके हैं 4 दिन में, सच बोलूंगा,

0: और आई थिंक
1: विविधता
2: जी, जैसा कि आपने कहा और मैंने देखा भी है, हम सबने सुना है और देखा भी है, अनुभव भी किया है कि जो सिख कम्युनिटी है वो सेवा के लिए बहुत मशहूर है। कभी भी आप गुरुद्वारों में जाइए, वहाँ लंगर लगा हुआ है जहाँ पर कोई भी धर्म का कोई भी जाति का व्यक्ति आकर के बैठ करके एक ही प्रकार का भोजन करता है। कई लोग, व्यस्त लोग जिनको आप कभी ऐसे देखेंगे नहीं कि या सोच भी नहीं सकते कि ये क्या सेवा करते होंगे, लेकिन आप ऐसे लोगों को देखेंगे गुरुद्वारे में, वो जूता निकाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं और हर प्रकार की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा जो है वो तो एक सिख कम्युनिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ऐसे ही सेवा जो है कई दूसरे धर्म के या एनजीओ के लिए भी प्राइमरी है, उनके भी काम में हमें दिखता है। सेवा के लिए जब बात सेवा की आती है तो आपके हिसाब से कौन सी बातें मुख्य हैं? अगर मुझे सेवा करना है, चाहे मैं एक व्यक्ति हूँ या एक संगठन हूँ या एक धर्म हूँ या कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है हम, तो सेवा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है?
1: निष्ठा।
2: निष्ठा,
1: निश्चय।
2: निश्चय,
1: बचपन से हम पढ़ते हैं, देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कभो न डरो, न डरो और सो जब जाय लरो, निश्चय कर अपने जीत करो। तो वो शक्ति जो ईश्वर ने दी है उसको इस्तेमाल करके, सेवा करके, डट के निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय करना है हमें और होता है वो काम, आप शुरू करके देखिएगा।
2: सेवा के रास्ते में भी हमने देखा शंटी जी कि कई बार ऐसे संगठन, एनजीओ, संस्थाएं ऐसे होती हैं जो सेवा तो करती हैं लेकिन उनके सेवा में थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, कमर्शियलाइजेशन दिखता है। वो सेवा में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉमर्स, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, वो झड़कने लगता है। ऐसे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मेरा जवाब ये, देखिए जी, जिस युग में राम जी हुए तो रावण तभी हुए हैं, कृष्ण जी हुए तो कंस हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हुए तो औरंगजेब हुए हैं। तो जब अच्छे लोग संस्थाएं चला रहे तो दूसरे भी तो आएंगे ना। अब जहाँ एक तरफ डॉक्टर्स ने इतनी मेहनत करी, नर्सेज ने की, पुलिस ने की, सफाई कर्मचारियों ने की,
0: सबने अपना अपना पार्ट,
1: हॉस्पिटल ने लूटा भी तो
2: जी,
1: हॉस्पिटल में भी दिखा दिया ना। अभी दो हॉस्पिटल में छापा पड़ा है, एक नोएडा में और एक गुड़गावा में, अभी महीना भी नहीं हुआ। एक के पास से 42 करोड़ रुपए का सोना मिला है, 4 करोड़ कैश मिला है उसी हॉस्पिटल के, एक हॉस्पिटल के अंदर। सोचिए ना, ये भी तो लोग हैं, ये भी तो वही काम कर रहे हैं जो देश द्रोही वाला।
2: लेकिन कई बार इस प्रकार की चीजों को देखते हुए जो लोग सच में सेवा करना चाहते हैं उनका मनोबल कम ना हो, वो अडिग रहे अपने पथ पर, तो ऐसे सेवाधारियों के लिए आपका क्या मैसेज है?
1: देखो, ये समझ जाए, इस कोरोना में जिनके पास करोड़ों रुपए घर में पड़ा था वो जान नहीं बचा सके, बस समझ लीजिए आप। ऐसी वो एनजीओ जो अरबों खरबों रूपये का ट्रांजेक्शन करते हैं
2: जी,
1: उनको तो प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री नहीं दिया, राष्ट्रपति जी ने बुलाया नहीं उनको, समझिए बात आप। मैं सैल्यूट करता हूँ राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने खुद फोन किया, हमने तो नॉमिनेशन भी नहीं किया था
2: जी।
1: तो ये सारी चीजें मॉनिटरिंग में आ रही हैं, आज हमारे देश में ये मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है, समझ लीजिए आप। ये हॉस्पिटल्स पे रेड होना, ये उन लोगों पर रेड होना जिन्होंने लैब के थ्रू 5 लाख वैक्सीनेशन नकली दिखा दी हरिद्वार में कुंभ के मेले में, सब जेल जा रहे हैं, अब नहीं बचेगा कोई भी। ये कह दिया है प्रधानमंत्री जी ने, इनको नहीं बख्शेंगे, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। जिन्होंने इस बुरे समय में देश का साथ नहीं दिया वो कभी दे भी नहीं सकते आगे, वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे ना
2: जी,
1: तो आज उनको जेल जाने दीजिए ना। जो लोग गलत काम कर रहे हैं एनजीओ वाले, सोच के चले कि वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं, मानवता के साथ धोखा कर रहे हैं। आपने धंधा करना तो बिजनेस करिए ना।
2: इसका मतलब चाहे आप एक अकेले व्यक्ति हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, संस्था है, कंपनी है, ये बात तो तय हो गई कि लालच किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है, लालच सबके लिए बुरी बला ही है।
1: की बात है?
2: कभी भी नहीं,
1: लालच करिए, जहाँ बिजनेस करिए लालच करिए,
2: लक्ष्य रखना अच्छी बात है, लक्ष्य रखिए, ऊंचा लक्ष्य रखिए, क्योंकि ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन लक्ष्य ऊंचा हो लेकिन लोभ नहीं हो, क्योंकि जहां लोभ आया, जहां लालच आई, वहां तो उसका अंजाम बुरा होना ही है। तो इसलिए लक्ष्य ऊंचा रखिए लेकिन उसमें लोभ नहीं मिक्स होने दीजिए।
1: बिल्कुल ठीक बात है। देखो ना, हर फील्ड में अच्छे लोग भी थे, जैसे कोविड आया मुझे अक्षय कुमार जी का फोन आया फिल्म इंडस्ट्री से
2: जी,
1: किशन जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा बताइए। मैंने कहा जी एक एम्बुलेंस एडवांस वाली चाहिए, 2 भेज दी उन्होंने, बताइए छोटी बात है।
2: बिल्कुल,
1: अच्छे लोग भी थे, जहाँ बुरे थे वहाँ अच्छे भी तैयार खड़े थे उस समय लोगों ने अपने।
2: अच्छे लोग बहुत अच्छा काम करे, इसके लिए क्या जरूरी है?
1: बुरे की तरफ देखे मत।
2: बिल्कुल,
1: बुरे की तरफ देखे मत, अपने काम पे डटे रहे, क्योंकि बुरे की तरफ देखे तो ऐसा

0: तो मन मछली तो हो जाएगा, बल्कि बुरे वाला जब देखेगा कि यार अच्छे वाला बहुत आगे निकल गया,
1: तो चलो मैं भी थोड़ा अच्छा कर लूं।
0: समझ में बात, जैसे हम शमशान घाट की सेवा करते थे एम्बुलेंस डेड बॉडी की, हमें देखा देखी 10 संस्थाएं और तैयार हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई कि शुक्र है यार अवेयरनेस तो आई। हम सारा पैसा धार्मिक स्थलों पे लगाया जा रहे हैं
1: जी,
0: जहाँ जरूरत थी देश के लिए वक्ता वहां पर, लोगों को 50,000 रूपये देके एम्बुलेंस नहीं मिली उस समय, कोई स्थल नहीं काम आया, वही काम आया। लेकिन मुझे इस बात का प्राउड है कि हमारी कम्युनिटी के लोगों ने लंगर लगाए दिन रात, ऑक्सीजन भी बांटी दिन रात, दवाइयां भी बांटी, और यहाँ तक कि जो बहुत परिवार कमजोर थे, हॉस्पिटलों का पैसा नहीं दे सकते, उनको पैसा भी दिया। और मुझे जहां जहां पता लगा कि लाश नहीं दे रहे या पेशेंट को नहीं छोड़ रहे, मैंने 25-25 लाख रुपए छोड़वाया एक एक हॉस्पिटल से जाकर कानूनन रूप से, क्योंकि राइट एक ऐसा राइट टू पेशेंट आया था 2017 में, सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है, और ये चार्टर भी आया था, उसमें मेरा कॉपी है, मैं लेके जाता था कि आप छोड़ रहे हैं आपको मैं एफआईआर करवाऊंगा अगेंस्ट, तो समझ जाते थे इनको नॉलेज है, छोड़ देता था, बहुत लोगों को छुड़ाया। तो मैं तमाम देश की जो एनजीओ है, चाहे वो धार्मिक है चाहे सामाजिक है, उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप वही काम करिए जिससे देश का भला हो, मानवता का भला हो, अपना भला तो आपको ईश्वर कर ही देगा ना, कोई टेंशन।
1: सर्व का भला जहाँ कहते हैं ना, सर्व पे भवन जो सुखी ना, उसमें सर्व में मैं खुद तो आ ही जाता हूँ।
0: हमारे गुरु ग्रंथ साहिब लिखे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे
1: सर्व का भला। बिल्कुल जी,
0: हमेशा सबका भला मांगना चाहिए, और अरदास भी हमारे यहाँ तो यही होती है
1: जी,
0: अपने लिए नहीं होती है, सर्वत के भले के लिए होती है। और इस कोविड ने तो जीना सिखा दिया, वो एक वक्त फिल्म आई थी बलराज सहनी जी की, उसमें गाना था ना कि वक्त की हर्षा गुलाम, उसका एक अंतरा है, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, मिजाज तो बदला।
1: बिल्कुल,
0: करोड़पति घर के नीचे बैठा रहा, दरवाजे के नीचे थाली आ रही है जैसे जानवर रोजी जाती है, दिखा दी ना औकात
1: में। बिल्कुल,
0: साइकिल वाला भी घर बैठा था, 1 करोड़ की कार वाला भी घर बैठा था, तो अभी भी उनको अभी भी कोई अकल लेने की जरूरत है क्या? अगर भी हम अभी भी भूल जाते हैं तो फिर हम इंसान नहीं है।
2: जीवन का मर्म सीखने में ही है, और शांति जी आपसे तो कितना सीखा जा सकता है, आपसे बात करने बैठे तो घड़ी के कांटे कहाँ जाते पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी समय की सीमा को देखते हुए मैं आपके साथ अभी इस एपिसोड को एक रैपिड फायर राउंड में लेके जाना चाहूंगा, जिसमें मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और आपसे छोटे छोटे उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में। भारत क्या है?
0: भारत धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है।
2: वेरी ब्यूटीफुल। सेवा क्या है?
0: सेवा एक जज्बा है जो यहाँ से निकलता है,
2: दिल से निकलता है। शांति क्या है?
0: शांति पाने से आएगी, देने से नहीं आएगी। जिस दिन हमने सोच लिया कि मेरे जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, आगे शांति।
1: बिल्कुल,
0: मर के तो शांति मिलनी है आपको, तो पहले शांत हो जाओ भाई, पहले अपने आप को शांत करो, ये शांति
2: जी। खुशी क्या है?
0: खुशी का एहसास कीजिए ना, जब मैं मरने वाला था कोविड में तो मैं लोगों की सेवा क्यों कर रहा था खुशी के लिए? आज भी मैं रात के 3 बजे फोन उठाता हूँ, मैं अपने ड्राइवर्स को भी कहता हूँ कि आप 10 बॉडी रोज उठाते हैं, लेकिन जिसके घर में डेथ हुई है वो एक हुई है 20 साल के अंदर, तो भाई वो खुशी हमने लेनी है सेवा करके, वो खुशी पाई ली जाती है, तो देता नहीं आप, ठीक है, आप खुशी रहना सीखिए।
2: बिल्कुल, इट्स एन आर्ट। जितेंद्र सिंह शांति कौन है?
0: नगर सेवक।
2: बहुत ब्यूटीफुल। और आपका अगर कोई एक ऐसा मैसेज हो जो आप देना चाहते हो?
0: देखिए, जिंदगी में ना किसी काम को छोटा मत समझ। मैंने जब पहली बार एम्बुलेंस का और शवान की सेवा शुरू की तो मेरी माता जी ने एक बात कही थी कि बेटा या तो शुरू मत करता, शुरू किया ना एक तो इसे बंद मत करना अभी, और एक किसी को ना नहीं करनी, आप दिन हो चाहे रात हो मना नहीं करना किसी को। तीसरा मैंने कहा था कि अपने अंदर गुमान मत लेके आना, जिस दिन गुमान लेके आओगे कि मैं कर रहा हूं खत्म हो जाओगे। एक तो मैं लोगों को कहूंगा कि किसी काम को छोटा मत समझो, छोटे से छोटा काम भी आपको कहीं पहुंचा सकता है। अगर 1995 से लाशों की सेवा करते करते आज जितेंद्र सिंह शंटी, शहीद भगत सिंह सेवा दल, राष्ट्रपति भवन पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं
1: जी?
0: पहली बात। दूसरी बात, प्रशासन पर डिपेंड मत रहिए, अपने आप को बुलंद कीजिए और एहसास कीजिए कि हमारे साथ भी हो सकता है, उन सेवाओं के लिए तत्पर रहिए, मेन चीज ये है। और अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, बड़े भाई की इज्जत कीजिए, बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, सबसे बड़ी बात। और अंत में ये कहूंगा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
2: बहुत खूब शांति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके जीवन के हर पहलू से, आपके एक एक वाक्य से अंदर में इतना बल अनुभव होता है कि मैं समझता हूँ

साथियों को आपने तो आज बहुत बहुत धनवान बना दिया है, लेकिन स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपने जीवन के इन स्वर्णिम क्षणों को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता साथियों, यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम सुन रहे थे आज राता जितेंद्र सिंह शंटी जी को, जो कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, जिन्होंने कोरोना काल में हजारों लाशों का अंतिम संस्कार किया है। एक ऐसे समय में जब लोग एक दूसरे के नजदीक आना ही नहीं चाह रहे थे या आ नहीं पा रहे थे, इन्होंने कईयों के जीवन में वो रोशनी लाई जो रोशनी हम और आप शायद नहीं ला पा रहे थे। ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व से मिलते हुए आज मैं और आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। यशस्वी भारत का ये यशस्वी पुत्र जितेंद्र सिंह शंटी एक प्रेरणा है मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए, कि देश और मैं अलग नहीं है, मुझसे ही मेरा देश है। आइए अपने जीवन से, अपने हर रोज के जीवन शैली से अपने देश को यशस्वी बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसी विचार के साथ मैं आरजे शांतनु आपसे अलविदा कहता हूँ। फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, जहाँ पर यशस्वी भारत को यशस्वी बनाने वाले एक और व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 90.4 FM रेडियो मधुबन।

0: कहते खिलाड़ी है बड़ा अनाड़ी है, मेरे साथ मैच हो गया गया गया गया।
1: अरे मारा जो छक्का तो कैच हो गया।
2: फुटबॉल में क्रिकेट
1: हाँ कहा ना
0: सपने में।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो। नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन।
3: नमस्कार, मैं हूं लीना और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज, और आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ घर की महिला शक्ति की। हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों की बात करते हैं, लेकिन क्या हम कभी उस महिला के बारे में सोचते हैं जो हर सुबह सबसे पहले उठकर पूरे परिवार के लिए चाय बनाती है? क्या हम उस माँ के बारे में सोचते हैं जो अपने बच्चों को प्यार से पालती है और उन्हें अच्छे संस्कार देती है? क्या हम उस पत्नी के बारे में सोचते हैं जो अपने पति के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती है? ये वो महिलाएं हैं जो चुपचाप अपना काम करती रहती हैं, बिना किसी वाहवाही की उम्मीद किए। ये वो शक्ति है जो हर घर को एक घर बनाती है। आज हमें ये समझने की जरूरत है कि घर की महिला की शक्ति किसी भी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका प्यार, ये सब मिलकर एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने घर की महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनकी मेहनत को समझेंगे और उन्हें वो सम्मान देंगे जिसकी वो हकदार हैं। क्योंकि घर की महिला जब खुश और सशक्त होती हैं, तो पूरा परिवार खुश और सशक्त होता है। याद रखिए, हर घर की महिला में एक अनमोल शक्ति की छिपी है। शुक्रिया दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर. तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा.
1: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
2: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
3: Om Shanti.
2: Aapka swagat hai being this mein.
3: Thank you.
2: सिस्टर, पिछले एपिसोड्स में कुछ बात हो रही थी कि घर पे अगर कोई हमसे कुछ एडवाइस मांगे या कोई दोस्त, रिश्तेदार, बेटी बेटा, तो हम क्या कहें. प्रॉब्लम ये हो रहा है मुझे कि बेटी एडवाइस मांगती है तो उसकी बात मुझे सच लगती है, दूसरे वाले की मतलब थोड़ा सा रॉन्ग लगता है अगला. तो कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि एडवाइस सच दूं नहीं दूं, क्या दूं, इन्वॉल्व हो जाता हूं मैं उसमें.
3: कोई भी दो लोगों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, लेट्स से इट्स मी एंड अनदर पर्सन, अगर मुझे किसी के साथ संस्कार स्वभाव नहीं एडजस्ट हो रहा, नहीं बन रही, हर बात में ही कुछ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो जनरली जो बात आती है, जो हम फील करते हैं, वो ये है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो राइट है. एंड सामने वाला जो कह रहा है या सोच रहा है या कर रहा है, वो ऑब्वियसली राइट नहीं है. और स्पेशली जब बातें एकदम ऑपोजिट होती हैं, लेट्स से आपने कहा बेटी एंड मदर इन लॉ, अब ये तो सारा दिन उनके बीच चलने वाला है कि अगर वो दो डिफरेंट है, सी दो डिफरेंट बंडल ऑफ संस्कार्स है ना, दो आत्माएं हैं, बिल्कुल दो डिफरेंट अपब्रिंगिंग है. जब एक माँ और बेटी भी है, मदर इन लॉ तो अलग हुआ, माँ और बेटी जो एक ही घर में, एक ही परिवार, जेनेटिकली भी कनेक्टेड है, हम कहेंगे पेरेंट्स के कई संस्कार बच्चों को मिलते हैं, इतनी स्ट्रांग अटैचमेंट होने के बाद भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता ही है, क्योंकि संस्कार अलग अलग हैं. इवन खाने के टेस्ट अलग होंगे, काम करने का तरीका अलग अलग,
2: जाने का ही अलग है, खाना तो बहुत दूर की बात,
3: बहुत दूर की बात है. हर तरह में, जैसे किचन में भी अगर दो लोग काम करेंगे तो काम करने का तरीका अलग अलग होगा. सिर्फ ये होता है क्योंकि वो बच्चा डे वन से उस पेरेंट के साथ रहा है, वो उस एनवायरमेंटल कंडीशनिंग में है. तो बचपन से उधर रहने के कारण उसने कई सारे तरीके उधर के अडॉप्ट किए हुए हैं, और वो ही उसके लिए सही तरीका है, क्योंकि उसको बचपन से वो ही सीखा है ना, किस तरह कितने बजे सुबह उठना है, किस तरह के कपड़े, इवन जो फिजिकल चीजें हम कह रहे हैं, सोचना तो तरीका अलग, लेकिन ये फिजिकल चीजें भी, किस तरह पहनना है, क्या करना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बहुत सारी बातें हैं. तो ये जो कंडीशनिंग है, वो बच्चे के लिए वही कंडीशनिंग सही होती है, क्योंकि उसने वही देखी है, उसने कुछ और देखा ही नहीं है. तो जो उसने देखा वो उसकी पर्सनालिटी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स, बिकम्स पर्सनालिटी. अब वो उसका बहुत डीप रूटेड संस्कार है, एंड देन ऑफकोर्स उसके अपने संस्कार, जिस तरह वो सोचता है, हर परिस्थिति को कैसे रिएक्ट करता है. सपोज उस बच्चे के अंदर गुस्से का संस्कार है, उस बच्चे के अंदर हर्ट का संस्कार है, मदर के अंदर नहीं है, तो फिर एक ही सिचुएशन में वो दोनों भी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, क्योंकि द मदर विल से क्यों छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हो, क्यों तुम इतना कमजोर फील करते हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो. द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल ऑलवेज बी देयर बिटवीन टू सोल्स. सिर्फ यहाँ क्या है, पेरेंट और चाइल्ड में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, फाउंडेशन प्यार की बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए एक्सेप्टेंस, क्योंकि लव मीन्स एक्सेप्टेंस. तो अगर आपको डिफरेंट दिखता भी है, आप उसको पसंद भी अगर नहीं आए, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है. थोड़ी देर क्रिटिकल भी हो जाएंगे, बोल भी देंगे, बट आफ्टर दैट देन इट इज स्टिल ओके, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेवल उस रिश्ते में बहुत हाई है. लेकिन अब ये बेटी जब दूसरे घर जाएगी, जहां कई सालों की एक अलग कंडीशनिंग हुई है, वो कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, उनके सही और गलत के जो पैरामीटर्स है, उनकी राइट्स एंड रॉन्ग्स की जो डेफिनेशंस है, और इस बच्चे की जो राइट्स एंड रॉन्ग्स की डेफिनेशन है, दे कम्प्लीटली डिफरेंट. मतलब हो सकता है कि दोनों का एक भी राइट और रॉन्ग सेम नहीं होगा.
2: बट वहां की फैमिली को भी तो नया नया लगता होगा ना, कि समझो कि बाकी फैमिली 25 साल से एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, तो एक बहू घर पे आती है तो उसको वो लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हमारी तरह जिए, हमारी तरह बात करे, हमारी तरह खाए, हमारा टेस्ट हो बाकी सबकी तरह. व्हाई शी सो डिफरेंट? तो डिफरेंट तो रहेगी ना.
3: एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट. डिफरेंट तो होगा ही ना. अगर ये बात हम सब पकड़ लें इस बात को कि डिफरेंट तो होगा ही, एंड डिफरेंट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग बट डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट सोल. वो आत्मा एक अलग एनवायरमेंट में, अलग वाइब्रेशंस में पल कर आई है 25 साल या 30 साल, और यहाँ एक अलग वाइब्रेशन है. अब सिर्फ 25 साल की अगर हम वाइब्रेशन देख लें तो दो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं. अब हमें ये पता है कि आत्माएं तो

0: अनेक जन्म लेकर आई है। तो मेरे सपोज आई गेट मैरिड एंड गो समवेयर, तो ये 25 साल मेरी कंडीशनिंग इस फैमिली से अलग है, बट वॉट अबाउट मेरे उससे पहले के 60-70 साल एक अलग परिवार में, फिर उससे पहले के, फिर उससे पहले के, कितने सारे संस्कार है यहाँ पे। इतना पूरा बंडल बंडल ऑफ संस्कार, फिर एक अलग एनवायरमेंट में सडनली जाए, वहां 3-4-5 लोग, उनका एक इतना लंबी लंबी लंबी जर्नी के बंडल ऑफ संस्कार, एंड फिर हम जब एक जगह पर आते हैं, इज इट पॉसिबल कि हमारे राइट्स एंड रॉन्ग सेम होंगे?
1: नहीं।
0: सो लेट अस ऑल एक्सेप्ट कि दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड इट्स एब्सोल्यूटली राइट दैट इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसको हमें यहाँ पे फिट कर लेना पड़ेगा कि वी शुड नॉट इवन एक्सपेक्ट। ये एक्सपेक्ट करना ही हर्ट का कारण है।
1: सिस्टर मुझे एक बार पूछने दी आपसे, जो लोग डॉग लवर्स होते हैं वो डॉग्स के बारे में जानते हैं, उनको कहते हैं पेट, बहुत प्यारा है, वो बोलते हैं ना कि ये पेडिग्री अलग है, उसकी जात अलग है, इसका नेचर अलग है, उसका नेचर अलग है, तो वहां क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं
0: हम एक पेट डॉग को? क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि वो हमें एक्सेप्ट करता है।
1: वेरी गुड आंसर।
0: सी व्हाट, व्हाई डू पीपल लाइक पेट सो मच? क्यों उनका इतना अच्छा रिश्ता होता है उसके साथ?
1: पेट बोलते भी हैं।
0: क्योंकि वो पशु भी तो हमें बहुत एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्टेंस हैज टू कम फ्रॉम बोथ द साइड्स। एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एनिमल टू मी, देन फ्रॉम मी टू द एनिमल। यही अगर हम इसको इधर भी ले आए कि दोनों में है, अगर दोनों में से एक भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दे दूसरे को, दूसरा भी करना शुरू कर देगा। इट विल हैपन, दिस विल हैपन। सो ये जैसे आपने कहा, हमने एक्सेप्ट किया ना कि ये एक अलग पेडिग्री का है, ये एक अलग है, तो उसका बिहेवियर पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते। ये ऐसे क्यों कर रहा है? जैसे ही मन में क्वेश्चन उठेगा, ये ऐसा क्यों कर रहा है डॉग, तो एक आंसर होगा, या हमें आसपास के लोग आंसर देंगे ना। सपोज मेरे पास एक पेट डॉग है, नया नया आया है, एंड वो उसका बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मेरे पास पहले एक और था, उसका बिहेवियर मुझे अडेप्ट हो गया, तो मैं उसकी हर चीज को देखते हुए बोलूं, ये ऐसे क्यों खाता है, ये ऐसे क्यों करता है, तो आप क्या एडवाइस देंगे?
1: मैं बताऊंगा कि भाई ये पेडिग्री ऐसी है, ये ऐसा होता है, इसका नेचर ही ऐसा है।
0: परफेक्ट। हाँ। आप ये तो नहीं मेरे साथ बोलना शुरू कर देंगे, सच्ची में ये ऐसे कैसे कर सकता है, इसको हाँ। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, इसको तो जो आप बोल रहे हैं वो करना चाहिए, या जो आपका दूसरा पहला वाला डॉग है वैसे करना चाहिए। देन इट्स रॉन्ग एडवाइस, देन इट इज रॉन्ग एडवाइस। आपने क्या किया, मेरी साइड नहीं ली, मुझे जो नहीं दिखाई दे रहा है वो आपने दिखाया, एंड जैसे आपने मुझे वो दिखाया कि उसके बारे में बताया जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे लिए उस बात को सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, एंड आई से थैंक यू फॉर टेलिंग।
1: बात याद आई, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया कि वो हमको एक्सेप्ट करता है, वो प्यार देता है, तो फिर हम रिटर्न में कर रहे हैं। ऐसे ही क्या छोटे बच्चे से होता है, 2 महीने 6 महीने के बच्चे से? इसी तरह होता होगा ना?
0: बिल्कुल। एक बच्चे के अंदर कोई ईगो नहीं है ना। सी, बच्चा क्यों इतना प्यारा लगता है? बच्चे के अंदर कोई ईगो नहीं है। बच्चा हमें देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर अंदर कोई जजमेंटल थॉट्स नहीं क्रिएट करता है, वो क्रिटिकल नहीं है हमारे प्रति। तो उस आत्मा से जो अभी ईगो नहीं है जिसके अंदर, मतलब उसकी अपनी अटैचमेंट टू राइट्स एंड रॉन्ग्स नहीं है अभी, तो वो हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करता है, तो उसकी एनर्जी हमें कैसी मिलती है? व्हाई इज अ चाइल्ड सो अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव सी एनर्जी?
1: सभी को एक ही नजर से दिखता होगा ना चाइल्ड।
0: आप जैसे हैं उसके लिए वो बहुत अच्छे हैं, वो उसके ऊपर ये सोच नहीं रहा अंदर आपको देख देख के,
1: आप ऐसा क्यों दूध पिला रहे हैं, ऐसे क्यों कपड़े बदल रहे हैं, ऐसा क्यों तंग कर रहे हैं।
0: इवन अगर उसको तकलीफ हो रही है किसी चीज से, एक बच्चे को भी तो तकलीफ होगी ना,
1: रोता है,
0: भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ बुखार आया है, तकलीफ हो रही है, लेकिन उसकी वो अपनी तकलीफ है, वो उस तकलीफ के लिए
1: रोता है,
0: आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता, क्योंकि अभी उसको वो नॉलेज नहीं है दैट आई हैव टू ब्लेम द अदर पर्सन फॉर माई पेन। अ मदर

0: सपोज माँ ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया है टाइम पे, राइट, भूल गई है, एक घंटा बीत गया नहीं पिलाया, तो एक्चुअली मदर रिस्पॉन्सिबल है ना कि बच्चा जो रो रहा है, लेकिन बच्चे को अभी ये हैबिचुएट हुआ नहीं है कि मुझे अपने दर्द के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, वो हम धीरे धीरे सिखाते हैं उसको बाद में, ऐसा है ना क्योंकि तुम ऐसे हो ना क्योंकि, अभी उसको नहीं आता है वो, तो वो अपने दर्द से रोता है लेकिन वो अपने दर्द के लिए
1: ब्लेम नहीं करता
0: क्योंकि वो ब्लेम नहीं करता, तो एक्सेप्टेंस उसकी कांस्टेंट है।
1: ब्यूटीफुल।
0: तो ये कांस्टेंट एक्सेप्टेंस हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्यों, क्योंकि हमें आसपास वो मिलती नहीं है, हर एक अपने मन में हमारे प्रति कुछ कुछ कुछ पकड़ रहा है, एंड और कुछ नहीं तो हर एक अपनी इमोशंस के लिए हमें जिम्मेवार ठहराता है, यू नो, इवन इफ आई एम नॉट क्रिटिकल अबाउट यू बट इफ आई एम इन पेन बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव सेड, इवन इफ आई डोंट से दैट इट्स बिकॉज ऑफ यू बट माई बीइंग इन पेन बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव सेड मीन्स दैट वेरी सटल लेवल यू आर द कॉज ऑफ माई पेन।
1: आपसे बात करते करते एक थॉट आई है कि इंसान का जो जीवन है, किसी का 70 साल, 100 साल, 50 साल, जो भी है, सारी जिंदगी में उसके जीवन में एक इंसान भी ऐसा नहीं है, एक जिसको जिंदगी भर के लिए हर क्षण हर चीज में एक्सेप्ट करे,
0: नहीं करता है, नहीं करता,
1: वही जिसको प्यार करता था, वही जिसको शादी किया बंदा, वही उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद कई बातें उसके फिर नुक्स निकालने लग जाते हैं।
0: क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे राइट्स एंड रॉन्ग्स, हमारे ओपिनियंस सेम होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि वो बेटी शादी करके गई दूसरे घर में, एक है एक्सटर्नल कंडीशनिंग, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो डिफरेंट होगी ही, लेकिन जिस परिवार में वो जाती है, आपने जैसे कहा कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनके राइट्स एंड रॉन्ग्स के डेफिनेशन में फिट हो जाए,
1: उनको भी तो नया नया लगता है ना, ये लड़की मतलब अलग क्यों है।
0: हाँ,
1: लेकिन वो मैंने अगेन,
0: लेकिन वो अलग नहीं बोलते।
1: हाँ, हमारी तरह क्यों नहीं बिहेव करती?
0: नहीं, हाँ, वो गलत है।
1: ओ,
0: अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अलग तो होंगे ही। इफ आई से आप मुझसे अलग हैं,
1: डिफरेंट
0: है, आपकी सोच मुझसे डिफरेंट है, इट्स परफेक्ट, आई एक्सेप्ट यू एंड आई से वी आर डिफरेंट, हम अलग हैं इज एक्सेप्टेंस, लेकिन आप गलत हैं इज रेजिस्टेंस। गलत और अलग में
1: बहुत फर्क है,
0: बहुत, मतलब इतना फर्क है, मैं सही हूँ आप गलत हैं।
1: अलग होकर भी राइट रह सकते हैं, लेकिन गलत होकर राइट नहीं हो सकते।
0: गलत होकर कैसे राइट होंगे? लेट से उस परिवार में सुबह उठने का टाइम 5 बजे का है, अब ये बेटी जिस घर से आई है ये उठती होगी 8 बजे, लेट से, अब वो चेंज तो नहीं होगी ना एकदम से, उसकी कंडीशनिंग है, वो 25 ईयर्स से उतने बजे उठ रही है, उसकी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से, इवन अ सिंपल थिंग लाइक दिस, बाकी संस्कार तो बहुत डीपर लेवल पे हुआ। अब वो 8 बजे उठती है तो पूरा परिवार, एंड इफ इट्स अ जॉइंट फैमिली तो बहुत सारे लोग कैसी एनर्जी क्रिएट करते हैं, मतलब 8 बजे कोई उठने का टाइम है? क्या सिखाया इसको इसके पेरेंट्स ने, ये सिखा कर भेजा है इस घर में?
1: ये तो राक्षसों की हैबिट है।
0: यस यस यस, ये तो आसुरी संस्कार है 8 बजे उठना, हमारा तो 8 बजे तक घर का सारा काम भी हो जाता है, सुबह की एनर्जी कितनी होती है, मतलब आजकल की बेटियां लड़कियां देखो क्या करके आई, ओ एनर्जी।
1: हम तो 4 बजे उठते थे, पूजा कर लेते थे, सब लोगों को सास ससुर उठने से पहले हम सब रेडी, क्लीन करके रेडी रखते थे, और वो जब उठ के आते थे, वाह, हम उनके लिए नाश्ता चाय सब रेडी होती थी।
0: और सास कहेगी आज भी मैं 60 साल की हूँ, मैं सुबह उठकर 5 बजे किचन में हूँ, और ये महारानी अभी तक उठी नहीं। यू नो द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी कैन थिंक एंड से ओवर अ स्मॉल हैबिट।
1: तो जब अंडरस्टैंडिंग एक दो प्लांट्स की है, इसको कम पानी दो नहीं तो मर जाएगा, इसको कम धूप दो उसको ज्यादा धूप दो, ये डॉगी ऐसा है, ये डॉगी तो बहुत गुस्से वाला रहता है, इसके नजदीक ये टाइम पे मत जाना, खाते खाते इसके बर्तन को हाथ नहीं लगाना, इसको तो आप हाथ में भी खिला सकते हो, वहां अंडरस्टैंडिंग है, तो इंसान के इंसान में नहीं है।
0: क्योंकि हमारा अटैचमेंट टू आर ओन आइडिया

0: इट इज राइट वो इतनी स्ट्रांग है कि बाकी सबकी आइडिया या ओपिनियन जो थोड़ी सी हमारे से अलग होगी वो गलत लगती है.
1: अटैचमेंट टू माई ओन आइडिया,
0: सिंपल थिंग लाइक गेटिंग अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. जस्ट सिंपल, वी आर नॉट टॉकिंग डीप थिंग्स. अ सिंपल थिंग लाइक गेटिंग अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग इज एब्सोल्यूटली राइट, राइट? एंड उसके पास, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी लॉजिक होगी.
1: यही बंदा, आई एम नॉट टेकिंग एनीबडी साइड, ये बहू हो या जो भी एक्स वाई जेड, यही पर्सन जो 5 बजे नहीं उठना उठ सकता इस घर में शादी के बाद, वो 5 बजे क्यों उठता है जब प्लेन पकड़ना है तो?
0: ठीक है, उसके पास भी लॉजिक है. ठीक है, मुझे फ्लाइट तो एक आधी बार लेनी है ना, इसका मतलब ये थोड़ी मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाऊंगी. क्यों मैं रोज सुबह 5 बजे?
1: जॉब ऐसा मिल जाए जो रोज 5 बजे जाना
0: है. क्या मुझे जरूरी होगा तो मैं उठूंगी? आपको लॉजिक चाहिए लोगों से? पीपल हैव लॉजिक फॉर एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग. मैं रात को लेट सोती हूँ, मुझे नहीं सोना रात को 10 बजे. आई स्लीप ओनली एट 2 o'clock. आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप एट 5 o'clock. आई डोंट वॉन्ट, अच्छा और कुछ नहीं तो आई डोंट वॉन्ट टू गेट अप एट 5 o'clock. हु सेज 5 o'clock इज राइट? आप आधी रात को उठ के बैठ जाएंगे तो मतलब मैं भी बैठ जाऊँ 5 बजे उठ के? लॉजिक है. हम जो कर रहे हैं, जब हम सबसे बड़ा पाप भी कर रहे होते हैं, हमारे पास उसके लिए भी लॉजिक होती है. एक व्यक्ति पूरी तैयारी करके एक शहर में घुस के अगर 100 लोगों को मार देता है, उसके पास उसके लिए भी बहुत लॉजिक है, रीजन है, और वो 100% उस टाइम कन्विंस्ड है कि जो वो कर, ही इज राइट. तो फिर ये बातों में हम क्यों बोलेंगे कभी भी कि हम रॉन्ग हैं? एंड विच इज फाइन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे लिए, मेरी पर्सनालिटी के थ्रू, मेरे संस्कारों के थ्रू जो मुझे दिखता है वो ही राइट है ना. मुझे वो दिखेगा नहीं जो आपको दिखेगा.
1: और फिर इनको और गुस्सा आता होगा ना, जब मैं राइट कर रही हूँ या राइट कर रहा हूँ, फिर अगला बंदा समझता क्यों नहीं है?
0: बिल्कुल, जब हमारे राइट को कोई रॉन्ग कहता है तब बहुत प्रॉब्लम होती है.
1: ये तो सोचा ही नहीं था मैंने,
0: मेरा राइट है, और सारे लोग, ये लोग बार बार मेरे राइट को रॉन्ग बोलते हैं.
1: पता नहीं मुझे पसंद नहीं करते या मुझे जलते हैं,
0: जो भी रीजन हो. और जब मेरे राइट को ये लोग रॉन्ग बोलने लगते हैं, तब मैं इनके राइट को मैं रॉन्ग बोलना शुरू कर देती हूँ. अगर 5 बजे उठना फैमिली के लिए सही है, लेकिन वो जो बच्चा 8 बजे उठ रहा है वो उसको बार बार रॉन्ग बोलेंगे, तो वो बच्चा, जो पेरेंट्स 5 बजे उठ रहे हैं, वो कहेंगे 5 बजे ही रॉन्ग है उठना. एंड वेरी सून यू हैव 2 पीपल. एंड ये मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ में क्या, ये तो आज पेरेंट और बच्चों में भी हो रहा है. पेरेंट्स सारा दिन में बच्चे को कितनी बार कह देते हैं कि आप रॉन्ग हो? आज तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ता जाएगा उतना राइट्स एंड रॉन्ग्स के डेफिनेशन और उसका अंतर दो लोगों के बीच में बढ़ता जाएगा.
1: मेरे ख्याल से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है लैक ऑफ एक्सेप्टेंस,
0: क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं किया ना.
1: हाँ, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बढ़ रहा है, एक्सेप्टेंस और पावर,
0: डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभी बढ़ रहा है,
1: बर्दाश्त की शक्ति कम हो रही है,
0: डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी बढ़ेगी, नॉलेज, सी वी सेड इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स, इन्फॉर्मेशन जितनी बढ़ेगी, और आज सडनली देयर इज एन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल.
1: आपस में झगड़े इस पॉइंट पे होते हैं, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर ये बोलता है चाइल्ड बर्थ में ये तकलीफ है, बच्चा पैदा होता, तो ये जो आप इन्फॉर्मेशन की बात कह रही हैं सही है, बहुत है.
0: इन्फॉर्मेशन दो आत्माओं को सारा दिन मिल रही है, ये दो आत्माएं दो अलग सेट ऑफ संस्कार लेकर आई हैं, फिर दो अलग कंडीशनिंग है, एंड फिर इन दोनों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है. ये दोनों सोल्स उस इन्फॉर्मेशन को एक अलग अलग तरह से परसीव करते हैं, और इनके जो नजरिए है ये बहुत ज्यादा बदलते जा रहे हैं. आज के समय में पेरेंट और चाइल्ड के बीच भी सुबह उठने का टाइम बहुत अलग अलग है, रात को सोने का टाइम बहुत अलग अलग है, उतना हमारे अपने पेरेंट्स के साथ शायद 20-30 साल पहले नहीं था जितना आज है. हम नॉर्मल पूरा फैमिली ही 10-11 बजे सोते होंगे सुबह 6 साल, हाँ ये है पेरेंट्स 1-2 घंटा पहले उठते होंगे. अभी तो बच्चा सोता ही रात को, पता नहीं रात को सोता है या सुबह सोता है, 3 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, उस टाइम सो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उठने का टाइम भी इतना शिफ्ट हो गया, तो बच्चा रॉन्ग है जिस टाइम वो सोता है, जिस टाइम वो उठता है.

0: तो पर जब हम उनको इतनी चीजों के लिए रॉन्ग कहेंगे तो हमारे से कौन सी एनर्जी वहां जाएगी? यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। जो एनर्जी जाएगी वो उस सामने उस आत्मा को हिट करेगी और वहां से कौन सी एनर्जी आएगी। जैसे आपने कुछ दिन पहले हमारे साथ वो बहुत सुंदर स्टोरी शेयर की थी कि वो जिस फार्मर का चंदन का बाग था उसने सोचा राजा मरे तो मेरे चंदन बिक जाएगी। कुछ बोला नहीं था किसी को। सी दिस इज सो डीप। सिर्फ सोचा था कि राजा मरे तो मेरे चंदन की लकड़ी सारी बिक जाएगी। तो दूर बैठे राजा जो उस फार्मर से कभी मिला भी नहीं था, उस राजा को ये थॉट आता है कि इसके पूरे फार्म को कॉन्फिस्केट कर लो, इस व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल दो। हाउ डिड दिस हैपन? दिस स्टोरी इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी डीप मैसेज कि आप जो सोचते हैं
1: जी।
0: वो सोच सामने वाले को एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी, लेकिन वो सोच सामने वाले के अंदर एक सिमिलर क्वालिटी ऑफ सोच क्रिएट करना शुरू कर देगी। क्योंकि फार्मर ने सोचा राजा मरे, राजा ने सोचा कि इस किसान को ही गांव से बाहर निकाल दिया जाए। ये है डीप। अगर एक पेरेंट एक बच्चे के लिए सारा दिन में ये 10 बार भी सोच ले कि ये बच्चा गलत है, तो फिर बच्चे के अंदर भी बहुत जल्दी कौन सी थॉट आएगी, ये पेरेंट गलत है। अब मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इन लॉस तो दूर, मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में जब ये एनर्जी आने लग जाए यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, तो रिस्पेक्ट, आप रॉन्ग को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, प्यार नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस एंड रिजेक्शन है। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। अब जब यू आर रॉन्ग एनर्जी आ गई दो आत्माओं के बीच, तो ये एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। अब पेरेंट को ये सोचना होगा, अभी इस क्षण बैठकर सोचना है, पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पेरेंट कभी बच्चे के लिए गलत सोच ही नहीं सकता है। तो पेरेंट्स आर ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज राइट, एंड चिल्ड्रन
1: बिकॉज द इंटेंशन इज राइट, इसीलिए राइट
0: बोल रही हैं ना। तो आपके लिए, आप एक बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोच सकते।
1: मेरी इंटेंशन सही हो सकती है, तो मतलब एडवाइस तो रॉन्ग हो सकती है,
0: लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो सही सोच कर ही आप वो बोलेंगे ना।
1: मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है ना।
0: दिस इज इम्पोर्टेंट ना।
1: जैसे मैं नहीं चाहता था हैदराबाद में कि मैं बिजनेस करूं, मैं चाहता था एक्टर बनना, पेरेंट्स चाहते थे नहीं।
0: राइट,
1: वो राइट थे, मैं भी राइट था।
0: दिस इज इट। अब इस लाइन को अंडरलाइन कर ले, वो राइट थे, मैं भी राइट था। इस लाइन को अगर हम जीवन में हर रिश्ते में हर पल रख लें, लाइफ विल बिकम वेरी, बोथ आर ऑलवेज राइट। आप देखो, आपके पेरेंट्स जो भी कह रहे थे आपको जाने के लिए, हाउ कुड दे एक्सेप्ट इफ दे सी इट लाइक दैट, हाउ कुड दे एक्सेप्ट कि सब कुछ है, सब कुछ छोड़कर, इतना सुंदर परिवार, मकान, सुविधाएं, गाड़ियां, सब फैसिलिटीज छोड़कर एक अनजान शहर जहां किसी को नहीं जानते, फिर एक प्रोफेशन ऐसा जहां मतलब सक्सेस कितने कम लोगों को मिलती है और स्ट्रगल कितना ज्यादा करना पड़ता है,
1: और नई नई शादी।
0: हाँ, नई नई शादी। तो ऐसे में पेरेंट तो राइट ही है ना सारा कुछ।
1: हिसाब से देखा जाए तो मैं हर पॉइंट तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मुझे मार्क्स में नहीं दे सकता रॉन्ग है। अभी भी शादी हुई, बिजनेस चल रहा है, पिताजी नहीं रहे, पिताजी की जगह मुझे बैठकर दुकान चलानी है, मकान चलाने हैं, सब छोड़ छाड़ के बॉम्बे चले जाना।
0: लेकिन आज ये बोलना और आज ये फील करना कि वो हर बात में वो राइट थे, ये आज फील हो रहा है। लेकिन उस टाइम कैसे फील हो रहा होगा, कैसे हैं, समझते ही नहीं मेरी बात को, इनको समझ में नहीं आता, इनकी सोच, इनका, यू नो, वी वुड लिटरली फाइंड एवरीथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग रॉन्ग। एंड सिमिलरली आपके अंदर जो वो पैशन था, जो वो डिटर्मिनेशन थी, जो एक डिजायर था, वो उनको नहीं समझ में आएगा। तो जब हमें दूसरे की सोच समझ ही नहीं आ पाती, हमें दिखाई नहीं देता, कई बार हम कहते आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन थिंक लाइक दिस, मतलब मुझे बिल्कुल, मैं कितना भी ट्राई करूं मुझे समझ ही नहीं आता कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। उस टाइम पर हमें ये बात अंडरलाइन करनी पड़ेगी, मुझे उनकी सोच समझ नहीं आ रही, उनको मेरी सोच समझ नहीं आ रही, हम दोनों

0: की सोच किसी एंगल से मैच नहीं कर रही, लेकिन दोनों की सोच अपने अपने जगह से 110% एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल राइट है ऑलवेज।
1: एक कुएं का मेंढक था, उसकी मुलाकात होती है समंदर के मेंढक के साथ।
0: ओके
1: तो वो पूछते है तेरा समंदर कितना बड़ा है? तो मतलब बहुत बड़ा है। तो वो छोटी सी जंप लगाता है, इतना बड़ा उसके वॉल पे बावड़ी के वेल की बावड़ी पे इतना जंप लगा, इतना तो और लग रहा इतना। बाद में जो बावड़ी के एक एज से जंप लगा के दूसरी एज पे जाके बोलता इतना नहीं भाई, इससे भी बड़ा। तो बोला ऐसा नहीं हो सकता, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो सारा कुछ देख लिया। उसकी सीमा है ना थिंकिंग की,
0: बट वो सही है ना, ये इम्पोर्टेंट है, वो सही है ना, ये सीमा है। एज अ थर्ड पर्सन हमें ये दिखाई देगा कि इसकी जीवन ये थी, विच मीन
1: सर्कमफ्रेंस है
0: हाँ,
1: बावड़ी का
0: राइट,
1: ये एज से उधर तक कूद के बोले इसके साथ, इससे ज्यादा क्या होगा,
0: उससे ज्यादा उसको दिखाई नहीं देगा, उससे ज्यादा वो कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी जीवन है। ऐसे ही ये हमारे जीवन है, मतलब हमारे संस्कार, हम अपने संस्कारों से अलग कुछ कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकते। वो हमें मतलब वो कॉन्सेप्ट भी हमें नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं। हमें हर चीज सिर्फ और सिर्फ यहाँ के फिल्टर से दिखाई देती है, उसके अलावा अगर कुछ है तो वो हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको समझ नहीं
1: पाते, आगे सोच नहीं पाते। जैसे हम संस्कारों से बंधे हुए हैं, लिमिटेड है, उसी तरह समय भी लिमिटेड है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: ओम शांति।
1: नमस्कार। ओम शांति।
2: ईच सोल्स डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज बेस्ड ऑन देयर संस्कार्स एंड देयर एनवायरमेंटल कंडीशनिंग। सो इन द सेम सिचुएशन two souls will have a different definition of what is right and what is wrong. While giving advice to someone in conflict, show them the perspective of the other person, which they themselves cannot see. Even if you are in pain, do not hold the other person responsible for your pain. When we blame, it blocks our energy of love. When we don't blame, it means we accept them completely. If we create thoughts for someone that they are wrong, then very soon they will feel that we are wrong. Now both the people will reject each other, and this is disgusting.

इनको भी तो जरूरत है मारी। नाना बापू

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। वाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर वाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: डिटेक्टिव गोपी चंद। एक दिन गोपी चंद के घर फोन की घंटी बजी।
2: हेलो गोपी चंद, मैं मिस कामा बोल रही हूँ। मुझे एक धमकी भरा मैसेज मिला है। मैं चाहती हूँ कि आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें।
1: मिस कामा के घर गोपी चंद ने नोट पढ़ा। इसमें यह लिखा है कि तुम सुल्तानपुर छोड़ क्यों नहीं देती हो? शहर में सभी तुमसे नफरत करते हैं। आप करती क्या हो?
2: जी यूँ तो मैं यही बच्चों के एक स्कूल में म्यूजिक टीचर हूँ, और इसी के साथ साथ मैं घर में बच्चों को वायलिन भी सिखाती हूँ।
1: सफेद कागज पर न्यूज़पेपर काटकर लिखे गए हैं ये अक्षर। यहाँ कोई क्लू नहीं मिलता है। मिस कामा, आपको ये नोट कब मिला था?
2: मुझे लगता है शुक्रवार रात को जब पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई थी, तभी किसी ने ये नोट डाल दिया होगा। उस दिन मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी और अगले दिन दरवाजे के पास मुझे ये नोट मिला।
1: तो फिर आपने मुझे सुबह के बजाय दोपहर में ही क्यों ये खबर दी?
2: जी मैंने सोचा कि अगर ये मेरे ही किसी स्टूडेंट की हरकत हो तो इसे नजरअंदाज कर देना ही ठीक है। बच्चे अगर नाराज हो जाए तो इस तरह की बेवकूफियां कर बैठते हैं।
1: क्या आपको किसी पर शक है?
2: मुझे लगता है कि इसी मोहल्ले में रहने वाले मेरे 3 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट म्यूजिक क्लास छोड़ना चाहता था। गोपीचंद जी, मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को कोई परेशानी ना पहुँचाए। कृपया उनसे ठीक से बात

0: जी
1: वे सोच रहे होंगे आपके शहर छोड़ने पर क्लास बंद हो जाएगी। मैं तीनों से बात करूंगा।
2: गोपी चंद ने पहले स्टूडेंट करण कपूर से पूछा,
1: क्या आप इस नोट के बारे में कुछ जानते हो?
0: जी मुझे इस नोट के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि शुक्रवार रात को मैं घर पर ही था और वायलिन पर नई नई धुन बजा रहा था।
1: क्या तुम्हें वायलिन बजाना पसंद है?
0: बिल्कुल भी नहीं।
2: फिर गोपीचंद राहुल राव के घर पहुँचे।
3: मुझे वायलिन बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मैं हमेशा वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करता रहता हूँ।
1: बेटा ये बताइए कि शुक्रवार की रात आप क्या कर रहे थे?
3: उस दिन मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मैं घर पर ही था और टीवी देखने में व्यस्त था, क्योंकि मम्मी पापा के रहते ये मुमकिन नहीं था।
2: आखिर गोपीचंद रोमा वाजपेयी के घर गए।
1: क्या शुक्रवार की रात आप घर पर थी?
4: जी बिल्कुल, उस रात मैंने अपनी सहेली को घर बुलाया था और हम दोनों खूब देर तक बातें कर रहे थे।
1: मिस कामा, मुझे पता है कि यह नोट किसने लिखा है।
0: बताइए गोपीचंद जी।
1: यह नोट राहुल राव ने लिखा है, क्योंकि जब मैंने उससे पूछा कि वह शुक्रवार की रात कहाँ था तो उसने कहा कि वह टीवी देख रहा था, जबकि उस वक्त तो पूरे मोहल्ले में ही लाइट नहीं थी।
0: धन्यवाद गोपीचंद जी।
2: झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है, और राहुल का झूठ पकड़ते हुए गोपीचंद ने केस तुरंत ही सॉल्व कर दिया।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है,
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
5: अच्छा मैं कहती हूँ,

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट दी अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडिओ पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
0: खाबों का सफर आरजी सनी के साथ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस पूरे कार्यक्रम में हम लोग डी यानी दिल अक्षर से गाने सुनेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग डी अक्षर के बहुत ही खूबसूरत 50 और 60 के दशक वाले गाने सुनते हैं, तो आपके जहन में भी कहीं न कहीं हलचल होगी और वो जो प्यार आपके अंदर छिपा है वो कहीं न कहीं हवा लेगी और बाहर आकर आपसे कहेगी कि आप कितने अच्छे हो। कहते हैं जूटी खुशियों में अब वो एहसास पाए नहीं जाते, हमसे जूटे रिश्ते अब निभाए नहीं जाते। बड़ी उम्मीदों से करते रहे तेरा इंतजार, अब तेरे जूटे मिलन से दर्द के साए नहीं जाते। उम्र भर खाते रहे धोखा वफा की उम्मीद पर, आज तेरी वफा पर भी एतबार एहसास लाए नहीं जाते। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और वैशाली आसवानी हमारे साथ है जिनसे बातें हो रही हैं और वो हमारे साथ आज 50s and 60s के ओल्ड मेलोडीज का कलेक्शन लेकर आई है। तो वैशाली, कार्यक्रम की शुरुआत में आप कौन सा गाना सुनाने वाले हैं?
1: ज्वेल थीफ मूवी से रफी एंड लता जी का सॉन्ग है, इससे कुछ अर्ज किया है। कौन कहता है ये दिल पागल है, कौन कहता है ये दिल पागल है, पागलपन तो एक बहाना है, एक बार तो मुस्कुरा के देख लो, ये पागल दिल तुम्हारा दीवाना है। इसके लिरिक्स कुछ इस तरह से हैं, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी न जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे।
0: ओके ओके, आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM खाबो का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। मज्जू सुल्तानपुरी साहब का आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। मोहम्मद रफी और लता जी का गाया हुआ संगीत सचिन देव बर्मन का था, ज्वेलती फिल्म से, जिसे वैशाली ने हमें बताया था। तो जो वैशाली, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया और सुनाया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस ख्वाबों के सफर में। कहते हैं, हे खुदा मेरे रिश्तों में कुछ ऐसी बात हो, मैं सोचूं उसको और वो मेरे पास हो, मेरी सारी खुशियां मिल जाए उसको एक लम्हे के लिए भी अगर वो उदास हो। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर, खाबो खा सफर। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैशाली, कौन सा गीत आप सुना रहे हैं?
1: हमारा सेकंड सॉन्ग है मधुमती मूवी से, जो लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने गाया है। ये ब्लॉकबस्टर मूवी का सुपरहिट सॉन्ग है, जो 1958 में रिलीज हुई थी। इसकी लिरिक्स कुछ इस तरह से है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चला, तुझे कसम है आ भी जा।
0: ओके वैशाली, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये, मधुमती फिल्म से 1958 का, शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ, लता मुकेश का गाया हुआ, सलील चौधरी का संगीत से सजा ये खूबसूरत नगमा अभी हमारे श्रोता

0: आप सुना है रेडियो पुनी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो खास सफर। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हाँ, 50s और 60s के ओल्ड मेलोडीज को आप सुना है और कोशिश करो कि कोई तुमसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे, रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न टूटे। वैशाली, कैसे हैं आप और अब कौन सा गीत की तरफ आपका इशारा है बताइए।
1: हमारा नेक्स्ट सॉन्ग है टन ऑफ इंडिया मूवी से, जो 1962 में रिलीज हुई थी, जो लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी का एक सैड सॉन्ग है। इस पे अर्ज किया है, यूं मेरी किस्मत मेरी तकदीर हो गई, हमने अपनी यादों में उन्हें इतने खत लिखे कि वही रद्दी बेचकर मैं अमीर हो गई। इसके लिरिक्स इस तरह से हैं, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, आवाज दे तू कौन सी नगरी में छिपा है दिल तोड़ने वाले।
0: ओके, सन ऑफ इंडिया का 1962 का ये गीत आपने याद दिलाया है। सैड सॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा है। शलील बदायूं का लिखा, लता रफी का गाया हुआ, नौशाद साहब का संगीत। जी हाँ, आइए इस गाने का लुत्फ उठाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुणे आवाज 107.8 एफएम, खाबो खास सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आप सुन रहे हैं। और वो रिश्ते क्या जिसको निभाना पड़े, वो प्यार क्या जिसको जताना पड़े। प्यार तो एक खामोश एहसास है, वो एहसास क्या जिसको लफ्जों में बताना पड़े। तो चलिए वैशाली, कौन सा एक गीत आप हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाने वाली हैं?
1: हमारा नेक्स्ट सॉन्ग है बाजी मूवी से, जो किशोर कुमार जी ने गाया है। ये एक सुपरहिट सॉन्ग है। इस पे एक पोएट्री मैं आपको सुनाती हूँ। कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊँ तुझे देखने के बाद। आवाज दे रही मेरी जिंदगी मुझे, जाऊँ मैं या न जाऊँ तुझे देखने के बाद। काबे का एहतराज भी मेरी नजर में है, सर किस तरफ झुकाऊँ तुझे देखने के बाद। तेरी निगाह ए मस्त में मकमूर कर दिया, क्या मकैदे को जाऊँ तुझे देखने के बाद। इसके लिरिक्स इस तरह से है, दिल ही क्या चीज है और दिल की तमन्ना क्या है, तीर पर

0: तीर चला के चला ले तुझे परवाह क्या है। नेक्स्ट सॉन्ग मूवी दिल दिया दर्द लिया का है, मोहम्मद रफी जी और लता मंगेशकर जी ने गाया था। ये मूवी नॉवल वर्थरिंग हाइट्स जो इमिली ब्रॉन्टे ने लिखी थी उस पर बेस्ड है। ये मूवी उस नॉवल पे बनाई गई है। इसकी लिरिक्स कुछ इस तरह से हैं, उम्मीदें आरजुए खेलती हैं यूं मेरे दिल से, पलट आती है मौजे इस तरह टकरारे साहिल से।
1: ओके, 1951 का गीत आपने सिलेक्ट किया है बाजी फिल्म का दिल ये क्या चीज है, साहिल दानवी साहब का ही लिखा हुआ, किशोर दा का गाया हुआ, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये गाना अब आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नैया पुरानी है तूफान भी पुराने हैं, नैया पुरानी है तूफान भी पुराने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं, डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। प्यार के रिश्ते की हो गई है शुरुआत, दिल की दिल से हो गई है पहली मुलाकात। आंखों से जलके हैं दिल के जज्बात। प्यार बढ़ेगा हर पल चाहे जैसा भी हो हालात। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज। आगे बढ़ते हैं वैशाली, अब आपके पिटारे में कौन सा एक गीत है जो हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहते हैं, बताइए।
1: और अब नेक्स्ट सॉन्ग है गाइड मूवी से 1965 में जो रिलीज हुई थी। मोहम्मद रफी जी ने इसे गाया था। इसके लिरिक्स से दिल डल जाए लेकिन रात न जाए, इस पे गुलजार साहब का एक शेर या कुछ लफ्ज अर्ज है। एक समंदर है जो मेरे काबू में है और एक कतरा है जो मुझे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता।
0: ओके, दिल दिया दर्द लिया 1966 का ये खूबसूरत नगमा अभी हमारे श्रोताओं के लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। जी हाँ, शैलेश बदान के लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया, नौशाद साहब का संगीत से सजा, दिल दिया दर्द लिया, इस एल्बम से ये गाना आपने सुना, दिल रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया। जब प्यार हो जाता है तो पता नहीं चलता कि क्या क्या करना पड़ता है। भाई आगे बढ़ते हैं। वैशाली, बहुत प्यारा सा गीत आपने सुनाया, अब आप कौन सा गीत की तरफ आप हमें ले जाने वाले हैं?
2: नेक्स्ट सॉन्ग है वक्त मूवी से, जो आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर जी ने गाया है। इसके लिरिक्स कुछ इस तरह से हैं, दिन है बहार के तेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे, दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, दिन डल जाए हाय रात न जाए, प्यार हो जाता है तो कुछ ऐसा ही हो जाता है। शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, सचिन देव बर्मन का संगीत और फिल्म थी गाइड 1965 का, देवानंद और वैदा रेमन पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गाना था, लेकिन ये फिल्म भी उतना

0: खूबसूरत था जिसे बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले और इसके हर गाने जो है बहुत ही हिट थे। आज भी आप उन गानों को कभी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा सुनते रहे सुनते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना अभी, आइए आगे बढ़ते हैं। और वैशाली, अब कौन सा गीत की तरफ आपका इशारा है?
1: हमारा एक सॉन्ग है जंगली मूवी से जो 1961 में रिलीज हुई थी। इसके सिंगर हैं मोहम्मद रफी जी और लता जी। इसके लिरिक कुछ इस तरह से हैं, दिन सारा गुजारा तेरे अंगना, अब जाने दे मुहे मोरे सजना, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर।
0: ओके, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के। हाँ, ये सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को, साहिर लिधियानवी साहब का लिखा, आशा महेंद्र कपूर का गाया, रवि का संगीत और फिल्म है वक्त 1965 का। ये भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, हिट फिल्म थी, जिसमें बहुत ही अच्छी बातें बताई गई थी और एक सस्पेंस था इस फिल्म में जो आखिरी में पता चलता है। तो चलिए इस गाने का लुत्फ उठाते हैं, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर इस कार्यक्रम को, और मैं हूं आपका हम सफर सनी, और मेरे साथ वैशाली आसवानी है जो 50s एंड 60s के बहुत ही खूबसूरत गाने लेकर हमारे साथ बैठी है। कहते हैं जिसमें याद न आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बने तो खुदाई किस काम की, बेशक इंसान को ऊंचाई तक जाना है पर जहां से अपने न दिखे वो ऊंचाई किस काम की। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खबो खास सफर। वैशाली बताइए, अब आपके पास कौन सा गाना है?
1: नेक्स्ट सॉन्ग है गेटवे ऑफ इंडिया का, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस पे अर्ज किया है, छूट जाए जमाना कोई गम नहीं, हाथ तेरा रहे बस मेरे साथ में, ये कायनात से कम नहीं। इसके लिरिक्स इस तरह से हैं, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हर हम जमाने से दूर जा बैठे।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, मस्ती भरा, हसरत जयपुरी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, मोहम्मद रफी साहब का, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा आपने फिल्म जंगली का गाना सुना। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब आखिरी मोड़ पे हम लोग हैं, तो मैं चाहूंगा वैशाली आखिरी गाना कौन सा है आपके पिटारे में? चलिए, बहुत ही गेटवे ऑफ इंडिया का 1957 का ये खूबसूरत गाना, राजेंद्र कृष्ण का लिखा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, मदन मोहन का संगीत से भरा ये गाना। और इसी के साथ मुझे और वैशाली को दीजिए इजाजत, और जाते जाते कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहता है रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर रिश्ते निभाओ अगर सच्चे दिल से तो ये रिश्ते ही जीने की वजह बन जाते हैं। तो इसी के साथ मुझे और वैशाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सलाम, नमस्ते, खम्मा गनीसा, खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: ये तहसील लफ्जी हटाइए साहब, तरन्नुम में कहिए।
3: अच्छी बात है, गाकर ही सही, लेकिन आपको भी गाकर साथ देना होगा। हु?

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए जीवन कौशल इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग ट्रेड के बारे में बातें करते हैं, अलग अलग विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं। तो आज हम लोग बातें करने वाले एक ऐसे भूमिका के बारे में जो किसी कंपनी, एनजीओ या यूनिवर्सिटी में विशेष होता है। तो उसमें जैसे कि अलग अलग विभागों में अध्यक्ष होते हैं, वैसे ही विभाग अध्यक्ष जिसको कहते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HOD जिसको कहते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि HOD कौन बन सकता है और उसमें क्या क्या स्किल होनी चाहिए और किस तरह की जिम्मेवारियां उन्हें निभानी पड़ती हैं, और वो चीजें अगर आपके अंदर आ जाए तो आप भी एक HOD बन सकते हैं। तो कहा जाता है ये जो करियर है इसके लिए एक नेतृत्व की भूमिका आपके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स होनी चाहिए। जिस किसी व्यक्ति के अंदर विभाग के अकेडमिक और प्रबंधनीय और वित्तीय पहलुओं को संभालना आता है तो वो व्यक्ति इस कार्य को, HOD का जो पद है वो अच्छी तरह से संभाल सकता है। ये करियर सेक्शनिंग भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट और दोनों सेक्टर में उपलब्ध है। हर सेक्टर में जहां भी एक टीम वर्क होता है वहां पर एक HOD का होना बहुत जरूरी है, जिसमें मुख्य रूप से जिम्मेवारियां होती है, रणनीतिक योजना बनाना होता है, टीम का प्रबंधन करना होता है, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और बजट देखना शामिल है। सफल होने के लिए प्रभावी नेतृत्व, संचार, समस्या समाधान और अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को लगातार इम्प्रूव करते रहने की क्षमता बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, और यही महत्वपूर्ण है कि कैसे आप अपने योजनाओं को, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक या फिर अपनी टीम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, HOD क्या है और कैसे बन सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से स्किल आपके अंदर होने चाहिए। तो चलिए इसी के बारे में बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, करियर ऑप्शन जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल कार्यक्रम में। नेतृत्व और रणनीति के बारे में बात करते हैं। विभागीय लक्ष्यों को स्थापित करना, रणनीतिक योजना बनाना और सुनिश्चित करना कि विभाग के सभी कार्य संगठन के समग्र उद्देश्यों के साथ समरेखित हो। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि प्रबंधन की बात करते हैं। कर्मचारियों का प्रबंधन करना, प्रदर्शन प्रबंधन करना और एक सहयोगात्मक उच्च प्रदर्शन वाली टीम का निर्माण करना। दूसरी बात यहां पर यह आता है कि वित्तीय और परिचालन, जिसको कहते हैं विभागीय बजट बनाना और प्रबंधित करना और ये सुनिश्चित करना कि संचालन सुचारू और कुशल तरीके से हो। एकेडमिक और शैक्षणिक संस्थाओं में जो बात आती है, शिक्षण और अनुसंधान संबंधित दैनिक कार्यों का प्रबंधन करना, एक नए संकाय सदस्यों की नियुक्ति और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करना है, समन्वय अन्य विभागों और वरिष्ठ प्रबंधन जैसे डीन के साथ समन्वय स्थापित करना और नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना है। तो यहां पर ये सब जिम्मेवारियां जिनके अंदर होती हैं उन्हें एचओवी बनने में आसानी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि एक सुंदर जो कौशल की बात करें तो किस तरह के कौशल उनके अंदर होना चाहिए, उस पर विस्तार से बातें करते हैं आगे। और आप सुन रहे हैं रेडियो पर विशेष कार्यक्रम जीवन कौशल, और आज हमारा विषय है कि विभाग अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं। तो मैंने जिम्मेवारियों के बारे में बताया और इसके साथ में आवश्यक जो योग्यता और स्किल्स हैं उसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे और आप सभी को बड़ा अच्छा लगेगा। तो आइए जानते हैं कुछ ही पल में, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। ये प्रतीत होता है कि जैसे हम लोग अचोड़ी के या विभाग अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, उनके कौशल और योग्यता का वर्णन हम अलग अलग तरीके में देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको रेखांकित भी कर सकते हैं। जैसे कि ये विभाग अध्यक्ष का अपना क्षेत्र और गहन ज्ञान और विशेषताओं की एक क्या कहते हैं बंच उनके अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी विशेष भूमिका में सफल होने के लिए व्यक्ति के पास उस विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र या विभाग के दायरे से संबंधित गहन विस्तृत और विशेष ज्ञान होना चाहिए। ये केवल सामान्य जागरूकता नहीं है बल्कि उस क्षेत्र की बारीकियों को समझना, प्रक्रियाओं को समझना, उपकरणों के बारे में जानकारी रखना, मानकों और चुनौतियों की बहुत गहराई से अध्ययन और समझ होना, ये इस कौशल की आवश्यकता होती है एक विभाग अध्यक्ष को। योग्यता के तौर पर ऐसा बताया जाता है कि हम उन नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जहां जिम्मेवारी से अपेक्षा की जाती है कि वे नौकरी पर आते ही प्रभावी ढंग से योगदान देना शुरू करते हैं और बिना व्यापक परीक्षण की आवश्यकता के वो काम करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि जिस तरह से विभाग अध्यक्ष या किसी समूह को नेतृत्व करने वाली बात आती है तो वहां पर एक दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक नेतृत्व और प्रबंधन कौशल। टीम को प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने और नेतृत्व करने की क्षमता जिसके अंदर होती है वो एचओडी के लिए काबिलियत रखता है, जिसमें संचार, निर्णय लेना, संघर्ष समाधान और सहानुभूति जैसे विभिन्न गुणों का एक सेट शामिल होना चाहिए अंदर। ये कौशल टीम को साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए भी बहुत काम करते हैं। प्रेरणा और मार्गदर्शन की अगर बात करें तो एक प्रभावी नेता अपनी टीम को प्रेरित करता है और साझा लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करता है। इसमें टीम के सदस्यों को प्रोत्साहित करना और प्रेरित करना शामिल है। संचार की बात करें तो प्रभावी संचार जिसमें सुनना, प्रक्रिया देना और प्राप्त करना शामिल है, ये कुशल टीम लीडर के लिए महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने की बात अगर करें तो समस्या और समाधान की बात करें, यहां क्षमता टीम को प्रभावी निर्णय लेने और चुनौतियों का समाधान करने में मदद करती है। संघर्ष समाधान, एक नेता को टीम के भीतर के संघर्षों को हल करने में सक्षम होना चाहिए। सहानुभूति की बात करें तो दूसरों को समझने और सहानुभूति दिखाने की क्षमता एक प्रभावी नेता के लिए महत्वपूर्ण है। लचीलापन की बात करें तो नेताओं को परिवर्तनों के प्रति लचीला और अनुकूली होना जरूरी है। कार्य सौंपना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रभावी नेताओं को कार्य सौंपना और टीम के सदस्यों को उनकी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाना आना चाहिए। जहां तक बात करें विकास और इम्पोर्टेंस जिसको कहते हैं महत्व, नेतृत्व कौशल जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि ये चीजें अभ्यास, अनुभव और दूसरों से सीखने के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। जहां तक हम लोग देखते हैं कि कई बार कुछ चीजें आपके अंदर नहीं होती लेकिन आप उसको सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे अभ्यास की बात करें तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि जो चीजें हमारे पास नहीं है उसे हम लोग सीख।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूँ? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बदन खुद गुलशन है। सोने के गहने क्यों तूने पहने,

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अनेक प्रेमी रसिक श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात पुणेरी आवाज अर्थात 107.8 FM आणि तुम्ही आता आरजे जगदीश सोबत रंगतदार आणि बहारदार कार्यक्रमात अलग चीज झलक मध्ये। अलग तुमची रसिक श्रोते हो, झलक आमची। अलग प्रेमी रसिक श्रोते हो, आज 15 फेब्रुवारी 2026 आणि अलगची झलक प्रयोग क्रमांक 191।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने बन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
1: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: लाल चुमकत नार लटकत मान मुरडत हिरवरानी
1: मनन से मनोबल तक आस्था से अस्तित्व तक पुणे की आवाज 107.8 खुश रहो खुशियां बांटो
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

0: गले बबल के
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो।

0: आगे कोई फसल न पाए।
1: ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथ दे।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड। जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर है, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रिया, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ी

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि
1: 0102 बोरियत की एरर नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। अभी तक हम स्पिरिचुअलिटी के जब एस्पेक्ट्स को देखते थे, जिंदगी की बहुत सी बातों को ले रहे थे, लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं क्योंकि रोल से जुड़ी हुई है, यानी कि हमारी जिंदगी में हम कितने रोल्स प्ले करते हैं। और वो जब एक्ट अभी तक हम कर रहे थे तो ये लगता था कि दूसरे हमारे स्क्रिप्ट लिखते हैं या मुझे ऐसे ही रोल को प्ले करना चाहिए क्योंकि कोई और डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं ही खुद डायरेक्टर बनी, मैं ही खुद एक्टर हूं और मैं ही स्क्रिप्ट राइटर भी हूं, तो अब मुझे स्किल्स चाहिए थी कि मैं कौन कौन सी ऐसी चीजें मेरे पास होनी चाहिए कि मेरी जो स्क्रिप्ट होगी वो सही होगी और जैसा मैं चाहती हूं वही मैं मैसेज कन्वे कर पा रही हूंगी अपनी एक्टिंग के माध्यम से। एक बात जो हमने समझी थी वो था पर्सपेक्टिव, मेरा लाइफ के प्रति दृष्टिकोण क्या है, परिपेक्ष क्या है। अगर मैं उसमें प्यार और क्रिएटिविटी शामिल करके लाइफ को देखती हूं, मेरे हर रोल में वो फ्लो हो रहा होगा। आगे और बहुत सी स्किल्स कौन सी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने रोल्स पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है और जिंदगी में जिस खुशी को, जिस मजे को, जिस फन को हम तलाश रहे थे वो अब हमारे सामने है। और इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सुश्री शिवानी। जिस तरह से अब स्क्रिप्ट हम खुद लिखने लगे, एक बात तो सामने आई कि लाइफ के प्रति मेरा नजरिया क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी मैं अपने किसी भी रोल में चलती हूं। एंड इनफैक्ट उसमें क्या हुआ है कि जब मैंने रोल प्ले करने शुरू किए मुझे दिखने लग गया कि मेरा नजरिया था क्या और यहां मैं गलत हो रही थी।
1: अवेयरनेस, दिस इज अवेयरनेस। कई बार क्वेश्चन उठता है कि बार बार आप कह रहे हैं अवेयरनेस, क्या अवेयरनेस, कैसे करनी है वो अवेयरनेस,
0: किस लिए करनी है?
1: तो अवेयरनेस ये है कि अपने ही परसेप्शंस, अपने ही वे ऑफ थिंकिंग अब दिखाई देने लगे, क्योंकि उस पर काम करना शुरू किया तो दिखने लगा, ओ अच्छा, आई वॉज लुकिंग एट इट लाइक दिस, नाउ प्रोबेबली आई कैन लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। दैट्स क्रिएटिविटी, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, दिस इज क्रिएटिविटी।
0: एंड उसमें अब गिल्ट नहीं है। पहले क्या होता था कि हमसे कुछ भी हो जाता था और वो हमें लगता था गलत हो गया, यू नो एपरेंटली हमें पता होता गलत हो गया, एंड वी यूज टू गो इनटू गिल्ट कि फिर हम उसके सोल्यूशन वो ढूंढने लगते थे, कारण कि हमने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे किया था। अब क्या हुआ, जब दिख रही है चीजें हमें गिल्ट नहीं हो रहा,
1: गिल्ट की बजाय रियलाइजेशन। ये डिफरेंस है, गिल्ट नेगेटिव एनर्जी, रियलाइजेशन पॉजिटिव एनर्जी। गिल्ट हमें डिमोटिवेट कर देता है और हम और ही दर्द में चले जाते हैं, रियलाइजेशन हमें मोटिवेट करता है। एंड हो सकता है ये सीन में मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, बट रियलाइजेशन मींस नेक्स्ट सीन के लिए आई एम गोइंग टू बी रेडी। यू नो रियलाइजेशन एक्चुअली इट इज रियलाइज मीनिंग रियल आईज। द रियल आईज मीन्स द रियल पर्सपेक्टिव, राइट दृष्टिकोण, सत्य दृष्टिकोण क्या है मेरा, दोज आर द रियल आईज। वो ये जो बुद्धि से जो हमारा दृष्टिकोण है वो हमें रियलाइज होता कि ये नहीं ये। सो एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। हम सोचते थे गिल्ट में गए तो उससे परिवर्तन आ जाएगा, एनर्जी वॉज नेगेटिव, रिजल्ट कैन नॉट बी पॉजिटिव। सो वंस वी रियलाइज आई एम द क्रिएटर ऑफ द एनर्जी, आई एम अवेयर वॉट एनर्जी टू क्रिएट। तो कभी भी जैसे ही फीलिंग आए तो तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये फीलिंग मुझे लो की तरफ लेके जा रही है, उदासी की तरफ लेके जा रही है, क्विकली चेंज इट, डोंट लेट दैट स्पाइरल गो डाउनवर्ड्स, आई हैव टू टेक इट अपवर्ड्स। तो वो अवेयरनेस कि कहीं जो हमने एक बार पहले भी कहा कि यहां एक छोटा सा बच्चा है, उसका हमें ध्यान रखना है, सब कुछ बाहर करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये बच्चा ठीक है। थोड़ा सा भी रोने लगे, थोड़ा सा भी दर्द हो किसी भी बात से, तुरंत आकर रोक लो, स्टॉप, चेक किस बात का दर्द है, फिर उस बच्चे को समझाकर उसके दृष्टिकोण को ठीक कर नाउ कम बैक इनटू द क्रिएटिव प्रोसेस। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो यहाँ नहीं है,

0: It starts from here. That process starts from here. Aur uska result, jahan andar creativity hogi, uska result bahar automatically creativity hogi. To ek hai perception, drishtikon. And dusra humne dekha ki jahan creativity hogi, wahan pyar ki, sneh ki energy automatically flow hogi. Iske liye creativity ke liye jo hume ek aur bahut dhyan rakhna padega, that is acceptance. Ek hai logon ke prati judgment, critical, aur ek hai logon ke prati acceptance. Ki wo jo hai, jaise hai, waise swikar karna. Har scene mein, when I'm interacting with people, energy to wohi hai. Us energy ko agar maine dusron ko judge karne mein use kar diya, I cannot be creative at that time. Because that energy is going to judge you. That
1: whole time is going to be on others. Now actually I have more time for myself.
0: Absolutely. No, and not only that. It's not only for others, but for others, in which form?
1: Negative.
0: You know, ek bar, see, it's the same energy. Ek bar aapne usko ek destructive purpose ke liye use kar diya, negative. To fir aap usko constructive purpose ke liye nahi use kar sakte. Kyunki ek time pe,
1: ek hi cheez ho sakti hai.
0: Do cheeze nahi ho sakti hai. To, haan, ek energy ko aap kabhi kabhi constructive mein use kar sakte, kabhi destruct. Lekin ek hi samay par to wo ek hi prakar se use hogi na. So, if right now, in this moment, मैं आपके प्रति जजमेंटल हो रही हूँ अंदर तो मैं अपनी एनर्जी को नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव वे में यूज कर रही हूँ तो उस मोमेंट इट इज मोमेंट बाय मोमेंट सीन बाय सीन हाँ ये हो सकता है नेक्स्ट सीन आई इमीडिएटली चेंज माई सेल्फ एंड दैट इज व्हाट आई नीड टू डू नाउ यस क्योंकि हमारा बहुत पुराना संस्कार है बींग जजमेंटल इज वन ऑफ आर वेरी वेरी हार्ड कोर संस्कार वेरी मतलब अगर हम इसको ऊपर ऊपर से भी खत्म करें ना It is so subtle, aap sara din dekhenge hum har step pe andar. Ab hum shayad o stage se cross kar jate hain ki hum nahi bolte jaldi jaldi. Lekin andar we are so judgmental about everybody. Hum har ek ke har ek action, har ek word ko judge kar rahe hain sara din.
1: Aur label ki jo baat
0: hai, label karte jaate hain. और इसीलिए क्रिएटिव नहीं है क्योंकि वो एनर्जी फ्लो हो गई डिस्ट्रक्टिव वे में तो मुझे अगर अपने पर ध्यान देना है तो मुझे वो नेगेटिव क्रिटिकल होने की जो आदत है उसको थोड़ा हल्का करना होगा
1: आई थिंक वो कम्प्लीटली ब्लॉक करना होगा
0: फिनिश ही करना है एक्चुअली
1: यू नो वी रियली नीड टू इनफैक्ट हमारे पास एक मेल आई थी उसको हम शेयर करते हैं कि वो कह रही है कि मैं जब घर पे होती हूँ और मुझे लगता है कि मैं जब रोल्स प्ले कर रही हूँ तो मैं उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर रही हूँ ताकि वो हर्ट ना हो भाई मुझे कुछ कहना चाहती हूँ जो सच्चाई है जो मेरे अकॉर्डिंग सच्चाई है लेकिन उनको वो बुरा लगेगा तो इसीलिए मैं वो कहती हूँ जो वो चाहते हैं तो क्या मैं ये सही कर रही हूँ और मैं फिर उसको मैं कैसे अपने रोल को कैसे जस्टिफाई करूँ
0: वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर वेरी इम्पोर्टेंट रोल भी जो हम प्ले कर रहे हैं इसमें बहुत मैटर करता है इंटेंशन हमारी इंटेंशन क्या है उस संकल्प और उस कर्म के पीछे कहीं इंटेंशन प्यार की होती कहीं इंटेंशन डर की होती है प्यार और डर ये दो ऑपोजिट इंटेंशंस हैं अगर मेरा आपके प्रति इंटेंशन प्यार का है मैं आपको कुछ भी कह सकती हूँ और आपको बुरा नहीं लगेगा इट विल जस्ट नॉट हैपन इट्स जस्ट दैट इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग टू एक्चुअली चेक आवर ओन इंटेंशंस कि वो एक्चुअली इंटेंशन क्या है क्योंकि हम बहुत ऊपर ऊपर से देखते हैं अपने आप को तो हमें लगता है प्यार ही तो है और कुछ थोड़ी है नहीं देयर आर सो मेनी इंटेंशन इज देयर इवन ये सोचना कि मैं जो कहूंगी वो आपको हर्ट करेगा आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द इंटेंशन ऑफ हर्ट अगर मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मैं किस भाव से आपको ये कह रही हूँ जो एनर्जी पहले पहुंचती है वो है ये वाली एनर्जी वर्ड एनर्जी तो बाद में पहुंचती है वर्ड्स कभी हर्ट नहीं करते किसी के इट इज द एनर्जी तो अगर हमने वही एनर्जी भेजी होगी तभी आपको हर्ट करेगी सो प्लेइंग योर रोल इज मोर अबाउट The quality of your thoughts and feelings, वो एकदम clear होनी चाहिए, clean होनी चाहिए. Give across your message. There is no way it can hurt. And फिर भी, अगर suppose somewhere कोई hurt हो रहा है, we've understood. Then that is their journey. That's their journey. अगर मेरी लेकिन अपने intention की बहुत checking चाहिए हाँ. Sometimes we can be very downright rude and say कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक थी. We have to be very careful with that. लेकिन अगर I'm 100% clean कि मैंने किस तरह से सोचा है आपके प्रति और किस तरह से बोला है, फिर भी अगर आप hurt हो गए, तो कहीं ना कहीं वो फिर आपकी journey
1: responsibility हो जाती है. और यहाँ लेकिन कई बार क्या कहते हैं हम कि detach

0: होकर मैंने उसे बात की। तो अगेन डिटैचमेंट में मैं उसके प्रति सेंसिटिव नहीं हो पाती, यू नो लाइक उसके प्रति केयर तो नहीं चाह रही मैं।
1: क्रिएटिविटी अपने रोल में लाने के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी जो एक चाहिए वो है सेंसिटिविटी। आज स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर में वी विल फाइंड कि हम सेंसिटिव नहीं है बहुत ज्यादा लोगों के प्रति, क्योंकि हम ज्यादा काम के बारे में सोचते हैं, वेरी वर्क कॉन्शियस, वर्क ओरिएंटेड। तो लोगों के प्रति जो एक सेंसिटिविटी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी अप्लाई करने के बाद भी हम थोड़ा सा कई बार डिटैच होने के प्रोसेस में इनसेंसिटिव हो जाते हैं। वो एक थिन क्या है बॉर्डर लाइन है विच वी हैव टू सी हाउ टू मेंटेन द बैलेंस। इन रिलेशनशिप्स में अटैचमेंट अब नहीं चाहिए, समझ में आ गया। रिलेशनशिप्स में जो पहले नीडीनेस थी कि मुझे जरूरत थी वो रिश्ते की, वो भी अब खत्म हो गया है। लेकिन रिश्ते जरूर चाहिए, रिश्तों पर डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन रिश्तों से कचना नहीं है। रिश्ते जरूर चाहिए क्योंकि रिश्तों में ही आई एक्सप्रेस एंड आई एक्सपीरियंस। लेकिन अब क्या है कि अनलेस आई कैन बी सेंसिटिव टू योर नीड्स, टू योर प्रेजेंस, टू योर रोल, आई विल नॉट बी एबल टू प्ले माय रोल प्रॉपरली विद यू। अगेन आई विल बी फिक्स्ड विद माई वे ऑफ आइडेंटिटी। तो आपके प्रति सेंसिटिव होने के लिए कहीं ना कहीं आई नीड टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द रोल, फ्रॉम द सीन एंड फ्रॉम द एक्टर। हम ये तीन चीजों में अटैच्ड हो जाते हैं, उस एक्टर, एक्टर की सफरिंग, आपकी सफरिंग से मैं अटैच हो गई तो फिर मैं सेंसिटिव नहीं हूं, उस टाइम मैं अटैच्ड हूं। सो समवेयर वी ऑल नीड टू एक्सप्लोर विद आवर सेल्फ कि एम आई बीइंग एबल टू मेंटेन वो बैलेंस, sensitivity
0: and
1: detachment.
0: You know, somewhere because the moment we are detached, we become so cold. और वी apparently ऐसा नजर आता है कि हम cold हो गए या हम हो भी जाते हैं, हमें पता ही नहीं,
1: हमें पता नहीं,
0: क्योंकि हम detachment में हमने अपना तो रखा कि मुझे detach होना है उससे, मुझे pain नहीं लेना है, you know, somewhere मुझे उसकी pain से affected नहीं होना है, लेकिन मैं फिर उसकी pain के साथ ही empathize नहीं करती।
1: Absolutely. अगर मैं उनके साथ ही नहीं एम्पेथाइज करूं तो फिर मेरा रिलेशनशिप वो नहीं रहेगा। एज अ रोल ऑफ अ पेरेंट, एक पेरेंट का रोल, एक लीडर का रोल एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने बच्चों के साथ, हमें अपने टीम मेंबर्स के साथ एम्पेथाइज करना है कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो किस परिवर्तन से गुजर रहे हैं, या उनको उनकी क्या जरूरतें हैं, उनका क्या दर्द है। लेकिन अगर हम कहें this is not my role, I don't need to know anything about you, then I'm not sensitive towards you. Agar aap mere team ka hissa hain aur aap dard mein hain, then somewhere is that not my responsibility as a leader to understand ki aap kis cheez se guzar rahe hain? Kyunki jab tak main ye nahi samajh paungi ki aap kis cheez se guzar rahe hain, main aapki right potential, aapki puri strengths ko us karya ke liye bhi नहीं यूज कर सकते। सपोज आप दर्द में हैं, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, आप काम करो, तो इज दैट रियली बीइंग फेयर टू इवन द वर्क? क्योंकि दर्द में रहकर अगर कोई काम करने वाला है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्यों नहीं हम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं? लेकिन उसके लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? वो बॉस से हटकर मुझे एक फ्रेंड, मुझे एक काउंसलर, एक मोटिवेटर, वो रोल अपनाना पड़ेगा। बट दैट विल ओनली हैपन इफ आई एम सेंसिटिव कि आप किन चीजों से गुजर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको यू नो तकलीफ देती हैं। बीइंग वेरी सेंसिटिविटी कुड ऑल्सो बी लाइक कंसर्न, बीइंग कंसर्न अबाउट पीपल, बट सेइंग नहीं मुझे, हमें तो काम से मतलब है, काम हो जाना चाहिए, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, दैट्स नथिंग टू डू विद मी, देन दैट्स समवेयर हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत रूखापन आ जाएगा एंड फिर हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इसको हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अटैचमेंट ना हो जाए। अटैचमेंट ओनली मीन्स कि आप दर्द में हैं
0: तो
1: मैं दर्द में हूं, एंड सेंसिटिविटी वुड मीन आप दर्द में हैं, मैं आपके साथ हूं, आपसे बात भी कर रही हूं, शायद आपके साथ आपको वो प्रोसेस पे हेल्प भी कर रही हूं, लेकिन दर्द नहीं एक्सपीरियंस कर रही। एंड जैसे ही मैं दर्द नहीं एक्सपीरियंस करती, आई विल बिकम इंस्ट्रूमेंट टू एम्पावर यू, स्पेशली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में दिस इज फंडामेंटल।
0: लेकिन एक और बात जो देखी जाती है जनरली, एक कहीं गाने में भी आता है कि हर कोई अपने दर्द के कारण रोता है। जब भी कोई कहीं हम किसी को दर्द देखते हैं

0: उसी से हम कहीं खुद को रिलेट कर लेते हैं और तब हम दर्द में आ जाते हैं।
1: क्योंकि कहीं ना कहीं खुद की स्थिति भी उन चीजों से गुजर रही है, तो वो एक आपकी परिस्थिति मेरे लिए ट्रिगर बन जाती है, मेरे लिए ट्रिगर बन जाती है और मेरा जो अक्यूमुलेट किया हुआ है वो इमोशन ट्रिगर हो जाता है और आपका दर्द, हम कहेंगे आप दर्द में हैं तो मैं भी दर्द में हूँ, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट। सी इन अ पेरेंट चाइल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, क्योंकि बच्चे अपने दौर से गुजर रहे हैं, अपनी जर्नी पर हैं। स्पेशली जब आप एक बच्चे से एक टीनेज के यू नो एडोलेसेंट पीरियड से गुजरते हैं, वो बहुत एक टर्मोइल, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, वो उनकी यात्रा का एक हिस्सा है। अगर मैं एक काउंसलर, एक मीडिएटर बनकर उनको मदद करना चाहती हूँ कि वो उस पीरियड को दर्द के बिना क्रॉस करें, तो पहले तो
0: खुद को दर्द से बाहर निकालना होगा।
1: लेकिन उनसे ज्यादा दर्द में तो हम गए होते उनके अंदर वो परिवर्तन देखकर, यू नो दर्द कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, दर्द इज नॉट
0: क्राइंग,
1: मेनी टाइम्स बच्चा अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, उसको खुद वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, उसके स्कूल में उसके एज ग्रुप उस तरह के होने के कारण वो कई बातों से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं वो उसकी पर्सनालिटी में अग्रेशन के रूप दो फॉर्म्स में आता है, किसी के अंदर वो एकदम चुप हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और कुछ लोग बहुत लाउड हो जाते हैं जो वो पहले नहीं थे। एज अ पेरेंट आई हैव टू बी सेंसिटिव कि मेरा बच्चा क्यों इस तरह से परिवर्तन हो रहा है, एंड दैट विल नॉट हैपन बाय शाउटिंग एट हिम और हर कि तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो,
0: और बाय गोइंग इनटू शॉक, यू नो यूजुअली वी गो इनटू शॉक कि ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर, और हमारे फिर सोचने समझने की शक्ति
1: खत्म हो जाती है, तो फिर मैं उसको नहीं समझ पाती कि वो इस दर्द से क्यों गुजर रहा है, मैं इस बात से हर्ट हूं कि वो मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है। नाउ द मिनट मैं दर्द में चली गई कि वो मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है, विल आई बी एबल टू एम्पथाइज विद द चाइल्ड?
0: ओह नो, नॉट एट ऑल, इट्स माय प्रॉब्लम देन,
1: आई मीन। तो फिर क्या हुआ, माय रोल एज अ पेरेंट इज नॉट बीइंग प्लेड प्रॉपरली, बिकॉज फंडामेंटल माय रोल है आज कि मेरा बच्चा अगर दर्द में है, मुझे उस बच्चे को हेल्प करना है दर्द से निकलने के लिए, लेकिन मैं खुद ही दर्द में चली गई। यू नो व्हेन अ चाइल्ड, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो हर रोज हर घर में होता होगा, एंड आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कई बार बहुत रूडली या एंग्रीली बात करते हैं, तो ईदर द पेरेंट शाउट्स बैक, अगर एक बच्चे ने रूडली बात की, या तो वो पेरेंट शाउट बैक करेगा, ये कोई बात करने का तरीका है आजकल के बच्चे देखो, एंड देन इट बिकम्स अ जनरलाइज स्टेटमेंट, या द पेरेंट विल गेट वेरी हर्ट, मेरे बच्चे मेरे साथ इस तरह बात करते हैं, समवेयर द पेरेंट स्टार्ट्स टेकिंग इट एज अ पर्सनल फेलियर कि आई हैव नॉट बीन अ गुड पेरेंट,
0: मैं उनको राइट वैल्यूज नहीं दे पाया, मैंने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए।
1: अब ये सब जब क्रिएटिव प्रोसेस अंदर चल पड़ा इस तरह से थिंकिंग का, बच्चे के बारे में सोचना कि वो क्यों दर्द में है, वो क्यों इतने गुस्से में है, वो क्यों, मैं क्या उसके लिए कर सकता हूँ, उधर तक तो सोच जाए नहीं रही, आई ओनली लुक एट द चाइल्ड शाउटिंग एट मी एंड नाउ स्टार्ट विद माई प्रोसेस। तो फिर एम्पथी या उसकी मदद करना, उसको एम्पावर करना इज नॉट
0: वेरी ट्रू। यू नो सिमिलरली जब अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा, स्कूल से शिकायत आ रही है, हम ज्यादातर ये करने लगते हैं कि उसके ऊपर ऊपर से काम कैसे किया जाए,
1: अब
0: हम डिसिप्लिन में कैसे लाए।
1: अब ये जो आप कह रहे हैं ना ऊपर से काम कैसे, वी डोंट रियलाइज कि अगर आज सडनली मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या बच्चे का बिहेवियर स्कूल में चेंज हो गया, टीचर कंप्लेंट करते हैं, पेरेंट्स को बुलाया, कंप्लेंट किया, पहली बात टीचर ने बुलाया और कंप्लेंट किया, आई गेट हर्ट कि क्यों कंप्लेंट, इंसल्ट, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कहा, अब मैं सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड हो जाती हूँ कि इसके मार्क्स को कैसे ठीक करना है, इसके बिहेवियर को कैसे ठीक करना है, उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग्स क्या हो रहा है उस बच्चे के अंदर जिस कारण से उसके मार्क्स या उसके बिहेवियर, वे नॉट लुकिंग दैट साइड। फिर क्या होगा, उसकी जो अंदर की चोट है वो तो है ही, अंदर लगी हुई है, हमने उसके ऊपर
0: चोट देते जाते हैं,
1: हाउ डैमेजिंग कैन दिस बी,
0: और हम एक रोल प्ले कर रहे हैं पेरेंट का, माय गॉड वी कैन एक्चुअली चेंज इट,
1: यस नाउ वी नीड टू चेंज दैट, लेकिन वो तभी होगा जब हम अपनी हर्ट, अपनी इंसल्ट्स, अपने एंगर को साइड पे रख हम स्टेबल रह पाएंगे कि इट्स एक आत्मा है जो एक दर्द से गुजर रही है और मेरा रोल क्या है एज अ पेरेंट, पेरेंट मतलब मेरा रोल है उस आत्मा को उस जर्नी पर मदद करना, इंस्टेड ऑफ मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने मुझसे ऐसे कैसे बात की, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव।

0: जब आई एम सो अटैच टू द आइडेंटिटी कि मैं एक पेरेंट हूँ, ये मेरा बच्चा है, माई प्रॉपर्टी, तो मेरे बच्चे को मेरे से कैसे बात करनी चाहिए?
1: और मेरा रोल भी डिफाइंड है, सदियों से माँ बाप ऐसे करते आ रहे, मेरे फादर ऐसे बिहेव करते थे, तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, राइट वे.
0: परसो वी वर डूइंग अ प्रोग्राम एंड वी कॉल्ड अबाउट 4 चिल्ड्रन ऑन द स्टेज एंड 1000 या 1500 की सभा में 4 बच्चों को ऊपर बुलाया और उनसे पूछा सबके सामने, स्पीक ऑन द माइक, कि आपके पेरेंट्स जब आपको इस तरह एंड देवर लिटिल लिटिल वंस कि डांटते हैं या करते हैं तो आपको कैसा लगता है? यू शुड हैव सीन द वाइब्रेशन इन द रूम. दोज लिटिल चिल्ड्रन, बिकॉज मे बी द पेरेंट्स वर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दोज लिटिल चिल्ड्रन सेड हमें इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है. एंड पेरेंट्स तो ऐसे सुन रहे थे जैसे उनको ये नहीं पता था कि किसी को डांट पड़ने के बाद उसको दर्द होता होगा अंदर. फॉर देम इट सीम्ड टू बी अ रियलाइजेशन. हमने क्या सोचा कि हम किसी को डांटते जाएंगे एंड द पर्सन सपोज टू फील गुड.
1: और हम बच्चों को कितने,
0: एंड यू नो सम ऑफ द चिल्ड्रन सेड कि वो तो हमें ऐसे ऐसे करके
1: मारते
0: जाते हैं. वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक व्हाट आर वी डूइंग. मतलब आज मेरा एक ग्लास भी ऐसे गिर के टूट जाए तो मुझे इतना बुरा लगता है, मेरी प्रॉपर्टी है टूट गई. और वो बच्चे को हम ऐसे ऐसे ऐसे करके जब मारते हैं, हम क्या समझ रहे हैं? वो कौन है? वो हमें लगता है ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है. और हम अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन,
1: और कहाँ कहाँ का बच्चे का ही गुस्सा नहीं होता,
0: वो बच्चे का गुस्सा होता ही नहीं है. बिकॉज अगर आप अपने सेंसेस में हैं तो आप अपने बच्चे को इस तरह कर ही नहीं सकते. आप कर ही नहीं सकते. कोई और आपके बच्चे को छू भी दे तो आप उसका क्या हाल करेंगे? और आप खुद उसको इस तरह से मारते हैं, ये क्या रिजल्ट है? ये हमारी अपनी फ्रस्ट्रेशन है जो अंदर भरी हुई है. तो उसका दर्द देखना, उसके प्रोसेस को समझना, आई जस्ट कांट डू दैट. नाउ दिस इज इनसेंसिटिविटी, दिस इज अटैचमेंट, बट सेंसिटिविटी नहीं है. एंड देन आई एम मोर अटैच्ड टू माई सफरिंग. और फिर मैं अपने को देखते, मेरी फ्रस्ट्रेशन सारी बाहर निकलती. सो एम आई प्लेइंग माई रोल द राइट वे विल बी अ क्वेश्चन मार्क.
1: वेरी ट्रू. और इनफैक्ट आई सडनली रियलाइज, यू नो, जब बच्चा आता है हम उस पर 100% कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, सबसे ज्यादा प्यार उसको कर रहे हैं, लेकिन ये तो है कि बिना सोचे समझे हम जब चाहे उसको डांट देते हैं. हमें से हर पेरेंट, आई थिंक वी नीड टू चेक,
0: स्पेशली यू नो बच्चे छोटे हैं, स्पेशली जब छोटे हैं, दे आर वन ऑब्जेक्ट जो हमें लगता है जिसके ऊपर हम अपना कुछ भी निकाल सकते हैं. देखो मैं इक्वल एज में आपके ऊपर ऐसे नहीं चिल्ला सकती, मुझे पता है आपने भी वापस चिल्लाना, लेकिन वो छोटे छोटे हैं ना, एंड वो मेरी प्रॉपर्टी है. दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इनको,
1: एंड
0: इट्स ऑल बीइंग डन इन द नेम ऑफ उनके फायदे के लिए. ये मैं उनको सुधार रही हूँ, उनको डिसिप्लिन कर रही हूँ. इस तरह से इज अ क्वेश्चन मार्क. वी नीड टू थिंक व्हाट वी आर डूइंग. दे आर ओनली गोइंग इन टू पेन. So, हर रोल प्ले करते हुए
1: इतनी छोटी उम्र में मैं उनको पेन से गुजार रहा
0: हूँ. आई मीन दैट प्रोग्राम यस्टरडे फॉर अस वाज दिस लिटिल लिटिल वंस. दे सेड इट ऑन स्टेज टू एवरीवन एंड दे सेड हमें इतना दर्द होता है अंदर जब हमें बार बार डांटा जाता है हर बात के लिए. वी नॉट रियलाइजिंग विद पेन पेन पेन वो जो बच्चा इतना लेगा तो रिजल्ट क्या है? फिर आज डॉक्टर कहता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को डायबिटीज है, डिप्रेशन है, यहाँ तक कि हार्ट प्रॉब्लम है. एंड देन वी से ओ कंपटीशन, एजुकेशन सिस्टम, नो, इट इज सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ पेन दैट चाइल्ड इज कैरिंग इनसाइड.
1: लेकिन वो लोग कहेंगे कि हमारे भी तो पिताजी ऐसे ही करते थे, हमारे भी तो, ये तो एक पैटर्न है जो कि कब से चला आ रहा है.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो बच्चा तो भूल जाता है, अगले ही पल वो भूल जाता है, फिर खेलने लग जाता है.
0: हमें लग रहा है कि बच्चा भूल जाता है. स्टॉप एंड टॉक, हैव यू एवर आस्क्ड द चाइल्ड कि वो किस चीज से गुजरता है उसके बाद? वी नीड टू आस्क. कहीं ना कहीं जब हम फिर कहते हैं कि बच्चे आजकल बहुत अग्रेसिव हो गए हैं,
1: बिकॉज यस दे हैव सीन इट,
0: नहीं, विच एनर्जी हैज बीन गिवन टू देम, वो एनर्जी उनको ट्रांसमिट हुई है. तो अपने रोल को प्ले करने में एक एंथुजियाज्म हमें चाहिए. न्यू वे नाउ, सेम वे ऑफ एक्टिंग, सेम वे ऑफ इंटरेक्टिंग बहुत हुआ. नाउ न्यू वे ऑफ एक्टिंग, एंड दैट वुड मीन नया तरीका सोचने का, नया तरीका परसीव करने का, नया तरीका बिहेव करने का. लेट्स एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट. किया ना पुराना वाला, रिजल्ट भी देख रहे हैं, कितना दर्द क्रिएट किया. व्हाई डोंट वी एक्सपेरिमेंट विद समथिंग एल्स?
1: और वेरी ट्रू, यू नो, डांटने के बाद हम खुद कितने गिल्ट में जाते हैं, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी हम खुद ही क्रिएट करें.
0: पूरे घर में फिर वो एनर्जी फ्लो कर रही है. एंड दिस इज एवरी डे, मेन थिंग इज इट्स एवरी डे.
1: और इसको कभी रजिस्टर ही नहीं करते हैं एक्चुअली. इट्स अगेन ये बिलीव सिस्टम की तो होता ही है, हर घर में ही है. बच्चे को तो डांट पिटेगी ना, बच्चे तो डांट खाएगा क्योंकि गलती करेगा.

0: तो फिक्स्ड वे में रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर बच्चा गलती करेगा तो हम डांटेंगे, तो अगर हम ऐसा कुछ करेंगे जो बच्चे को राइट नहीं लगता तो बच्चा क्या करेगा?
1: फिर भी डांटेगा, वो भी डांटेगा,
0: वो भी तो उसी तरह से बात करेगा ना। देन भी से आजकल के बच्चे क्यों इतने रूड हो गए? They're just learning it the same way.
1: सामने सामने लर्न हो रहा है। बहुत सुंदर, आज एक नया परिपेक्ष सामने आता है पेरेंटिंग में भी और हर रिश्ते में। और फिर हमें जो एम्पावरमेंट, हम जो एम्पावर हो रहे हैं, जो सशक्त हो रहे हैं कि हमारे अपने हाथ में है, उस रोल को चेंज करने का प्रयत्न तो करें। जो अभी तक जिस पर चलती आ रही है वो सिस्टम काम नहीं कर रहा दिख रहा है हमें, वाई नॉट बी क्रिएटिव यू नो। अब हमने जो बच्चे ने गलती की, हम उसके साथ बैठकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम एक नए परिपेक्ष में ले सकते हैं।
0: सिर्फ अगर खुद दर्द में नहीं होंगे तो अगेन वो ऑक्सीजन मास्क जो हमने कहा, तुरंत पहले अपनी सुरक्षा करें, अपना ध्यान करें। एंड उसके लिए अगर रोज थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, अपने पर वर्क करेंगे, तब बच्चे को देखना, बच्चे के इस तरह के व्यवहार को समझना बहुत ईजी हो जाएगा।
1: और उसकी गलती मेरे पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगी। वेरी ट्रू, उसकी कोई भी गलती, कहीं पे गलत बिहेव कर रहा है, मैं सोचती हूँ मेरे साथ हुआ कि मैंने ही उसे सही परवरिश नहीं दी थी। ओह इट्स अमेजिंग यू नो हाउ डीप दीज थिंग्स कैन गो। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी। ओम
0: शांति।
1: हर बार की तरह आपसे कहेंगे कि अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आप ही के सवाल हम जरूर शामिल करते हैं। तो आप हमें या तो फोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अब इतनी की ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। सेल्फ मैनेजमेंट की श्रृंखला में बहुत सी नई बातें सामने आ रही हैं, कुछ और बातें लेकर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: ब्रह्मा कुमारी इस श्रृंखला में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत, नमस्कार। जागरूकता किसके प्रति होनी है? जागरूक हमें अपने प्रति होना है कि हु एम आई, आई द सोल, आई द बॉडी, आई द माइंड। इसके बारे में हम कई बातें कर चुके हैं और ये बात हमारे सामने आती है कि आई द सोल इज सुप्रीम। और उसके बाद जागरूकता अपने पूरे सफर में खुद को पहचानने की और किस तरह से जिंदगी जीते हुए एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। याद होगा कि पिछली कड़ी में हमने बात की थी डिप्रेशन की। क्यों है इतना प्रेवलेंट आज डिप्रेशन? क्यों आज हर आम आदमी डिप्रेस्ड फील करता है? किसी न किसी मोड़ पर जरूर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं या हम डिप्रेस्ड हैं। हमने ये जाना था कि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे हमें दो चार होना पड़ सकता है, एक ऐसी सच्चाई है, लेकिन उससे हम अपनी माइंड पावर से यानी कि अपने विचारों से भी बदल सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से प्रोफेशनल्स की मदद की कब जरूरत पड़ सकती है और किस तरह मदद ली जा सकती है। पर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, जो कि खास मुंबई से आए हैं। और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में ये भी बता दें कि 7 किताबें लिख चुके हैं कि किस तरह से जिंदगी को पॉजिटिव किया जा सकता है। आपका हार्दिक स्वागत। और हमारे साथ हर बार की तरह है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। वेरी वार्म वेलकम।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर गिरीश, हमने जहां छोड़ा था वहां एक बार फिर लौटते हैं और डिप्रेशन की हमने बात की थी कि इतना प्रेवलेंट है, इतने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। एक बार फिर उस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ये जानने को थोड़ा और डिटेल में कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन है क्या।
3: यह शब्द में ही वह क्या है समय डिप्रेस्ड, किसी को दबाना, नीचा करना, तो वैसे ही जब व्यक्ति अपने आप को नीचा समझता है, जीवन में इंटरेस्ट खो बैठता है, इस प्रकार की जो स्टेज होती है तब उसको कहेंगे डिप्रेशन। बल्कि कई सिम्टम्स भी है। आज अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी ने हर बीमारी के वास्तव में लिस्ट ऑफ सिम्टम्स उन्होंने तैयार किए हैं और उसमें से कुछ 60-70% अगर सिम्टम्स फिट होते हैं तब उस व्यक्ति को कहेंगे कि सचमुच डिप्रेस्ड है।
1: जी बिल्कुल। और सुश्री शिवानी, अगर हम बात याद करें तो सेल्फ एस्टीम की बात की थी, आज अभी डॉक्टर पटेल ही कह रहे हैं कि खुद को ही सप्रेस करने लग जाए, खुद को ही कहे कि मुझ में तो कुछ रह ही नहीं गया, मैं तो कर ही नहीं सकता, या पूरा ये डिप्रेशन का एस्पेक्ट आ जाता है। सेल्फ एस्टीम ऐसे में कितनी हेल्प करती है और कहां हम अपनी सेल्फ एस्टीम खो बैठते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं?
2: क्योंकि अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं समझा, अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना, अपनी विशेषताओं को नहीं जाना, तो एक खालीपन है कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता या मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कोई ना कोई ऐसी थॉट इसको ट्रिगर कर देती है, या मैं कितना भी ट्राई करूं मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मेरे से कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता, या जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, यू नो कंपैरिजन, सो ऑल दैट पब्लिक ओपिनियन, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, दिस कैन लीड टू सप्रेसिंग माय एक्चुअल क्वालिटीज एंड इन इट इंटरनल यू नो द ब्यूटी दैट इज देयर, आई स्टार्ट सप्रेसिंग इट।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक पूरी तरह से हमें नजर आता है कि डिप्रेशन क्या है बेसिकली, खुद को सप्रेस करने का एक एस्पेक्ट। अगर हम देखें तो आपने बात की थी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ की, वो लाइफ स्टेट की जो बात की जाती है कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ से चढ़ते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं या वहां से नीचे कहाँ तक आते हैं, एक बार फिर से उनसे दोबारा दो चार हो लेते हैं कि कौन सी है वो स्टेजेस।
3: सबसे पहले से जो हाईएस्ट स्टेज है वह है कि हमें जीवन में पूरी लाइवलीनेस है, हर क्षण का आप पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। वो भले कह सकते हैं कि भी करोड़ों में एक व्यक्ति को ही आएगी, परंतु वो एक आइडियल लक्ष्य हो। सेकंड जो स्टेज है कि सचमुच जीवन में हैप्पीनेस है, हाँ, और वो सदा के लिए, वो हैप्पीनेस कम ज्यादा नहीं हो रही है। फिर भी थर्ड स्टेज है कि भी कभी खुशी कभी गम वाली स्टेज है, कि भी थोड़ा समय एक दो घंटा अच्छा लगता है, फिर से दो घंटा में निराश हो रहा हूं या तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बाद की स्टेज है कि वो जो अच्छा नहीं लगना या दुख का अनुभव करना, कुछ मुझे जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, इसी स्टेज वो लंबी चलती है, दिन में देखो 8 घंटा भी इसी स्टेज चली, 3-4 घंटे ही आपको अच्छा लगा। और फिर है कि सचमुच व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है सदा के लिए, अच्छा नहीं।

0: तो जहां पर हम कहेंगे क्लिनिकली आइडेंटिफाइबल यहां होता है अधिकतर, साइकेट्रिस्ट के पास भी आप तब ही जाते हो, नहीं तो जो आगे की स्टेजेस है उसके तो आज हमने जीवन का एक समझ लिया कि हमारे जीवन का हिस्सा है।
1: लेकिन जो मेरे को लगता है जो केमिकल इम्बैलेंस की उस दिन बात हुई, ठीक है, तो वो इसमें से कौन सी स्टेज पर हो रहा होगा या शुरू से है?
0: शुरू से नहीं, थर्ड स्टेज कहेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेज
2: कभी खुशी कभी गम वाला
0: वाली स्टेज तब शुरुआत हो गई आपकी।
1: तो मेजोरिटी इसका मतलब
2: दिस इज अगेन अ मिथ ना, जो हम रॉन्ग बिलीफ पर जीते आ रहे हैं कि हम उस स्टेज पर तो पहुंच ही नहीं सकते कि हर क्षण हमें खुशी मिलेगी, हर क्षण हम सुखी हैं, ये स्टेज तो हमारी कभी हो ही नहीं सकती, ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं।
0: सचमुच हो सकती है, आज राजयोग भी यही सिखा
2: नहीं, बिल्कुल ये एक इतनी बड़ी गलत फहमी है जिससे हम आज बाहर निकल सकते हैं कि हर क्षण हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या ये स्थित प्रज्ञा की जो बात की जाती है टोटली अनअफेक्टेड है हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये है वो स्टेज या फिर ये कोई और स्टेज?
0: वो स्टेज नहीं, बोले स्थित प्रज्ञा होना अच्छा है कि उससे वह स्टेज बन सकती है, परंतु यह स्टेज एक नेचुरली भी आएगी। अगर हम एसेंस समझ ले कि मेरे में एक दिव्य चेतना है और उसका नेचर ही है सुख, मैं जो आत्मा हूँ वह आत्मा ही सुख स्वरूप है, मैं आत्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, वह एक मेरी पर्सनालिटी है, मेरा एक स्वभाव है
1: इनहेरेंट, कुछ चीज है जो इनहेरेंट है। अब सपोज डॉक्टर साहब एक डॉक्टर है, अब आप कहें बाहर चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेंगे।
0: हाँ जी,
1: अगर सारी दुनिया भी कहे कि नहीं ये डॉक्टर नहीं है, इवन देन ही विल नॉट से कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बिकॉज अंदर ये पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, सो इट इज इनहेरेंट, वो है ऑलरेडी। अब ये एक एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन है जो धारण की और इसलिए याद रहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनहेरेंट है, वो तो और भी अच्छी याद रहनी चाहिए, लेकिन वो भूल गए हैं। जैसे ही वो वापस जागृत होगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मैं हूँ ही सुख स्वरूप, तो अब बाहर कुछ भी हो जाए माई नेचुरल नेचर कैन नॉट गेट अफेक्टेड। इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो आई एम इम्यून या आई डोंट कंसर्न फॉर पीपल, लेकिन वो उस स्टेज को डिस्टर्ब करे बिना भी हम लोगों को हेल्प कर सकते,
2: मदद कर सकते हैं और पूरा उन चीजों को अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। हमने उस टाइम एंजॉयमेंट और सुख की बात की, एक्साइटमेंट की बात की थी, और कहीं ना कहीं इधर यू नो इनर्ट जो है,
1: और हर्ट और कंपैशन,
2: या
1: दोनों एक है, हम दूसरे के दुख में हम भी दुखी हो जाते हैं, और एक है हम अपनी सुख की स्टेज को अगर मेंटेन करें तो देन हम दूसरे को सहयोग दे सकते हैं,
2: उसके ज्यादा बेहतर, ज्यादा लॉजिकल
1: और ज्यादा अच्छे तरह से।
0: एक बात बहुत अच्छी हाल है, जब कई महिलाएं मेरे पास आती है, जैसे हम देखते हैं सास और बहू का प्रॉब्लम है, कंप्लेन मेरी सास ऐसी ये है ये कर रही है, तो मैं उनको सब हमेशा ये कहता हूँ दो काम करो, देखो एक तो आप अपने नजरिए को बदलो, एटीट्यूड को बदलो, एंड सेकंड इज एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय अदर थिंग, स्टार्ट एंजॉयिंग ऑल्सो व्हाट शी इज डूइंग,
2: एंजॉय द म्यूजिक ऑफ व्हाट शी इज डूइंग,
0: व्हाट टिक टिक करती है ना, कहते आके साथ सारा दिन टिक टिक करती रहती है।
1: बट वन थॉट विच आई हैड जो कहा कि केमिकल इम्बैलेंस, तो इसका मतलब हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं तब वो केमिकल इम्बैलेंस होता है, या केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है इसलिए हम रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं?
0: दोनों सही है।
2: ओके
0: जी, अधिकतर तो ये कहेंगे कि रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं इसलिए केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है। अभी दूसरा ये भी है कि जहाँ पर जीन्स प्रीडोमिनेंट है, तो भी परिस्थिति भी ऐसी नहीं, व्यक्ति भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है, फिर भी अचानक डाउन फील कर रहा है, अचानक डिप्रेस्ड हो जाता है, तो वहाँ कहेंगे कि प्रीडोमिनेंट केमिकल इम्बैलेंस का रोल है।
2: ओके,
1: और फिर क्या उससे नेचुरली नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे?
0: या तो उसके लिए मुश्किल होगा, उस स्टेज में पॉजिटिव सोचने लगे ज्यादा मेहनत करें। जैसे भी प्लेन पर चलना इजी है, पहाड़ी पर ऊपर चलने के लिए आपको फोर्स लगाना।
2: तो अब हम उन्हीं सिम्टम्स पर आते हैं, नेक्स्ट स्टेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने लाइफ स्टेज पे तो देख लिया वो जब कभी खुशी कभी गम है, कभी कभी खुश हो जाता हूँ, कभी कभी दुखी हो जाता हूँ, कुछ कुछ घंटे के गैप के बाद। उसके बाद सिम्टम्स क्या नजर आए कि हमें सोचना चाहिए कि डिप्रेशन सीप इन कर गया है?
0: हाँ जी, नहीं बहुत सारे डिप्रेशन है, काफी जितना संभव होगा आपको मैं बताता हूँ कि एक तो बात यह है कि भी व्यक्ति को ये होगा कि चलो जो ऑफिस नहीं जाना है, घर में ही पड़ा रहूं, कोई बीमारी नहीं है, और एक जो बात देखी गई कि भी अच्छे से स्नान करने की दिल नहीं होगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, है कैसे भी कपड़े पहन लेगा, शेविंग करने का अच्छा नहीं लगेगा, नेल्स कट नहीं करेगा, ऐसी जो सिंपल चीजें हम आमतौर पर करते हैं।

0: भले जीवन में समस्याएं हैं फिर भी एक सामान्य व्यक्ति करता है,
1: लेकिन एक दिन करें तो चलेगा।
0: हाँ जी,
1: अगर ज्यादा दिन चेक करेंगे तब। एक दिन तो मैंने कई लोगों को देखा ये करते हुए कि एक दिन वो कहते हैं कि संडे को हर चीज की छुट्टी,
0: एक दिन ठीक ये वो तो भी इसलिए ये नहीं कि आपको इच्छा नहीं है, परंतु संडे के दिन आप फ्रीडम लेना चाहिए कि आराम से मिले साढ़े
2: रूटीन से ब्रेक करने के।
1: कितने दिन तक अगर वो करते रहे तो डिप्रेशन का शिकार,
0: वो तो 5-6 दिन भी कहेंगे। एक दिन जो संडे को आप कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप रिलैक्स होना चाहते हैं, नो यू वॉन्ट टू जस्ट लेट गो थिंग्स। परंतु ऐसा अगर 2-3 भी रहे और आपको दिल नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि भी वो डिप्रेशन की सचमुच शुरुआत है, हो गई है। और कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कि भी खाने का दिल नहीं होता, नहीं अच्छी अच्छी चीजें घर में बनाई है फिर भी आपको लगता है कि भी नहीं खाऊं तो अच्छा है, आज भूख ही नहीं है, तो वह भी एक डिप्रेशन की निशानी हो सकती है।
1: और सोना भी जुड़ा हुआ होता है नींद,
0: नींद मेरा पिक्यूलियर है डिप्रेशन में, जो नींद की पिक्यूलियरिटी है कि एक तो सारी रात भी नींद नहीं आएगी, वो भी पॉसिबल है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है सारी रात व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको एक बार नींद आ जाएगी, 4 घंटे 5 घंटे नींद आ गई, लेकिन फिर सवेरे 3-4 साढ़े 4 बजे नींद उड़ गई, फिर लाख कोशिश करने से भी नींद आ नहीं रही है, तो वह एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का। और एक सिम्टम है लॉस ऑफ वेट, कि उसका वजन है वह देखो हर मास कम होता जा रहा है, और साथ में और भी सिम्टम्स है। हाँ, कुछ फिजिकल डिजीज में भी लॉस ऑफ वेट हो, जैसे डायबिटीज वाले भी वेट को लूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट। और यहाँ और सिम्टम्स के साथ उसको जोड़ना होगा तो सचमुच पता चलेगा। और एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है कि जो कई बार फैमिली फिजिशियन भी मिस कर जाते हैं, वह एक्सेसिव स्लीप।
1: अच्छा,
0: ज्यादा सोना भी कहते भी बच्चा सोता ही जा रहा है, 11 बजे उठता है सवेरे, बड़े भी है उनको लगता है सवेरे 9 बजे अभी भी थकावट है, अभी भी सो जाऊं। दैट एक्सेस ऑफ स्लीप ऑल्सो कैन बी अ सिम्टम ऑफ। और एक पावरफुल जो सिम्टम है वह है कि जीवन जीने की इच्छा खो देना। कभी एक शुरुआत में होता है कि मर जाऊं तो अच्छा है, कल खुद बोलेगा नहीं परंतु कोई पूछेगा तो कहेंगे हाँ जीवन अच्छा नहीं है। दूसरा एक है व्यक्ति खुद बोलेगा कि अभी भगवान ले ले तो अच्छी बात है। उसके आगे की स्टेज है कि व्यक्ति प्लान करने लगता है कि कैसे मरूं, ट्रेन के नीचे गिर के मरूं, जहर पी के मरूं, क्या करूं तो मैं मर जाऊं। अगर प्लानिंग की शुरुआत होगी तो देन स्टिल यू आर इन अ डीपर डिप्रेशन। एंड दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड दे आर रियली एक्यूटली डिप्रेस्ड।
1: यहाँ ये एक बहुत क्लियर बात हमें ये सामने नजर आ रही है कि जो सिम्टम्स हैं इन्हें पकड़ लेना चाहिए हमें खुद भी, और अगर हम खुद नहीं पकड़ पा रहे तो हमारे अपने क्या समझ सकते हैं इस बात।
0: बिल्कुल है ना, वो अपनों फैमिली मेंबर्स को देखना चाहिए। कई बार फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं उसको ब्लेम करते हैं कि
1: भी आलसी हो गया। एक ईमेल भी हमारे पास आया है सुधर शिवानी डॉक्टर साहब की, ये अल्पना जी ने अपनी बेटी के लिए भेजा है कि ये 16 इयर्स की इनकी बेटी है, 12th में पढ़ रही है और 10th में भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे, 10th में टॉपर थी, लेकिन 11th में आते आते सडनली शी सेज की शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर स्टडीज, और अब वो टोटली रिबेल भी हो गई है, लेकिन म्यूजिक में चली जाती है, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है, और इतना हम प्रेशर नहीं भी डाल रहे लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ने में इंटरेस्ट खोती जा रही है। और कई बार ये कह रही है कि मैंने उसे देखा है कि वो, मैंने बात करने की कोशिश भी की है कि किसी से प्यार तो नहीं हो गया या कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, तो कहीं मेरी बेटी डिप्रेशन में तो नहीं चली गई है, तो क्या ये कोई ऐसी बात पता चलती है?
0: काफी है वो इसी प्रकार के, और भी थोड़ा अच्छे से उसको केस को स्टडी करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिम्टम्स है यहाँ।
1: एक सडनली जो है पढ़ाई से इंटरेस्ट हो जाना,
0: अगर ये सडन हुआ
1: हाँ।
0: और अगर यही बात एग्जाम के दौरान हुई है, समझो एग्जाम के 15 दिन 1 मास पहले, तो फिर एग्जामिनेशन फोबिया भी कॉज
1: नहीं, शी सेड कि 10th में शी इज अ टॉपर बट 11th तक आते हैं शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट।
0: इफ इट हैज हैपेंड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, कि जब भी कोई एग्जामिनेशन फोबिया का सवाल ही नहीं है तो फिर वो डिप्रेशन की संभावना है,
1: तो ऐसे
0: और भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए।
1: कैसे कैसे वो हेल्प कर सकती हैं अपनी बेटी की?
0: एक तो अभी बहुत अच्छा है कि उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, कई माता पिता इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करते, उल्टा ब्लेम करते कई बार कि भी बच्चा आलसी हो गया है, हाँ उसने जिसे और कहीं उसका मूड लग गया है, कई बार कहीं सोच भी ड्रग्स लेने लगे, नहीं सचमुच वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं, तो ये जो आइडेंटिफाई किया वो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर आवश्यकता है कि भी प्रोफेशनल को भी कंसल्ट करे एक बार, तब है ना एग्जैक्ट वो बात को समझ में आएगी। और

0: एक्सपर्ट सचमुच बता सकते हैं, कई टेस्ट भी आती है इसकी।
1: स्कूल काउंसलर जैसे में कितना हेल्प कर सकते हैं, स्कूल काउंसलर से बातचीत अगर की जाए, बच्चा अगर बातचीत करने की हिम्मत रख पाए तो कितना कहाँ तक उनकी मदद हो सकती है?
2: आई थिंक काउंसलर बहुत अच्छी मदद कर सकेंगे, लेकिन उससे अच्छा भी अगर ये मदर,
1: मदर
2: अगर बात करती है, इसीलिए वो एक रिलेशनशिप पहले से कैसे बना हुआ था, अगर वो डॉटर उतनी कंफर्टेबल है कि वो जिस दौर से गुजर रही है अगर वो शेयर कर पाए, देन द मदर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट
1: रोल। एक्चुअली पर किस एज की ये बात करें, उसमें रिबेल भी हो चुका होता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं मदर और डॉटर के बीच में भी कई बार वो कोल्डनेस आ चुकी होती है।
2: ट्रू,
1: मतलब देखा ये गया बिकॉज शी इज अ रिबेल, द वे शी इज कमिंग आउट ऑल्सो, कि वो इग्नोर करती है चीजों को, तो मदर भी अप्रोच नहीं कर पा रही है। तो वो
0: प्रोफेशनल काउंसिलर कैन डेफिनेटली बी प्रोफेशनल, इनफैक्ट एज एन अ काउंसिलर एनी बडी कैन बी अ काउंसिलर।
1: अंडरलाइंड हमने बात की थी, आपने एक बार कहा था कि अंडरलाइंड कुछ वो बातें होती हैं, तो अंडरलाइंड वजहें क्या हो सकती हैं
0: इस प्रकार की स्टेज की? हाँ हाँ, अभी ये जो यूथ में अगर हम इस बात को स्टडी करते हैं, तो यूथ में तो एक नो लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम कैन बी ए कॉज, क्योंकि ये एक स्टेज है कि जिसमें बॉडी ग्रो हो रही है, वो बच्चे भी नहीं है शायद एडल्ट भी नहीं है, तो जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गन्स आर ऑल्सो गेटिंग ट्रांसफॉर्म, तो तब कई यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं और वह कंफ्यूजन में उनको सही आंसर नहीं मिले तो भी डिप्रेशन होने की एक बहुत बड़ी संभावना।
1: और आज के वक्त में जबकि इतनी अवेयरनेस है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है,
2: एंड आई थिंक ये वो फेज है जहां हम वो आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरते हैं। यूथ ये वाले एडोलेसेंट पीरियड में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन वो इंटरनल जो चेंजेस हैं, फिर से कॉलेज, स्कूल लाइफ तक फिर भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, दूसरों की तरह बनने की कोशिश, किसी फिल्म स्टार की तरह, और फिजिकल ब्यूटी पर बहुत ज्यादा अटेंशन।
1: तो ये भी रॉन्ग मिथ हो सकती है क्या कि एडोलेसेंस में ऐसा होता ही है कि बच्चे रिबेल होते ही हैं या आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही है? क्या ये भी एक रॉन्ग मिथ है या
2: होता ही है? नहीं है, बट उनके लिए सिचुएशंस वैसी बनती जा रही है। एक तो वो पेरेंट्स से थोड़ा सा विड्रॉ कर जाते हैं क्योंकि लगता है ये वो पीरियड है जहां हम अपने डिसीशंस खुद ले सकते हैं, या कुछ एक पर्सनल रिलेशनशिप्स में इस तरह से फंस जाते हैं जो अभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते। ये वो भी पीरियड है जब पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होने लग जाते हैं, इंटरफियरिंग ज्यादा लगने लगते हैं, करने तो नहीं लेकिन शायद वो लगने बहुत लगते हैं। दिस इज दैट पीरियड जहां आप अपनी फ्रीडम शायद बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे प्ले करते हैं, और उस टाइम पर अगर आपने वो इंटरनल ब्यूटी पर नहीं ध्यान दिया तो देन दीज फैक्टर्स कैन जस्ट वे यू अवे एंड आपको वो दूसरी तरफ फिर ले जाता है।
0: मैं बहुत समझता हूँ कि आज पेरेंट्स में जो सबसे बड़ी गलती हुई है कि वे सब कुछ दे देते, पैसा
2: बहुत ज्यादा,
0: टाइम,
1: और एक्चुअली उनके पास कुछ बचता ही नहीं कि खुद अचीव करने के लिए, बच्चों के पास भी कुछ नहीं बचता कि वो अचीव करें, दे कांट इवन लुक अप टू कि अगर मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, उनके कहते ही तो मिल जाती है।
0: हाँ, वो चीजें मिल जाती है,
2: लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जो
0: बता रहा हूँ, मेरी एक नहीं सचमुच राय भी है कि भले आप कम कमाओ कोई बात नहीं है, कम लग्जरीज लो, आपका फ्लैट छोटा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए कम से कम एक घंटा रोज दो,
2: और अपने लिए
0: नहीं, अपने लिए तो देना ही है, अपने लिए देना है, लेकिन बच्चों के लिए भी कम से कहीं से भी निकालना है।
1: एक्चुअली ये पूरा सफर जो हम तय कर रहे हैं, सिर्फ एक बात सामने ये आती है कि अभी तक तो हम ये जानते आए थे कि हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक बात जो मुझे क्लियर लगती जा रही है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ। आई हैव टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं किया गया है, सबसे कम काम हमने अपने ऊपर किया है और बाहर काम हमने सबसे ज्यादा,
2: क्योंकि जैसे इस केस में भी अगर वो मदर अपनी बेटी को हेल्प करना चाहती है तो वो खुद एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में होनी चाहिए। बच्चे को डिप्रेशन से निकालना, पेरेंट खुद स्टेट ऑफ माइंड में है तो वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे उनके लिए।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो अपने लिए भी, लेकिन हम शरीर के लिए समय निकालते हैं, आत्मा के लिए नहीं निकालते, इनर डेवलपमेंट ठीक है ना, आंतरिक जो उन्नति की जरूरत है कि सदा काल के लिए चलेगी।
1: अच्छा, आज अभी जब हम बात ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आज के यूथ की बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ अवेयरनेस की बात करी, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इतने ज्यादा हैं आज की, वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि क्या सच्चाई है और क्या बाहर से मैंने लिया है। तो ऐसे में जहां हम ये देख रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, अगर हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो वहां भारतीय जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है या पूरी हमारी फिलोसफी

0: हैप्पीनेस को मुझे सचमुच बढ़ाना।
1: लेकिन अगर हम वहां रह गए तो वहां अब अध्यात्म को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी या इस तरह का पूरा आस्पेक्ट जो है इतने ज्यादा पैमाने पर नजर आ रहा है, क्यों?
0: नो, पर फिर भी है ना, इतना ज्यादा नहीं है। सच देखेंगे ना तो जो ऐसी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे प्रोग्राम, दे आर लिमिटेड पीपल, मे बी 1%, 2%, और उसी से भले वो तो बेस्ट सेलर किताब भी बन जाती है अगर 1% भी पढ़ने लगे तो। परंतु ओवरऑल अगर हम अवेयरनेस देखें तो और लाने की जरूरत है। लोगों को ये सचमुच बताया जाए कि आप अपनी जो अंदर की खुशी है उसको प्रायोरिटी दीजिए।
1: तो हम डिप्रेशन पे हैं डॉक्टर साहब, कि डिप्रेशन के उस एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे हम जब बच्चों पे आ गए थे। हर वर्ग में, हर उम्र में डिप्रेशन नजर आ रहा है। केमिकल चेंजेस तब हो रहे थे जब कभी खुशी कभी गम वाली स्टेज पर थे, कि थोड़ा थोड़ा वक्त हम खुश थे, थोड़ा थोड़ा हम सुखी थे। लेकिन वो स्टेज वो है जहां हम डॉक्टर के पास जाने की अभी जरूरत नहीं है। स्कूल के काउंसलर से बात चल जाएगी या अपने ही किसी परिवार वालों से बात चल जाएगी। आज उस सीवियरिटी की बात करते हैं जब डिप्रेशन इतना बढ़ जाए कि हमारे अपने हाथ में ना रहे, जब पूरा कंट्रोल खो दें हम। अब कितने सीवियर केसेस हमने देखे हैं, चाहे वो वेस्ट में हो, फिर वह भारत में भी देखने को आ रहे हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होके वायलेंस पे उतर आते हैं। सो ऐसे में पहले ही कैसे रोका जा सकता है?
0: ये भी बात बहुत ही अच्छी है कि भी क्या सीवियर चीज होती है वो हमें कई बार देखना चाहिए। अभी सूरत में ही हुआ था कि भी थोड़ा सा डिप्रेस था, सब बच्चों को भी नींद की गोलियां दे दी, खुद सुसाइड कर दिया, सारा परिवार खत्म हो गया।
1: मतलब क्या हमने जिंदगी को इतना छोटा बना लिया है, पूरी तरह से बात
2: होपलेसनेस आ गई है ना। तो जैसे कहा, जीवन जीने का उत्साह नहीं रह गया और जीवन जीने की शक्ति जो चाहिए, पावर टू फेस द वर्ल्ड, वो भी नहीं है
0: इसमें। तो नहीं, हमारे दर्शकों को ये समझने की आवश्यकता है सचमुच कि भी इस चीज से क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं शुरू में। जैसे नहीं बढ़ आगे बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं, तो डिप्रेशन की जो स्टेज शुरुआत हुई उसको रोको। नहीं, अमेरिका में कुछ समय पहले मैं देखा था कि जो यूथ ने गन लेके आया और कहीं 25-30 को खत्म कर दिया,
1: देवर
0: डिप्रेस्ड। हम समझते नहीं, कई बार हमें ना उसको कहीं और कॉजेज ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन बहुत सारी चीजों में कॉज है वो डिप्रेशन। कई बार ऐसा भी हुआ कि मां ने बच्चों को मार दिया, वो डिप्रेशन की स्टेज थी एक्चुअली।
1: अगेन होपलेसनेस भी था ना, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा था, रोशनी नहीं नजर आ रही थी। तो वो रोशनी जो है वो हमें कहाँ से मिल सकती है, ये हम आपसे जानते हैं इस वक्त।
2: उसी में अगर हम पहले से ही, ये तो एक बहुत सिवियर स्टेज पर पहुंच गए, तो आई थिंक इस समय तो मेडिकल हेल्प की जरूरत है, वो ट्रीटमेंट और मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। कि उसके बिना, क्योंकि शायद इस टाइम सेल्फ काउंसलिंग पॉसिबल भी नहीं है, हमें शायद अवेयरनेस भी नहीं है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे समय की बात की, थोड़ा समय अगर हम अपने लिए निकालना शुरू करें, थोड़ा अपने प्रायोरिटीज को देखना शुरू करें। अब ये डॉक्टर साहब ने कहा कि भले छोटा फ्लैट हो, बट हाउ मेनी पीपल विल अग्री कि भले छोटा फ्लैट हो लेकिन अपने लिए समय निकालें। एवरीबडी वॉन्ट्स द बिगेस्ट घर, बिगेस्ट गाड़ी, बिगेस्ट एवरीथिंग, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी,
1: और ये भी कि दूसरों का भी हमें ले लें।
2: हाँ, तो वो कंपैरिजन, कंपटीशन, तो वो अगर जीवन की यात्रा के दौरान हम इतना जोर से भाग रहे हैं इस यात्रा में कि हमें रुक कर चेक करने के लिए भी टाइम नहीं है कि हम सही दिशा पर हैं कि नहीं, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू रन। आई थिंक स्टॉप एंड पॉज, दिस इज वॉट आई वॉन्ट। क्या मेरे जीवन का सिर्फ यही उद्देश्य रह गया है कि मुझे पैसे से खरीदी जाने वाली हर चीज चाहिए? तो वो हो जाएगा, लेकिन वो सब चीज भी खुशी के लिए चाहिए थी। तो क्या वो खुशी भी उतनी ही मात्रा में आ रही है? आई थिंक बीच में अगर एक बार भी रुक कर ये चेक किया जाए, और अगर हम पाते हैं कि नहीं ये थोड़ा कम हो रहा है, वील बी एबल टू चेंज इट इनडेफिनेटली।
1: यू सेड स्टॉप एंड पॉज, लेकिन वो स्टॉप एंड पॉज भी हम तभी करेंगे जब अंदर से कहीं उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे हम। एक्चुअली हम अभी तक तो अपने तरीके ढूंढ लेते हैं, हम में से हर कोई, जैसे आपने भी लाइफ की कई स्टेजेस बताई, उसमें हम अभी तक अपनी उस खुशी को, कि चार घंटे अगर मैं खुश हूं तो चार घंटे दुखी हो भी जाता हूं, तो मैं कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ लेता हूं, तरीका ढूंढ लेता हूं,
2: क्योंकि तब हमने बहाना बाहर को दिया हुआ है ना, तो हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपने दुख को। लेकिन जहां वो बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया कि बाहर मेरा दुख का कारण नहीं है, मेरे अपने अंदर है, तो अगर वो चार घंटे नहीं, चार मिनट के लिए भी आता है, आई विल हैव टू स्टॉप एंड चेंज। अगर वो बाहर तक था तो वो चार घंटे आ जाएगा, कल आठ घंटे आएगा, मिनट्स इनसाइड, देन आई कैन चेंज फास्टर।
1: बिल्कुल। और अब डॉक्टर साहब ये बात करते हैं कि ये तो पूरे एस्पेक्ट हुए कि हमें किस तरह से अपने मेंटली अपने आप को, अगर हम समझ लें, इस बात तक आ जाएं कि दुख भी आ रहा है।

0: चार घंटे जो दुख आ रहा है वो बाहर से अगर आ रहा है तो हमें इंटरनली अपने आप को रियलाइज करवाना है कि व्हाट आई वांट यू नो एंड विल आई गिव द राइट टू समबडी एल्स टू ब्रिंग अनहैप्पीनेस टू मी। एक वो स्टेज जब डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती
1: है,
0: जब कोई सेल्फ काउंसलिंग, कोई किसी की बात आवाज ही नहीं पहुंच रही, क्या करना पड़ता
1: है। तो दो चीजें जो शिवा ने बनने दवाइयों की बात की, उतना ही इक्वली इफेक्टिव है साइकोथेरेपी। भारत में शायद इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास धर्म की आदि बातें भी, लेकिन विदेशों में सचमुच रिसर्च स्टडीज भी हुई। कई बार साइकेट्रिस्ट भी यही कहते हैं कि भाई दवाइयां ही लो बस, भाई दवाइयों से डेफिनेटली फायदा होता है, लेनी भी चाहिए, परंतु अब स्टडीज में उतनी ही इफेक्टिव है साइकोथेरेपी। इसको कहा गया है बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी।
0: साइकोथेरेपी में बेसिकली क्या किया जाता है?
1: ऐसे बहुत प्रकार की साइकोथेरेपी है, जैसे फ्रॉइड से इसकी शुरुआत हुई वास्तव में, सेगमेंट फ्रॉइड ने सारी सिस्टम डेवलप की साइको एनालिसिस की। उसके बाद उनके ही शिष्य कहेंगे यंग थे कि जिन्होंने एनालिटिक साइकोलॉजी बनाई। ऐसे दूसरी एक है बिहेवियर थेरेपी, परंतु वर्तमान समय में की जो बहुत प्रैक्टिकल भी है, व्यक्ति अपने आप भी बहुत कुछ कर सकता है, वह है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशन मतलब कि जो आप फील करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसके द्वारा अपनी बिहेवियर में परिवर्तन लाओ। और इस पर अमेरिका में तो लाखों डॉलर खर्चे किए गए ये देखने के लिए कि वो कितनी इफेक्टिव है। और ये देखा गया कि एमिप्रामाइन नाम की एक मेडिसिन है, कि जो बेसिक मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए, एमिप्रामाइन जितना मदद करती है उतना ही ये बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी हेल्प करती है। दैट्स एन पावरफुल रिसर्च।
0: तो बिल्कुल, अब ये जो पूरी थेरेपीज हैं जो कि काउंसलिंग का भी एक हिस्सा हो सकती है और पूरे रिसर्च पे बेस्ड है, इसके ऊपर बातचीत हम डिटेल में अगली कड़ी में जरूर करेंगे कि डिप्रेशन को कौन कौन से सीवियर डिप्रेशंस में ये मदद कर सकती है और किस तरह से बिना दवाई के भी। हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ड्रगलेस थेरेपीज के बारे में बात करें, तो इन थेरेपीज को अपना के हम जो सीवियर डिप्रेशन के केसेस हैं उनको भी लाभ दिलवा सकते हैं। और उसके अलावा जो आम जिंदगी में जो है, किस तरह से इस तरह का जो पूरा दिनचर्या जीने का हम अपना एक एस्पेक्ट ले रहे हैं, उससे हम डिप्रेशन से ही दूर रह सकते हैं। तो फिलहाल आज आपके साथ बातचीत रही डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपको भी बता दें कि आज हमने जिन छोटे छोटे मुद्दों पर बातचीत की है वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनको एक बार फिर नटशेल में ले लेते हैं कि कई स्टेजेस में हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब ये लगने लगे कि कभी खुशी है कभी गम है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हमारे आसपास आ चुका है, सीप इन कर रहा है। और जब उस स्टेज पर पहुंच जाए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम वो तरीके तलाशने लगते हैं कि किस तरह से हम सुसाइड करें या किस तरह से जीवन को खत्म कर सकते हैं, ये वो स्टेज है जहां हमें अब कोई भी इंतजार नहीं करना है, प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो डिप्रेशन से जुड़ी हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। कई ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, अगली कड़ी में हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। इस तक अगर आपके पास कोई सवाल है तो आपका स्वागत है।
2: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते

0: करते हैं वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: एक ख्वाब था और उस ख्वाब की एक आवाज थी। आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे बहुत लंबे ख्वाब में सफर कर रही थी। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने।

0: से और कभी लड़ती भी है ऐसे के बस खेल रही है मुझसे और आगोश में नन्हे को लिए
1: Will you shut up?

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: करतार सिंह सराभा का जन्म लुधियाना जिले के सराभा गांव में सन 1896 में हुआ था। करतार जब उच्च शिक्षा ग्रहण करने अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि गुलाम देश होने के कारण वहां भारतीयों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार अपमानित होने से तो अच्छा है कि देश की आजादी के लिए कुछ करके मरा जाए। लाला हरदयाल द्वारा विद्यार्थियों की एक सभा में दिए गए ओजस्वी भाषण से वे इतना प्रभावित हुए कि आजादी के लिए सब कुछ अर्पित करने का संकल्प ले बैठे। लाला हरदयाल के निर्देशन में उन जैसे उत्साही क्रांतिकारी छात्रों ने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा गया गदर पार्टी। इस पार्टी द्वारा गदर नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला जाने लगा। करतार सिंह अपना ज्यादातर समय गदर के प्रकाशन को देने लगे। गदर पार्टी की स्थापना ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की जीवन पद्धति बदल दी। लोगों के दिलों से हीनता की भावना दूर हुई और आत्मविश्वास जागृत हुआ। उनमें भारत की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प घर कर गया। गदर फैलाने की दृष्टि से करतार भारत पहुंचे। हथियार खरीदने के लिए धन जुटाने की खातिर उन्होंने पंजाब के सहनेवाला गांव में अंग्रेजों के धनी मित्र के घर डाका डाला। उनका क्रांतिकारी दल पूरे पंजाब में फैली हुई अंग्रेज छावनियों में पहुंचकर फौजियों को गदर के लिए तैयार करने लगा। गदर की तारीख की सूचना अंग्रेजों को मिल गई और इस तरह आंदोलन विफल हो गया। अब क्रांतिकारियों को खुद को बचाना जरूरी था, मगर करतार सिंह तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने एक और कोशिश करने की ठानी और पकड़े गए। जब उन्हें लाहौर जेल में रखा गया तो उन्होंने सलाखें काटने की कोशिश की। उन पर अंग्रेज सरकार को उखाड़ने के आरोप में प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। करतार ने अपना बचाव करने की जगह सब कुछ कबूल कर लिया और सारी कहानी सच सच सुना दी। उनका कहना था कि क्रांतिकारी फांसी से नहीं डरते। लाहौर जेल में करतार और उनके साथियों को 16 नवंबर 19

0: 15 को फांसी दे दी गई। करतार सिंह ने वंदे मातरम का नारा लगाया और फांसी का फंदा खुद अपने गले में डाल लिया। भारत माँ का एक और सपूत उसकी गोद सूनी करके चला गया।
1: हम कब से बैठे हैं, हमारा आर्डर कभी लगाओगे?
2: भैया रोटी तो लगा दे यार।
3: अरे चुप हो जा, ये बीड़ी जला ले, ये शोभा नहीं देता, समझे क्या? एक चपले घट दिए, गागा गए हैं, एक ढाबे की क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने?
4: लो बुझा तो दी बीड़ी।
3: अच्छा किया।
4: अब काका का नाम क्यों लेते हैं?
3: अरे काका का नाम क्यों नहीं लेंगे, काका के कारण तो ये ढाबा है।
4: ढाबा है, हम संभाल तो रहे हैं, आप बताइए क्या लेकर आए?
3: ठीक है, बच्चों से पूछते हैं, बेटा क्या खाओगे तुम लोग बताओ जरा।
5: दादा तंदूरी चिकन कैसा रहेगा?
3: तंदूरी चिकन? हाँ बेटा, और तुम?
6: मैं तो फ्राइड राइस खाऊंगी।
3: ठीक है बेटा, सुन लिया तूने क्या बताया बच्चों ने?
4: हाँ
3: जल्दी से लेके आ। लेकिन ये तो बता बेटा, ये काका कब तक आएंगे?
4: अब फसल कटी है ना, तो फसल के बाद गांव गए हैं।
3: अच्छा,
4: उसको बेच कर ही आएंगे काका, 15-20 दिन लगेंगे।
3: चलो ठीक है, तुम ऐसा करो जल्दी से लेके आओ।
4: हाँ अभी लाया।
3: हाँ बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठ जाओ।
7: बीड़ी जलाए ले।
5: अरे गजबीर काका तो है नहीं, अब हमको कहानी कौन सुनाएगा दादा?
3: अरे बेटा ये कहानी आनी छोड़ो, हम तुम्हें एक सच्चे देशभक्त के बारे में बताते हैं, आजादी का नायक, क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा।
5: करतार सिंह सराभा?
3: हाँ बेटा।
8: क्या नाम है तुम्हारा?
9: करतार सिंह सराभा।
8: कहाँ से आए हो?
9: हिंदुस्तान से।
8: किस लिए आए हो?
9: अध्ययन के लिए।
8: तुम्हारे देश में स्टडी के लिए स्थान नहीं थे?
9: थे क्यों नहीं, पर मैंने उच्च शिक्षा के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को चुना है।
8: यदि तुम्हें परमिशन ना दी जाए
9: तो मेरे साथ अन्याय होगा।
8: तुम्हें पता है तुम किस से बात कर रहे हो?
9: मुझे पूरा यकीन है कि आप इमिग्रेशन अधिकारी हैं।
8: नौजवान, खुशी हुई तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर। इंटेलिजेंट हो, गुड, गॉड ब्लेस यू।
10: ये थे सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में भरपूर जोशीले व्यक्तित्व के मालिक करतार सिंह सराभा। लुधियाना जिले के सराभा गांव में जन्मे करतार सिंह सराभा के पिता उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही चल बसे। चाचा ने पालन पोषण किया। प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना के खालसा स्कूल में और हाई स्कूल की शिक्षा उड़ीसा में हुई। पढ़ने में मेधावी और खेलों में अव्वल सराभा उच्च शिक्षा के लिए सैन फ्रांसिस्को जा पहुंचे और अध्ययन में जुट गए। वहां के उन्मुक्त और स्वतंत्र जीवन को देखकर वे अपने गुलाम देश की घुटन को महसूस कर व्यग्र हो उठे। अपने अध्ययन का खर्च स्वयं उठाने के लिए उन्हें एक फलों के बगीचे में काम मिला और भारतीयों के प्रति मालिकों के व्यवहार से उनकी उद्विग्नता और बढ़ गई।
8: क्या हम कुली लोग? जल्दी काम निपटाओ। तुम ब्लैक इंडियन? हे करतार सिंह, कम हियर, जल्दी आओ। लेजी मैन, तुम्हारे देश के लोग आदमी नहीं है, इनके साथ जानवरों जैसा ही सलूक होना चाहिए।
9: अरे यारों, इतना अपमान, ये कड़वा घूंट मैं नहीं पी सकता।
11: अरे अगर पढ़ने आए हो तो सहना ही होगा।
9: नहीं सहन होता दोस्त, अपनी बेइज्जती सह भी लें, पर ये रोज 30 करोड़ देशवासियों को ताने और गालियां देता है, कैसे सहूं?
12: सहना तो हम भी नहीं चाहते, पर
9: नहीं सहोगे तुम सब भी
11: तो क्या करें?
9: गुलाम देश के वासियों को इज्जत नहीं मिल सकती, कितने भी पढ़ लिख जाए हम, अपने देश की आजादी के लिए कुछ करें हम
12: तो। कुछ राह बताओ सराभा।
9: कल ही मैंने लाला हरदयाल के यहाँ पहुँचने की खबर पड़ी है, उनसे मिलते हैं जाकर।
13: हम सब तैयार हैं।
9: मैं अपने छात्रावास के सभी साथियों को तैयार करता हूँ, इस गुलामी से तो मौत अच्छी है, अगर मरना ही है क्यों ना देश की आजादी के लिए बहादुरी की मौत मरे। क्यों साथियों?
13: हाँ हाँ, क्यों नहीं।

0: छात्रावास पहुंचकर करतार सिंह सराभा ने सभी साथियों को इकट्ठा किया और अपने विचार उनके सामने रखे।
1: साथियों, हम 30 छात्र यहाँ रह रहे हैं। अपने देश के नाम की गालियाँ खा खा कर हमारी आत्मा मर जाएगी, क्या ये सही होगा?
2: नहीं नहीं, सही तो नहीं होगा।
1: पढ़ लिख कर भी दासों और कायरों जैसी जिंदगी जीने का क्या फायदा?
3: ठीक कहते हो करतार।
1: तो आज हम सब संकल्प लें कि हम अपने मस्तक पर लगा गुलामी का ये धब्बा मिटा कर रहेंगे।
4: हम संकल्प लेते हैं अभी से।
5: सराभा, बहुत तकलीफ होती है जब अंग्रेज हमारे साथ जानवर से भी बदतर सलूक करते हैं।
2: कल ही मैंने एक अच्छे खासे होटल के सामने लिखा हुआ देखा, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। हमारे अंदर आग लगी हुई है ये सब देखकर।
1: इसी आग में उन्हें स्वाहा करना है जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है।
3: सही, बिल्कुल सही। अब हम अपनी गुलामी के दुख में तिल तिल कर नहीं चलेंगे।
1: लेकिन साथियों, शेर की मांद में हाथ डालना है तो हाथ लोहे के हों, बंदूकें हों हमारे पास, तोपे हों, आग उगलने वाले हथियार होने चाहिए हमारे हाथों में।
2: सराभा, एक तरीका और भी है।
1: कहो।
2: अगर हम पढ़ लिख कर नौकरशाही में प्रवेश कर जाएं, तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: जो भी साथी जिस भी तरीके से देश की सेवा करना चाहता है उसका स्वागत है, पर जिनका लक्ष्य सशस्त्र क्रांति है आजादी के लिए, वे हमारा साथ दे सकते हैं।
4: हम सब तैयार हैं।
1: ठीक है, कल हम सब लाला हरदयाल जी की सभा में हाजिर होंगे। तैयार रहना, अपने लक्ष्य के लिए उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है।

0: लाला हरदयाल जी का भाषण सुनकर करतार सिंह सराभा, जितेंद्र नाथ लाहिड़ी, डी चिन्नैया और सारे साथियों ने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प लिया। उनका पहला कदम था नालंदा छात्रावास की स्थापना, जहां सभी छात्र मिलकर रहें और अपनी गतिविधियां संचालित कर सकें। उस निवास पर पहली मीटिंग का दृश्य कुछ ऐसा था।
1: देश में आजादी के अलख जगाने के लिए सबसे पहले प्रचार जरूरी है नौजवानों।
2: लाला जी, प्रचार के लिए क्यों ना एक अखबार निकाला जाए?
1: हाँ, इसकी तैयारी में हैं हम। बस तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। काम कठिन जरूर है, पर कमर कस लेंगे तो जरूर सफल होंगे।
2: लाला जी, अखबार का नाम क्या होगा?
1: अखबार का नाम गदर। गदर नाम ठीक रहेगा। हमारी पार्टी का नाम भी गदर पार्टी है। जहां से अखबार निकलेगा उसका नाम युगांतर आश्रम होगा।
0: संकल्प रंग लाया, लिथोप्रेस की स्थापना भी हो गई। सभी साथी उत्साह से भर उठे और अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं। देशभक्ति के रंग में रंगा गदर अखबार परदेश में रहने वालों को ललकारने लगा। उनमें हीनता और मजबूरी की भावना दूर हुई। सभी उस संकल्प में साथ देने को उतावले हो उठे जो देश की गुलामी दूर करने के लिए था। सराभा ने लेखन, संपादन, संकलन और वित्त प्रबंधन की जिम्मेदारियां खूब निभाई। कुछ दिनों बाद लाला हरदयाल जी ने सराभा की प्रतिभा परख कर उन्हें हवाई जहाज चालन की ट्रेनिंग लेने के लिए न्यूयॉर्क भेजा, जहां उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग 4 माह में पूरी कर ली। अखबार का प्रकाशन भी सफलतापूर्वक चलता रहा, सबके सहयोग से।

0: सिंह जी की कमांड में यात्रियों से भरे जहाज को सरकार ने उतरने की इजाजत नहीं दी। एक माह तक वहाँ रुके रहने के बाद जहाज में रसद पानी खत्म हो गया।
1: सराभा भूखों मरने की नौबत आ गई। कोई भी रियायत न मिलते देख बाबा गुरजीत सिंह जहाज वापस कलकत्ता ले गए। वहाँ बंदरगाह पर उतरते ही अंग्रेज सरकार ने यात्रियों को गोलियों से भून डाला।

0: दोस्त, यह अत्याचारी सरकार नहीं रहेगी ज्यादा देर, इसका अंत निकट ही है।
1: बाबा गुरजीत सिंह अब इसी जहाज से जापान वापस आ रहे हैं,
0: मैं उन्हें वहां जाकर मिलता हूँ।
2: न्यूयॉर्क से सीधे करतार सिंह सराभा हवाई जहाज द्वारा जापान पहुंचे और बाबा गुरदित्त सिंह जी से मिलकर एक योजना बनाई।
0: बाबा जी, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका है और जर्मनी ने इंग्लैंड पर हमला बोल दिया है।
3: हाँ बेटा करतार, ये सही समय है। देश में लौटकर देशवासियों को मुक्ति संग्राम के लिए वंगारा जाए, तैयार किया जाए।
0: इससे पहले कि अंग्रेज सरकार हमारे देशवासी सिपाहियों को इस विश्व युद्ध की आग में झोंके, हम उन्हें चेता दें कि वो अपने देश की आजादी के लिए लड़ें। जब अंग्रेज जर्मन का गुलाम नहीं होना चाहता तो हम भी उनके गुलाम क्यों रहें?
3: बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक।
0: बाबा जी, निप्पन मारू जापानी जहाज से मैं पंजाब वापस लौट रहा हूँ। जाते ही प्रचार शुरू कर दूंगा, विष्णु गणेश पिंगले मेरे साथ होंगे।
3: पर बेटा करतार, धन का इंतजाम भी तो करना होगा।
0: अंग्रेज परस्त सूदखोरों और उनके धनी मित्रों से वसूला जाएगा बाबा जी, और कोई रास्ता भी नहीं है।
3: ईश्वर तुम्हें सफलता दे, वो जानता है कि हमारे इरादे नेक हैं, उनके लिए भी जो धन और पद के मोह में लिप्त हैं।
0: अच्छा बाबा जी, चलता हूँ। सत श्री अकाल, अपना हर पल देश की आजादी के लिए लगाना चाहता हूँ।
3: सत श्री अकाल।
2: योजना के मुताबिक देश में लौटकर सराभा और उसके साथियों ने प्रचार कार्य तो शुरू कर ही दिया था और धन प्राप्ति के लिए एक दिन पहुंच गए एक धनी के घर सहनेवाल गांव में।
0: याद रखना साथियों, हमारे हाथों खून खराबा ना हो, अपनी जान भी बचाकर रखनी है देश के लिए, अक्ल से काम लेना होगा। सुनो, मैं मुख्य द्वार पर पहरा दूंगा ताकि बाहर से कोई खलल ना पड़े। पिस्तौल तान लो, और हाँ, सिर्फ डराना भर, याद रहे। चलो अंदर जाओ, सब अंदर जाओ।
1: हाँ, कोई अपनी जगह से ना हिले। ए गुड़िया, खाए हो दस? उठ लड़के उठ, चुप। हमें बस धन चाहिए, धन, एक नेक काम के लिए धन। डर खाइए उधर। ए बुढ़िया अम्मा, खुद अलमारी खोल दे, अच्छा होगा तेरे लिए।
4: पर ये नेक काम तो नहीं है बेटा।
3: जल्दी करो, जल्दी करो,
0: जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
3: हाँ उठाओ उठाओ, चलो बाहर आओ, चलो जल्दी आओ, बाहर आओ जल्दी। चलो चलो चलो,
0: ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, यहाँ से
3: जल्दी करो, बांध ले, बांध ना सब। चलो
0: ये गठरी संभालो, गठरी
3: संभालो, गठरी शराबा
0: संभाल है बाहर।
4: बेटा रखता वास्ता तेनो, सब कुछ तो ले लिया, वापिस मत तो रहने दे हमारे पास, छोड़ दे।
0: ये क्या हो रहा है? इस कार है कि तुम हमारे साथी हो, ठीक है कर रहे थे।

0: मुझे माफ कर दो सराभा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था।
1: जी तो करता है तुम्हें गोली मार दूं। माफी मांग इस बहन से।
0: माफ कर दो बहन, माफ कर दो, माफ कर दो बहन जी।
1: हम क्रांतिकारियों के उसूल भूल गया तू?
2: बेटा बड़े उसूल वाले बनते हो और डाके भी डालते हो।
1: माताजी हम पेशेवर डाकू नहीं हैं, हमें भारत माता को पराधीनता से मुक्त कराना है, इसके लिए हमें शस्त्र चाहिए। आपका धन इसी कार्य में लगेगा।
2: बेटा इस सभागिन बेटी की शादी के लिए ही तो धन जोड़ा था।
1: माता जी ये कटरी आपके सामने है, इसमें से जो चाहे हमें दान में दे दें। एक माँ से देशभक्त बच्चे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं।
3: माँ अगर ये देशभक्त हैं, तो इन्हें सारा धन दे दो। गुलाम देश में शादी का जश्न मनाने का हमें कोई हक नहीं। मैंने इस भाई को भी माफ किया, मुझे यकीन हो रहा है कि आप डाकू नहीं हैं।
2: बेटा ये लो गठरी, ये हमारे तरफ से तिनका भर मदद है। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, जाओ ईश्वर तुम्हें कामयाब करे। जाओ बेटा जाओ।
1: चलो साथियों अब धन के लिए डाका नहीं डाला जाएगा।
4: सराभा तो फिर हथियार कहाँ से आएंगे?
1: हम पुलिस थानों से हथियार प्राप्त करेंगे।
5: और आगे की क्या योजना है सराभा?
6: हाँ बताओ हमें।
1: हम राज बिहारी बोस जी से मिलते हैं, वो एक अनुभवी क्रांतिकारी है।
7: वरिष्ठ क्रांतिकारी राज बिहारी बोस जब इन सब के बुलावे पर पंजाब पहुंचे तो सराभा और साथियों का जोश देखकर मिशन तय कर दिया गया कि वे सब गांव और शहरों में पहुंचकर आजादी के लिए चेतना जगाएं। फौजी छावनियों में पहुंचकर अपने देशवासी फौजियों को इस मिशन के लिए तैयार किया जाए। सशस्त्र क्रांति हमारा नारा है। कुछ माहों बाद मिशन के लिए सब तैयार थे।
8: अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। विप्लव की तारीख 21 फरवरी 1915 तय रही।
1: जी बिल्कुल ठीक, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अपने फौजी भी तैयार हो गए हैं इस मिशन के लिए।
8: उस दिन सबसे पहले संचार व्यवस्था भंग करनी होगी, रेल पटरियां उखाड़ी जाएंगी, फिर डाक व्यवस्था छिन्न भिन्न की जाएगी ताकि वे इनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ न कर पाए।
9: हम सब तैयार हैं।

अफसोस कि सरकारी जासूसों द्वारा अंग्रेज सरकार खबर पाकर चौकन्नी हो गई। इधर विप्लव की तारीख 19 फरवरी कर दी गई। ये खबर भी उन तक जा पहुंची। विप्लव शुरू ही न हो पाया और सरकार ने धरपकड़ शुरू कर दी। सराभा जब तयशुदा स्थान पर साथियों के साथ पहुंचे तो कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे।

0: सराभा हम मजबूर हो गए हैं, हमारे हथियार रखवा लिए गए हैं।
1: पता नहीं कौन हमारा दुश्मन बना, सरकार को खबर देता रहा है।
2: कृपा करके सराभा लौट जाओ यहाँ से, वरना भी गिरफ्तार करने के लिए धमक पड़ेंगे।

साथियों, आंदोलन विफल हो गया। अफसोस है हमें। फिलहाल आप सभी क्रांतिकारी भूमिगत हो जाएं। हम

0: नहीं, फिर कोशिश होगी।
1: वंदे मातरम।
2: सराभा मंत्रणा के मुताबिक लायलपुर से पेशावर होते हुए सरहद पार कर अफगानिस्तान पहुंचे। दो साथी भी थे साथ में। अगले दिन सुबह सुबह जब वे अपनी ही कविता गुनगुना रहे थे

स्वतः प्रेरित होकर दोनों साथियों के साथ वापस लौट आए और सीधे चक नंबर 5 सरमोगा फौजी छावनी में फौजियों को जमा कर अपना मिशन समझाने लगे। बस वहीं पकड़ लिए गए। एक बार जेल में 50-60 कैदियों के साथ भागने की कोशिश की, फिर पकड़ लिए गए। अदालत ने इन पर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से अभियोग लगाया और मुकदमा शुरू हो गया।

0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लाहौर षड्यंत्र केस के 61 अभियुक्तों में से सबसे नामी ग्रामी अभियुक्त करतार सिंह सराबा हैं। इन्होंने षड्यंत्र चाहे अमेरिका में किए हों या इंडिया में, शिप में या प्लेन में, फौजी छावनियों में या गांव में, हर जगह इन्होंने सशस्त्र युद्ध के लिए लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया। इनका सबसे बड़ा गुनाह है सेना को बागी बनाना।
1: जज साहब, आप मुझे बागी कह सकते हैं, मैं आपको इसकी इजाजत देता हूँ, लेकिन मैं बड़ी शान से कहता हूँ कि मैं भारत माता का सपूत हूँ। मैंने अपने देश के प्रति भक्ति दिखाई है, मुझे अपने सभी कार्यों पर गर्व है, और जिन्हें आप मेरी कारगुजारियां कहते हैं वो मैंने सीना तान कर की हैं। अंग्रेज सरकार हमें गुलाम बनाए रखकर हम पर अत्याचार कर रही है, इसलिए अब ये सिर उनके सामने नहीं झुकेगा। इस कटघरे में खड़ा होकर भी मैं क्रांति का आवाहन करता हूँ।
2: कहो सब, भारत माता की
3: जय।
0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। करतार सिंह सराबा, तुमने माना कि तुम बागी हो, तुम्हें फांसी की सजा हो सकती है।
1: बस सिर्फ फांसी? इससे भी बड़ी सजा है आपके हाथ में।
0: करतार सिंह, तुम्हारी दंडता माफ की जा सकती है, पर सरकार के खिलाफ बगावत नहीं, कभी नहीं।
1: मेरे लिए आपका रहम हराम है जज साहब।
0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।
1: जज साहब, मुझे मौत कबूल है, कबूल है, कबूल है, और मुझे बहुत दुख है कि मेरे पास एक ही जीवन है। उम्मीद करता हूँ कि अगला जन्म आजाद देश में होगा और आपसे मुलाकात नहीं होगी।
3: भारत माता की जय।
4: जज साहब ने करतार सिंह सराभा और उसके 6 साथियों को फांसी का हुक्म सुना दिया। लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें 19 वर्ष की अवस्था में 16 नवंबर 1915 को फांसी दे दी गई। इनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बलिदान देने वालों की कतारें लंबी होती गईं, जैसे सारा देश कह रहा हो, अंग्रेजों, हमें फांसी पर चढ़ाते चढ़ाते तुम थक जाओगे, पर हम शहादत के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता।

निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेली आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पूरी नहीं आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: पुणेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्युअल स्पिरिच्युअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडिओ स्टेशन खुश रहो खुशियां बांटो.
3: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
4: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
5: Om Shanti.
4: Aapka swagat hai being bliss mein.
5: Thank you.
4: Sister, pichle episodes mein kuch baat ho rahi thi ki ghar pe agar koi humse kuch advice mange ya koi dost, rishtedar, beti, beta, to hum kya kahein? Problem ye ho raha hai mujhe ki beti advice mangti hai to uski baat mujhe sach lagti hai dusre wale ki. मतलब थोड़ा सा रॉन्ग लगता है अगला तो कंफ्यूजन ये आ रहा है कि एडवाइस सच दूं नहीं दूं क्या दूं इन्वॉल्व हो जाता हूं मैं उसमें.
5: कोई भी दो लोगों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है लेट्स से इट्स मी एंड अनदर पर्सन अगर मुझे किसी के साथ संस्कार स्वभाव नहीं एडजस्ट हो रहा नहीं बन रही हर बात में ही कुछ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो जनरली जो बात आती है जो हम फील करते हैं वो ये है कि जो हम कह रहे हैं जो हम सोच रहे हैं वो राइट है एंड सामने वाला जो कह रहा है या सोच रहा है या कर रहा है वो ऑब्वियसली राइट नहीं है और स्पेशली जब बातें एकदम ऑपोजिट होती हैं. लेट्स से आपने कहा बेटी एंड मदर इन लॉ अब ये तो सारा दिन उनके बीच चलने वाला है कि अगर वो दो डिफरेंट है सी दो डिफरेंट बंडल ऑफ संस्कार है ना दो आत्माएं हैं बिल्कुल दो डिफरेंट अपब्रिंगिंग है. जब एक माँ और बेटी भी है मदर इन लॉ तो अलग हुआ माँ और बेटी जो एक ही घर में एक ही परिवार जेनेटिकली भी कनेक्टेड है हम कहेंगे पेरेंट्स के कई संस्कार बच्चों को मिलते हैं इतनी स्ट्रांग अटैचमेंट होने के बाद भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन

0: आता ही है, क्योंकि संस्कार अलग अलग हैं। इवन खाने के टेस्ट अलग होंगे, काम करने का तरीका अलग अलग,
1: जाने का ही अलग है। खाना तो बहुत दूर की बात,
0: बहुत दूर की बात है। हर तरह में, जैसे किचन में भी अगर दो लोग काम करेंगे तो काम करने का तरीका अलग अलग होगा। सिर्फ ये होता है क्योंकि वो बच्चा डे वन से उस पेरेंट के साथ रहा है, वो उस एनवायरमेंटल कंडीशनिंग में है। तो बचपन से उधर रहने के कारण उसने कई सारे तरीके उधर के अडॉप्ट किए हुए हैं, और वो ही उसके लिए सही तरीका है, क्योंकि उसको बचपन से वो ही सीखा है ना, किस तरह कितने बजे सुबह उठना है, किस तरह के कपड़े। इवन जो फिजिकल चीजें हम कह रहे हैं, सोचना तो तरीका अलग, लेकिन ये फिजिकल चीजें भी, किस तरह पहनना है, क्या करना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो कंडीशनिंग है वो बच्चे के लिए वही कंडीशनिंग सही होती है, क्योंकि उसने वही देखी है, उसने कुछ और देखा ही नहीं है। तो जो उसने देखा वो उसकी पर्सनालिटी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स बिकम्स पर्सनालिटी, अब वो उसका बहुत डीप रूटेड संस्कार है। एंड देन ऑफकोर्स उसके अपने संस्कार, जिस तरह वो सोचता है, हर परिस्थिति को कैसे रिएक्ट करता है। सपोज उस बच्चे के अंदर गुस्से का संस्कार है, उस बच्चे के अंदर हर्ट का संस्कार है, मदर के अंदर नहीं है, तो फिर एक ही सिचुएशन में वो दोनों भी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, क्योंकि द मदर विल से क्यों छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हो, क्यों तुम इतना कमजोर फील करते हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल ऑलवेज बी देयर बिटवीन टू सोल्स। सिर्फ यहाँ क्या है, पेरेंट और चाइल्ड में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, फाउंडेशन प्यार की बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए एक्सेप्टेंस, क्योंकि लव मीन्स एक्सेप्टेंस। तो अगर आपको डिफरेंट दिखता भी है, आप उसको पसंद भी अगर नहीं आए, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। थोड़ी देर क्रिटिकल भी हो जाएंगे, बोल भी देंगे, बट आफ्टर दैट देन इट इज स्टिल ओके, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेवल उस रिश्ते में बहुत हाई है। लेकिन अब ये बेटी जब दूसरे घर जाएगी, जहां कई सालों की एक अलग कंडीशनिंग हुई है, वो कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, उनके सही और गलत के जो पैरामीटर्स हैं, उनकी राइट्स एंड रॉन्ग्स की जो डेफिनेशंस है, और इस बच्चे की जो राइट्स एंड रॉन्ग्स की डेफिनेशन है, दे कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब हो सकता है कि दोनों का एक भी राइट और रॉन्ग सेम नहीं होगा।
1: बट वहां की फैमिली को भी तो नया नया लगता होगा ना, कि समझो कि बाकी फैमिली 25 साल से एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, तो एक बहू घर पे आती है, तो उसको वो लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हमारी तरह जिए, हमारी तरह बात करे, हमारी तरह खाए, हमारा टेस्ट हो बाकी सबकी तरह। व्हाई शी सो डिफरेंट? तो डिफरेंट तो रहेगी ना।
0: एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट, डिफरेंट तो होगा ही ना। अगर ये बात हम सब पकड़ लें इस बात को कि डिफरेंट तो होगा ही, एंड डिफरेंट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, बट डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट सोल। वो आत्मा एक अलग एनवायरमेंट में, अलग वाइब्रेशंस में पल कर आई है 25 साल या 30 साल, और यहाँ एक अलग वाइब्रेशन है। अब सिर्फ 25 साल की अगर हम वाइब्रेशन देख लें तो दो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है। अब हमें ये पता है कि आत्माएं तो अनेक जन्म लेकर आई है। तो मेरे सपोज आई गेट मैरिड एंड गो समवेयर, तो ये 25 साल मेरी कंडीशनिंग इस फैमिली से अलग है, बट व्हाट अबाउट मेरे उससे पहले के 60-70 साल एक अलग परिवार में, फिर उससे पहले के, फिर उससे पहले के, कितने सारे संस्कार है यहाँ पे। इतना पूरा बंडल बंडल ऑफ संस्कार, फिर एक अलग एनवायरमेंट में सडनली जाए, वहां 3-4-5 लोग, उनका एक इतना लंबी लंबी लंबी जर्नी के बंडल ऑफ संस्कार्स, एंड फिर हम जब एक जगह पर आते हैं, इज इट पॉसिबल कि हमारे राइट्स एंड रॉन्ग सेम होंगे?
1: नहीं।
0: सो लेट अस ऑल एक्सेप्ट कि दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड इट्स एब्सोल्यूटली राइट दैट इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसको हमें यहाँ पे फिट कर लेना पड़ेगा कि वी शुड नॉट इवन एक्सपेक्ट। ये एक्सपेक्ट करना ही हर्ट का कारण है।
1: सिस्टर, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। जो लोग डॉग लवर्स होते हैं, वो डॉग्स के बारे में जानते हैं, उनको वो कहते हैं पेट, बहुत प्यारा है, वो बोलते हैं ना कि ये पेडिग्री अलग है, उसके

0: थॉट आई है कि इंसान का जो जीवन है, किसी का 70 साल, 100 साल, 50 साल, जो भी है, सारी जिंदगी में उसके जीवन में एक इंसान भी ऐसा नहीं है, एक जिसको जिंदगी भर के लिए हर क्षण हर चीज में एक्सेप्ट करे।
1: नहीं करता है, नहीं करता।
0: वही जिसको प्यार करता था, वही जिसको शादी किया बंदा, वही उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद कई बातें उसके फिर नुक्स निकालने लग जाते हैं।
1: क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे राइट्स एंड रॉन्ग्स, हमारे ओपिनियंस सेम होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि वो बेटी शादी करके गई दूसरे घर में, एक है एक्सटर्नल कंडीशनिंग, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो डिफरेंट होगी ही, लेकिन जिस परिवार में वो जाती है, आपने जैसे कहा कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनके राइट्स एंड रॉन्ग्स के डेफिनेशन में फिट हो जाए।
0: उनको भी तो नया नया लगता है ना, ये लड़की मतलब अलग क्यों है।
1: हाँ।
0: लेकिन वो मैंने अगेन,
1: लेकिन वो अलग नहीं बोलते।
0: हाँ। हमारी तरह क्यों नहीं बिहेव करती?
1: नहीं।
0: हाँ।
1: वो गलत है।
0: ओ।
1: अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अलग तो होंगे ही। इफ आई से आप मुझसे अलग हैं,
0: डिफरेंट
1: है, आपकी सोच मुझसे डिफरेंट है, इट्स परफेक्ट। आई एक्सेप्ट यू एंड आई से वी आर डिफरेंट, हम अलग हैं इज एक्सेप्टेंस, लेकिन आप गलत हैं इज रेजिस्टेंस। गलत और अलग में
0: बहुत फर्क है।
1: बहुत मतलब इतना फर्क है, मैं सही हूँ आप गलत हैं।
0: अलग होकर भी राइट रह सकते हैं, लेकिन गलत होकर राइट नहीं हो सकते।
1: गलत होकर कैसे राइट होंगे? लेट से उस परिवार में सुबह उठने का टाइम 5 बजे का है। अब ये बेटी जिस घर से आई है, ये उठती होगी 8 बजे लेट से। अब वो चेंज तो नहीं होगी ना एकदम से, उसकी कंडीशनिंग है, वो 25 ईयर्स से उतने बजे उठ रही है, उसकी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से, इवन अ सिंपल थिंग लाइक दिस। बाकी संस्कार तो बहुत डीपर लेवल पे हुआ। अब वो 8 बजे उठती है तो पूरा परिवार, एंड इफ इट्स अ जॉइंट फैमिली तो बहुत सारे लोग कैसी एनर्जी क्रिएट करते हैं। मतलब 8 बजे कोई उठने का टाइम है? क्या सिखाया इसको इसके पेरेंट्स ने? ये सिखा कर भेजा है इस घर में?
0: ये तो राक्षसों की हैबिट है।
1: यस यस यस, ये तो आसुरी संस्कार है 8 बजे उठना। हमारा तो 8 बजे तक घर का सारा काम भी हो जाता है। सुबह की एनर्जी कितनी होती है, मतलब आजकल की बेटियां लड़कियां देखो क्या करके आई। ओ एनर्जी,
0: हम तो 4 बजे उठते थे, पूजा कर लेते थे, सब लोगों को सास ससुर उठने से पहले हम सब रेडी क्लीन करके रेडी रखते थे।
1: बिल्कुल।
0: और वो जब उठ के आते थे, वाह, हम उनके लिए नाश्ता चाय सब रेडी होती थी।
1: और सास कहेगी आज भी मैं 60 साल की हूँ, मैं सुबह उठकर 5 बजे किचन में हूँ और ये महारानी अभी तक उठी ही नहीं। यू नो द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी कैन थिंक एंड से ओवर अ स्मॉल हैबिट।
0: तो जब अंडरस्टैंडिंग एक दो प्लांट्स की है, इसको कम पानी दो नहीं तो मर जाएगा, इसको कम धूप दो उसको ज्यादा धूप दो, ये डॉगी ऐसा है, ये डॉगी तो बहुत गुस्से वाला रहता है, इसके नजदीक ये टाइम पे मत जाना, खाते खाते इसके बर्तन को हाथ नहीं लगाना, इसको तो आप हाथ में भी खिला सकते हो, वहाँ अंडरस्टैंडिंग है, तो इंसान के इंसान में नहीं है।
1: क्योंकि हमारा अटैचमेंट टू आर ओन आइडिया इट इज राइट वो इतनी स्ट्रांग है कि बाकी सबकी आइडिया या ओपिनियन जो थोड़ी सी हमारे से अलग होगी वो गलत लगती है।
0: अटैचमेंट टू माई ओन आइडिया,
1: लेट्स से इवन अ सिंपल थिंग लाइक गेटिंग अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, जस्ट सिंपल, वी आर नॉट टॉकिंग डीप थिंग्स, अ सिंपल थिंग लाइक गेटिंग अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग इज एब्सोल्यूटली राइट, राइट, एंड उसके लिए हमारे पास बहुत सारी लॉजिक होगी।
0: यही बंदा, आई एम नॉट टेकिंग एनीबडी साइड, ये बहू हो या जो भी XYZ, यही पर्सन जो 5 बजे नहीं उठना उठ सकता इस घर में शादी के बाद, वो 5 बजे क्यों उठते जब प्लेन पकड़ना है? तो
1: ठीक है, उसके पास भी लॉजिक है, ठीक है, मुझे फ्लाइट तो एक आधी बार लेनी है ना, इसका मतलब ये थोड़ी मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाऊंगी। क्यों मैं रोज सुबह 5 बजे?
0: जॉब ऐसा मिल जाए जो रोज 5 बजे,
1: ठीक है, मुझे जरूरी होगा तो मैं उठूंगी। आपको लॉजिक चाहिए लोगों से? पीपल हैव लॉजिक फॉर एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग। मैं रात को लेट सोती हूँ, मुझे नहीं सोना रात को 10 बजे। I sleep only at 2 o'clock. I'm not going to get up at 5 o'clock. I don't want. अच्छा और कुछ नहीं तो I don't want to get up at 5 o'clock. Who says 5 o'clock is right? आप आधी रात को उठ के बैठ जाए।

0: लकड़ी सारी बिक जाएगी तो दूर बैठे राजा, जो उस फार्मर से कभी मिला भी नहीं था, उस राजा को ये थॉट आता है कि इसके पूरे फार्म को कॉन्फिस्केट कर लो, इस व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल दो. हाउ डिड दिस हैपन? दिस स्टोरी इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी डीप मैसेज कि आप जो सोचते हैं वो सोच सामने वाले को एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी, लेकिन वो सोच सामने वाले के अंदर एक सिमिलर क्वालिटी ऑफ सोच क्रिएट करना शुरू कर देगी. क्योंकि फार्मर ने सोचा राजा मरे, राजा ने सोचा कि इस किसान को ही गांव से बाहर निकाल दिया जाए. ये है डीप. अगर एक पेरेंट एक बच्चे के लिए सारा दिन में ये 10 बार भी सोच ले कि ये बच्चा गलत है, तो फिर बच्चे के अंदर भी बहुत जल्दी कौन सी थॉट आएगी, ये पेरेंट गलत है. अब मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, इन लॉस तो दूर, मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप में जब ये एनर्जी आने लग जाए, यू आर रॉन्ग, तो रिस्पेक्ट, आप रॉन्ग को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, प्यार नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस एंड रिजेक्शन है. यू आर रॉन्ग. अब जब यू आर रॉन्ग एनर्जी आ गई दो आत्माओं के बीच, तो ये एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं. अब पेरेंट को ये सोचना होगा, अभी इस क्षण बैठकर सोचना है. पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पेरेंट कभी बच्चे के लिए गलत सोच ही नहीं सकता है. तो पेरेंट्स आर ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज राइट. एंड चिल्ड्रन,
1: बिकॉज द इंटेंशन इज राइट, इसीलिए राइट
0: बोल रही हैं ना. तो आपके लिए, आप एक बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोच सकते.
1: मेरी इंटेंशन सही हो सकती है, तो मतलब एडवाइस तो रॉन्ग हो सकती है,
0: लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो सही सोचकर ही आप वो बोलेंगे ना.
1: मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है ना.
0: दिस इज इम्पोर्टेंट ना.
1: जैसे मैं नहीं चाहता था हैदराबाद में कि मैं बिजनेस करूं, मैं चाहता था एक्टर बनना, पेरेंट्स चाहते थे नहीं.
0: राइट,
1: वो राइट थे, मैं भी राइट था.
0: दिस इज इट. अब इस लाइन को अंडरलाइन कर ले, वो राइट थे, मैं भी राइट था. इस लाइन को अगर हम जीवन में हर रिश्ते में हर पल रख लें, लाइफ विल बिकम वेरी, बोथ आर ऑलवेज राइट. आप देखो, आपके पेरेंट्स जो भी कह रहे थे आपको जाने के लिए, हाउ कुड दे एक्सेप्ट इफ दे सी इट लाइक दैट, हाउ कुड दे एक्सेप्ट कि सब कुछ है, सब कुछ छोड़कर, इतना सुंदर परिवार, मकान, सुविधाएं, गाड़ियां, सब फैसिलिटीज छोड़कर एक अनजान शहर जहां किसी को नहीं जानते, फिर एक प्रोफेशन ऐसा जहां मतलब सक्सेस कितने कम लोगों को मिलती है और स्ट्रगल कितना ज्यादा करना पड़ता है,
1: और नई नई शादी.
0: हाँ, नई नई शादी. तो ऐसे में पेरेंट तो राइट ही है ना सारा कुछ.
1: हिसाब से देखा जाए तो मैं हर पॉइंट तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मुझे मार्क्स में नहीं दे सकता रॉन्ग है. अभी भी शादी हुई, बिजनेस चल रहा है, पिताजी नहीं रहे, पिताजी की जगह मुझे बैठकर दुकान चलानी है, मकान चलाने है, सब छोड़ छाड़ के बॉम्बे चले जाना.
0: लेकिन आज ये बोलना और आज ये फील करना कि वो हर बात में वो राइट थे, ये आज फील हो रहा है. लेकिन उस टाइम कैसे फील हो रहा होगा, कैसे हैं, समझते ही नहीं मेरी बात को, इनको समझ में नहीं आता, इनकी सोच, इनका, यू नो, वी वुड लिटरली फाइंड एवरीथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग रॉन्ग. एंड सिमिलरली आपके अंदर जो वो पैशन था, जो वो डिटर्मिनेशन थी, जो एक डिजायर था, वो उनको नहीं समझ में आएगा. तो जब हमें दूसरे की सोच समझ ही नहीं आ पाती, हमें दिखाई नहीं देता, कई बार हम कहते आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन थिंक लाइक दिस, मतलब मुझे बिल्कुल, मैं कितना भी ट्राई करूं मुझे समझ ही नहीं आता कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं. उस टाइम पर हमें ये बात अंडरलाइन करनी पड़ेगी, मुझे उनकी सोच समझ नहीं आ रही, उनको मेरी सोच समझ नहीं आ रही, हम दोनों की सोच किसी एंगल से मैच नहीं कर रहे, लेकिन दोनों की सोच अपने अपने जगह से 110% एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल राइट है ऑलवेज.
1: एक कुएं का मेंढक था, उसकी मुलाकात होती है समंदर के मेंढक के साथ.
0: ओके.
1: तो वो पूछते है तेरा समंदर कितना बड़ा है, तो मतलब बहुत बड़ा है. तो वो छोटी सी जंप लगाते है, इतना बड़ा.
0: हाँ.
1: उसके वॉल पे.
0: हाँ.
1: बावड़ी के.
0: हाँ.
1: वेल. हाँ. की बावड़ी पे इतना जंप लगा, इतना तो और लगा इतना. बाद में जो बावड़ी के एक एज से जंप लगा के दूसरी एज

0: जाके बोलते इतना हाँ। नहीं भाई इससे भी बड़ा, तो बोला ऐसा नहीं हो सकता
1: हाँ।
0: इससे बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने तो सारा कुछ देख लिया, उसकी सीमा है ना थिंकिंग की।
1: बट वो सही है ना, ये इम्पोर्टेंट है, वो सही है ना, ये सीमा है। एज अ थर्ड पर्सन हमें ये दिखाई देगा कि इसकी जीवन ये थी, विच मीन्स
0: सर्कमफ्रेंस है
1: हाँ,
0: बावड़ी का
1: राइट,
0: ये एज से उधर तक खुद के बोले इसके ज्यादा, इससे ज्यादा क्या होगा,
1: उससे ज्यादा उसको दिखाई नहीं देगा, उससे ज्यादा वो कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी जीवन है। ऐसे ही ये हमारे जीवन है, मतलब हमारे संस्कार, हम अपने संस्कारों से अलग कुछ कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकते। वो हमें मतलब वो कॉन्सेप्ट भी हमें नहीं समझ में आ सकता क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं। हमें हर चीज सिर्फ और सिर्फ यहाँ के फिल्टर से दिखाई देती है, उसके अलावा अगर कुछ है तो वो हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको समझ नहीं
0: पाते, आगे सोच नहीं पाते। जैसे हम संस्कारों से बंधे हुए हैं, लिमिटेड है, उसी तरह समय भी लिमिटेड है। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: ओम शांति।
0: नमस्कार, ओम शांति।
2: Each soul's definition of right and wrong is based on their sanskars and their environmental conditioning. So, in the same situation, two souls will have a different definition of what is right and what is wrong. While giving advice to someone in conflict, show them the perspective of the other person, which they themselves cannot see. Even if you are in pain, do not hold the other person responsible for your pain. When we blame, it blocks our energy of love. When we don't blame, it means we accept them completely. If we create thoughts for someone that they are wrong, then very soon they will feel that we are wrong. Now both the people will reject each other, and this is disrespect.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

तो शहर मत आना, जिसका अंदाज मशुकाना देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ये तो शहर मत आना, जिसका अंदाज मशुकाना देता है प्यार का पैमाना, करता है सब

से बुलाए कितनी रंगीन है फिजाएं जापानी परियां मुस्कुराए देखो पगोरी गरी जाए हमको इशारों से

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग कौन सा

0: ज्यादा पावरफुल है। बातें, सिचुएशंस और मैं किसका प्रभाव किस पर पड़ता है, आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: सेवा, लेखिका सुधापुरी, पात्र परिचय यश, सैंडी, पंकज, वेदांत, दृष्टि, आकाश, आदित्य, उन्नति।
3: आई स्पाइस, मैंने देख लिया है तुम सब पकड़े गए हो, बाहर आ जाओ।
4: ये मुझे देख लिया उसके रूम में।
3: जी नहीं, ये चीटिंग है, मैंने पहले ही आइस पाइस बोल दिया था।
5: जी नहीं, धप्पा लगने पर फिर से डैन देना पड़ता है।
3: मैं तो नहीं देती, जो करना है कर लो। जब मैंने देख लिया था सबको, तो फिर किस बात की डैन दूँ?
5: अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं डैन दे देता हूँ।
6: अरे आज हम सब पूरे नहीं है ना?
5: हाँ वो देखो, वो आ रहे हैं उधर से। लेट लतीफ साहब,
6: कहाँ गए थे?
7: वो कुछ नहीं, मैं बस यूं ही।
8: मैं बताऊं?
7: कोई जरूरत नहीं है, चुप।
8: बताता हूँ बच्चों, ये साहब आज लड़कियों की तरह अपनी माँ का घर के काम में हाथ बटा रहे थे, मैंने खुद देखा है, जनाब बर्तन धो रहे थे।
7: वो मैं आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे थे और
8: बिल्कुल मुंडू लग रहे थे जनाब।
3: तो क्या घर में हाथ बटाना सिर्फ लड़कियों का काम है?
5: बिल्कुल नहीं, सबको मदद करनी चाहिए, लड़का हो या लड़की।
9: वाह क्या बात है, कितने सयाने हो सब। जब श्रवण कुमार की कहानी पढ़ते हो तो आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और दिल करता है कि उसके जैसे ही माता पिता की सेवा करे, और जब मौका मिलता है तो।
8: पर दीदी, ये घर के काम करना कोई माँ की सेवा थोड़े ही है।
7: तो और क्या है, क्या तुम श्रवण कुमार की तरह माता पिता को भूमि में बैठा कर तीर्थ पे ले जाओगे?
8: नहीं वैसे नहीं, इसकी जरूरत भी तो नहीं है आजकल।
9: मैं भी वही कह रही हूँ, ये सब पौराणिक कहानियाँ आप लोगों के लिए केवल सांकेतिक हैं। इनका अर्थ समझकर इन्हें आज के संदर्भ में लेना चाहिए।
8: पर हम ऐसा ही तो सोचते हैं अपने माता पिता के लिए।
7: मतलब
8: उनकी और सब इच्छाएं तो पूरी करने की कोशिश करेंगे ही।
9: वाह क्या बात है, बड़ी बड़ी बातें बनाने में तो होशियार हो सब।
6: वो कैसे?
9: इच्छाएं पूरी करोगे, पहले शुरुआत तो करो।
5: वो कैसे दीदी, कोई साफ साफ कह दे तो अच्छा रहता है।
9: तुम्हें नहीं लगता कभी तुम्हारी माँ का भी दिल करता होगा कि कोई उसे बैठकर भोजन परोसे या प्यार से उसका हालचाल पूछे और मदद करने के लिए पूछे, या तुम्हारे पिताजी जब थके हुए आए तो उनका बेटा या बेटी उन्हें बिना मांगे ही पानी का गिलास दें?
3: ये तो है,
9: क्यों नहीं, जरूर जाएंगे।
5: पर दीदी कभी मैं पूछूं तो भी मम्मी कहती है तुम रहने दो और काम बिगाड़ोगे,
6: या कहेंगी रहने दो काम बढ़ाओगे, या हाथ जला लोगे, या चोट लग जाएगी।
9: चलो एक काम करते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी माँ की किस किस तरह से मदद कर सकते हैं।
6: आपका मतलब है सेवा?
9: हाँ यह भी एक प्रकार की सेवा ही होगी।
7: खाने के बाद अपने बर्तन उठाकर सीट में रखना।
8: बस मैं तो साफ भी कर सकता हूँ।
3: मैं भी।
9: अच्छा अच्छा आगे भी तो बोलो, अब सबको लग रहा है मैं भी कर सकता हूँ।
6: अपने जूते सही जगह पर रखकर, अपना बस्ता सही जगह पर रखकर,
7: कमरा छोड़ते समय सब लाइट पंखे बंद करके,
8: कभी नल बेकार में खुला ना छोड़कर,
3: शावर की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाकर, इससे पानी की बचत होगी।
5: पर इससे माँ की सेवा कैसे हुई? माँ की नहीं तो भारत माता की तो है।
6: भारत माता की ही क्यों, पूरी धरती माता की।

0: हाँ ये तो है, याद है वो ए आर रहमान का गीत माँ तुझे सलाम।
1: अरे वो किसे याद नहीं रहेगा।
2: हम उसे भारत माँ के सम्मान में गाते हैं, अगर पूरी पिटी को ध्यान में रखी गाए तो सोचो सोचो।
3: अरे हाँ उसका मतलब तो और भी विशाल हो जाएगा।
4: हाँ जब कहते हैं ना यहाँ वहाँ सारा जग देख लिया है, तो मतलब यहाँ वहाँ सारा ब्रह्मांड देख लिया है इसका मतलब हो जाएगा और हमारी पृथ्वी जैसा कोई नहीं मायने निकलेगा।
5: वाह क्या कल्पना की है।
6: बातें तो बड़ी गहरी कर रहे हो, टॉपिक से हटो नहीं, काम बताओ, काम जो तुम आराम से कर सकते हो जिससे माँ की या पिताजी की घर पर सेवा हो।
0: माँ की सेवा, माँ की सेवा, पापा की सेवा। हाँ अपनी चीजों का ध्यान रखकर, किताबें पेंसिल पेन सही स्थान पर रखकर ताकि वे गुमे ना।
6: बिल्कुल ठीक, घूमना है क्या, किसी भी चीज का अपने स्थान पर न होना और क्या।
7: अपना स्कूल का काम पूरा रखकर ताकि किसी टीचर को कोई शिकायत न हो और मम्मी या पापा तक हमारी तारीफें ही पहुँचे।
8: अभी क्या तुम्हारी शरारतों की शिकायतें पहुँचती हैं?
7: जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस काम बता रहा हूँ।
2: घर में साफ सफाई रख कर, जैसे फल के छिलके इधर उधर न फेंक कर, और
3: हाँ हाँ ठीक है टॉफी के रेफर इधर उधर न फेंक कर।
5: मैं तो डस्टिंग भी कर सकती हूँ।
8: मैं भी।
6: अरे फिर शुरू हो गए बकरी की तरह मैं करने।
5: अपना खाना पूरा खाकर वेस्ट ना करके।
0: मैं बाहर से धुले कपड़े उठाकर ला सकता हूँ उनके सूख जाने के बाद।
7: मैं तो कई छोटे छोटे कपड़े तह भी लगा सकता हूँ, बस मम्मी की साड़ी नहीं, उसे लपेटते लपेटते तो मैं गिर ही जाऊँ।
6: जरा सोचो तुम्हारी मम्मी जब बाहर से कपड़े उठाने जाए तो क्या देखें कि किसी ने उन्हें उठाकर तह भी लगा दिया है, सोचो कैसा लगेगा उन्हें।
8: मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी।
2: मेरी भी,
3: मेरी भी,
4: मेरी भी।
6: फिर
5: दीदी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कितने ही तरीके हैं जिनसे हम अपनी मम्मी की मदद कर सकते हैं।
0: हम जितना अपना काम खुद करेंगे उतनी ही उनकी मदद होगी।
6: सिर्फ अपना काम ही नहीं, अपना खत्म करने के बाद घर के उन सदस्यों का भी जो या तो बहुत छोटे हैं या तो बहुत बड़े और दूसरों की मदद पर आश्रित हैं।
7: जैसे मेरा छोटा भाई, मैं उसे खाना खिला सकता हूँ, पढ़ाई में मदद कर सकता हूँ।
8: पर वो तो अभी बहुत छोटा है।
7: मेरा मतलब है जब वो स्कूल में आ जाए।
3: और मेरे दादा दादी उनकी टांगे दबा सकता हूँ, उन्हें कभी चप्पल या चश्मा नहीं मिल रहा हूँ तो ढूंढ के दे सकता हूँ।
5: तो दीदी क्या सेवा यही कुछ है? ये तो बहुत सरल है।
6: सेवा के बहुत रूप हैं, शब्द बड़ा है पर यह सरल तरीकों से भी हो सकता है किसी से। जैसे कोई उदास बैठा हो तो प्यार से बोलकर उसका दिल हिला देना भी एक सेवा है।
9: ऐसे तो किसी का उत्साह बढ़ाना भी सेवा है।
6: हाँ जिस किसी काम से किसी की मदद हो जाए या भला हो वही सेवा है।
7: कई लोगों को मैंने देखा है कि गर्मियों में जब बाहर निकलते हैं तो अपने साथ ठंडी पानी की बोतलें रख लेते हैं और रिक्शे वालों को या और सड़क पर काम करने वाले लोगों को देते हैं।
8: दीदी उस दिन मम्मी अखबार में से पढ़कर बता रहे थे कि कुछ लोगों ने ये भी सेवा शुरू कर दी है कि अगर किसी के घर में जैसे किसी की शादी के दौरान खाना बच गया हो तो वे उसे वहाँ से लाकर गरीब लोगों तक पहुँचा देते हैं।
3: हाँ और कुछ संस्थाएं होटलों से बचा हुआ अच्छा खाना लेकर गरीबों बांटते, वो भी ठीक है।
6: और क्या होटलों में तो कितना ही खाना बच जाता होगा, पर ये सब तो बड़ी संस्थाओं के काम है। बात उसकी करो जो तुम अपने हाथों से कर सकते हो।
5: दीदी हम अपने घर के आसपास के पशु पक्षियों का भी तो ध्यान रख सकते हैं।

0: हाँ, अपने घर की छत पर बाजरे के दाने और पानी का तसला रख सकते हैं, या पास की गौशाला में आटा या जो भी उन्हें चाहिए दे सकते हैं। कुछ लोग तो सड़क के कुत्तों को भी पालतू बना लेते हैं और वे फिर उनके घरों की रखवाली भी करते हैं।
1: मेरी दादी कहती है, सेवा से
2: मेवा मिलता है।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे, ऐसे ही थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योति छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है चिंता। चिंता यानी कि क्या है? चिंता और जो है एक तनाव और रोगों की जड़ है। चिंता हमारे जीवन में एक तनाव लेकर भी आता है और इससे बहुत तरह की जो होते हैं रोग भी होते हैं। तो रोग और तनाव की जड़ जो है वो चिंता है। कहावत है कि चिंता उतनी करो जो काम हो जाए, न कि इतनी जो जीवन तमाम हो जाए। वर्तमान समय मनुष्य हद से ज्यादा चिंता करता है। जब कोई हर पल चिंता करता है तब उसकी सोचने की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है। यदि व्यक्ति उन समस्याओं की चिंता करता है जो अभी तक है ही नहीं, तो व्यर्थ सोचने से ऐसी समस्याएं सचमुच आने लगती है। दुख, परेशानी, कठिनाइयां सबके जीवन में आती है, परंतु हम जो चाहे बस हम जो चाहते हैं बस उन्हीं कार्यों के बारे में सोचे तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। एक है कि थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार भी करना आना चाहिए। जीवन की हर मुश्किल जो है वो ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह है। थोड़ा इंतजार कर ले तो फिर से हरी हो जाती है। अर्थात जीवन जो है ये क्या है, अगर आप जीवन में चिंता छोड़ धैर्य रखें, थोड़ा इंतजार करें, आने वाला कल निश्चित ही अच्छा होगा। हम कितनी भी चिंता करें, चिंता समस्या का समाधान कर सकती है क्या? नहीं ना। चिंता एक काली दीवार की तरह मनुष्य को चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें से निकलने के लिए कोई गली नहीं सूझती। चिंताग्रस्त व्यक्ति जो होता है मृत्यु से पहले कई बार मरता है। एक यहाँ हम देखते हैं कि तनाव और रोगों की जड़ है चिंता। जिंदगी में जितना भी आप चिंता का आना स्वाभाविक है, जितनी भी चिंता आ जाए इसका आना स्वाभाविक है, लेकिन ये लंबे समय तक टिक जाए तो अनेक बीमारियां शुरू हो जाती है। चिंता और तनाव जो होता है वो सभी रोगों की जड़ है। ये सारे रोग मन में पैदा होते हैं। किसी भी तरह की चिंता मनुष्य के शरीर की जो होती है प्रतिरोधक क्षमता कम कर देती है, और जो होता है चिंता से होने वाली बीमारियां है जैसे हृदय रोग, गठिया, अल्सर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, दांतों का सड़ना, लकवा, किडनी की समस्याएं, आंखों की रोशनी में कमी, हार्मोन विकार, ये सब चिंता से होता है। सौंदर्य जो होता है वो खत्म हो जाता है, जल्दी बुढ़ापा आ जाती है। तो इससे हमें क्या करना है, बचना है। इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं, अगर हम चिंता से दूर रहना सीख ले तो। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिल रही हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है चिंता और जो है तनाव और रोगों की जड़ है। मन का इलाज किए बगैर सिर्फ शरीर का इलाज करना क्या होता है? जो हम खाते पीते हैं उससे अल्सर नहीं होता, अल्सर उस चीज से होता है जो हमको खाई जा रही है, अर्थात चिंता से। अमेरिका की प्रसिद्ध चिकित्सक मेयो ब्रदर्स ने कहा था कि हमारी हॉस्पिटल के आधे से ज्यादा भीड़ मानसिक व भावनात्मक बीमारियों के शिकार लोगों से भरे हैं। उसकी जो होती है वो बताते हैं कि उसकी ये बीमारियां तंत्रिकाओं या नर्वस के क्षय के कारण उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि चिंता, कुंठा, व्यग्रता, डर, हताशा से हुई है, भावनाओं द्वारा उत्पन्न हुई है। चिंता के बारे में केटो ने

कहा था कि डॉक्टर सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह मन का इलाज किए बगैर सिर्फ शरीर का इलाज करने की कोशिश करता है। चिंताओं से लड़ने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि व्यक्ति निष्पक्ष और निरपेक्ष तरीके से जीवन जिए। इस ज्ञान के प्रकाश में चिंताएं भाव की तरह उड़ जाएंगी। दूसरा, मन में जब भी कोई नकारात्मक भाव आए तो फौरन दर्शक बन जाओ। ऐसा करने से भाव जो है वो बादल की तरह आएगा और चला जाएगा। चिंताओं से लड़ने आनी चाहिए लोगों को। जैसे चिंताओं से हमें लड़ना सीखना है, चिंताओं से लड़ना सीखे। कैसे? डॉक्टर एलेक्सिस कैरेल का कहना है कि जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वह जवानी में ही मर जाते हैं। चिंता उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो चिंता से लड़ना जानता है। चिंताओं से लड़ने के लिए सबसे पहले चिंता का असली कारण ढूंढा जाए। ज्यादातर चिंताएं सांसारिक होती है। रचनात्मकता से ऐसी चिंताओं से मुक्ति पानी है। दूसरा, आध्यात्मिक तरीका अपनाएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा सदा मेरा साथी है। चिंता नहीं, चिंतन करें तो समाधान हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं ज्योत्सना फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपनी आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है चिंता, तनाव और डूबो की जय। याद रखिए, जो हुआ सो हुआ और जो हुआ अच्छा हुआ। अगर हम इस चीज को समझ लें, जब कोई व्यक्ति चिंतित होता है तो कुछ भी कर नहीं पाता, जबकि चिंता से निकलने का एकमात्र तरीका है कुछ करना। व्यक्ति जितने समय तक चिंता में रहता है, अपने जीवन को बेहतर करने का उतना समय गवा देता है। चिंता का बड़ा कारण है भ्रम। भ्रम को हटाने के लिए समस्या को लिखें। लिखने से चिंता का जो है मानसिक चक्र टूट जाता है। याद रखें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे से अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह तो बहुत ही अच्छा होगा, फिर चिंता किस बात की करें। एक हम देखते हैं यहाँ पे, चिंता पूरी क्षमता से काम नहीं करने देती। दिखा गया है कि व्यक्ति अपनी सफलताओं के लिए खुद की परेशानियों को दोष देते रहते हैं और बीते कल की कमी कमजोरियों में उलझे रहते हैं। दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी उन्हें बड़े फैसले लेने और आगे बढ़ने से रोकती है। परंतु जो समय बीत चुका है, हम कितने भी दुखी हों उसे बदल नहीं सकते, और भविष्य की कितनी भी चिंता करें उससे कभी उससे कुछ भी प्राप्ति हो नहीं सकती। भविष्य की चिंता करना उस उधार को चुकाने के समान है जो हमने कभी लिया ही नहीं है। केवल वर्तमान ही है जिसे जिया जा सकता है। बीते हुए कर्म से सिर्फ सीखा जा सकता है और आने वाले कल की केवल तैयारी की जा सकती है। हमें देखते हैं इधर की समस्या को शुरुआत में खत्म करें। अगर कुछ समस्या आती है तो उससे हमें क्या करना, शुरुआत में खत्म कर देनी चाहिए। नापसंद कार्य को तुरंत कर लें, चिंता अपने आप ही कम हो जाएगी। काम को जितने लंबे समय तक आप टालेंगे, दुख ज्यादा होता चला जाएगा। देर करने से डर बढ़ जाता है।

कर्म करने से डर या चिंता खत्म हो जाती है। जिस काम की चिंता है उसे आज और अभी कर दे। किसी भी समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर दे। टालने से हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। हाँ, तो आपने देखा कि कैसे चिंता से हमें दूर होना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हाँ, समस्याओं को क्या करना है, शुरुआत में ही खत्म कर देना है। हाँ, और हमें ये भी सोचना है कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ हम अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए हंसती रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरस, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकतायत रेडियो पुलिरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपको नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार मित्रांनो,

क्यों नहीं? जाओ जाओ, जाते क्यों नहीं?

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब। यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: उड़ बैठी बजरवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजरवा दो कन्या,
0: उड़ बैठी बजरवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

गीता की तबीयत में जहाँ शोखी और चंचलता थी, वहाँ जिम्मेदारी का भरपूर एहसास भी था। हमने कई गाने एक साथ गाए, इसलिए बड़ी अच्छी दोस्ती थी। गीता बहुत जल्द किसी भी बात से परेशान हो जाती थी, और परेशानी बढ़ जाती तो सीधे मेरे पास आ जाती। उसे मुझसे मिलने की जितनी जल्दी हुआ करती थी, उतनी ही जल्दी गीता ने इस दुनिया से जाने में भी दिखाई। ये वक्त का सितम नहीं तो और क्या।

0: हस्म ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी दोनों।

0: ना।
1: करो इंतजार, आएगा वो दिन, थोड़ी देर है
0: कब आएगा।

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

मैंने क्या खूब कही है दिल की है। हमारे यार तुम भी तो कुछ कहो अपने दिल की।

झूठ मेरा देखो, ये भूत मेरा देखो, जैसे दूरा कोई लंदन का साला, मैं तो सांप बन गया, सांप बन के कैसा तन गया, ये झूठ मेरा देखो, ये भूत मेरा देखो, जैसे दूरा कोई लंदन।

Kiri, Sud Spencer, Kata, Sude, Pande. Mama Kiri. Mama Kiri, Sud Spencer, Kata, Sude, Pande. Kama jaise pankh mayur ka apne dum mein bandhe. Apne dum mein bandhe. Apne dum mein bandhe. Are kya jaano hum kis bheja mein kya kya naksha khicha. Kya jaano hum kis bheja mein kya kya naksha khicha. लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस आलम में सजा बन गया सलामत साहब बन गया साहब बन के कैसा बन गया ये सूट मेरा देखो ये सूट मेरा देखो जैसे गोरा

دیکھو یہ بھوت میرا دیکھو جیسے

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलो, चाहे कली से।

दो हर नजर से हाँ, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हाँ।

मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलो, चाहे कली से चाहे

0: पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा,
1: लुट गए मामा।
2: लंबी कल में बाल अवाड़ा पैंट का बना पजामा, अरे लंबी कल में बाल अवाड़ा पैंट का बना पजामा।

ऐसा जूड़ा और जूड़े से चोटी निकली, जूड़े से चोटी निकली। टोकरी भी अब फैशन बन गई, मर गए गंगारामा। एक छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा।

वालों लगाओ इन पे टैक्स खर्चूंगी, अरे आओ कमेटी वालों लगाओ इन पे टैक्स खर्चूंगी, साड़ी पेटी कोट के ऊपर कब्जा करके लूंगी, अरे कब्जा करके लूंगी। तौबा तौबा आज की छोरी बन गई एक ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा।

कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे, अरे कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे, ऐसी लगती जैसे लगी हो डबल रोटी को टांगे, और डबल रोटी को टांगे ढूंढ के लाओ इसके लिए जो पहलवान होगा माँ, एक सुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा।

देश लड़ाए वह रे भक्त सुदामा, पान तंबाकू वाला खाकर सिगरेट

दुनिया पहचाने, क्यों ठीक है जवाब तो दे, पर मैं हूँ तेरा आशिक ये सारी दुनिया पहचाने, पर अंदर वाली बात जो है वो मैं जानू तू जाने, सच है ना बोलती क्यों नहीं, वो मैं जानू तू जाने, पर दुनिया वाले क्या जाने, ये तेरा मेरा ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े, ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा, लुट गए मामा।